नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सैनिक देश की सुरक्षा का अडिग स्तंभ होता है। वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना सीमाओं पर खड़ा रहकर राष्ट्र की रक्षा करता है। सैनिक त्याग, साहस और अनुशासन का प्रतीक है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी पाते हैं।

0: वतन के पास बांह उठे।
1: भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास होता है। जब व्यक्ति पूरे मन से ईश्वर पर भरोसा करता है तो वह भय से मुक्त हो जाता है। उसे यह विश्वास होता है कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और अंततः उसके हित में ही होगा। यही विश्वास उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, भक्त कभी टूटता नहीं बल्कि और अधिक दृढ़ होकर खड़ा रहता है।

इतिहास और धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भक्तों की शक्ति ने असंभव को संभव बना दिया। भक्तों ने अपने विश्वास और भक्ति के बल पर बड़े बड़े संकटों को पार किया और ईश्वर की कृपा प्राप्त की। यह दर्शाता है कि जब मनुष्य का हृदय सच्ची भक्ति से भर जाता है तो उसके भीतर एक दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है।

भक्त की शक्ति केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनती है। उसका जीवन दूसरों को यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि भीतर की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास में होती है। एक सच्चा भक्त अपने आचरण से यह सिद्ध करता है कि यदि मन में अटूट भक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।

भक्त की शक्ति एक अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। यह शक्ति उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है और अंततः उसे आत्मिक शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति कराती है।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख एवं संकलन रोमी सेन का, वाचन मुकाम सिंह चौहान। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए आज का चिंतन।
1: मनुष्य का सबसे बड़ा गुण करुणा का भाव है। करुणा मनुष्य को देवत्व पद प्रदान करवा सकती है। जिसके हृदय में करुणा नहीं, उसका हृदय तो वन प्रांत में पड़े सूखे तालाब की तरह व्यर्थ है, मात्र एक गड्ढा है, जहां आकर पशु पक्षी मनुष्य सभी निराश होकर वापिस लौट जाते हैं। इसलिए लोक कहता है, जिनके घर करुणा नहीं, नहीं दया का भाव, उनका हृदय जानिए सूखा पड़ा तराव। करुणा में वो शक्ति है जो दैत्य का हृदय परिवर्तन कर देवत्व प्रदान कर दे, दानव को मानव बना दे, भक्षक को रक्षक और एक पथ लुटेरे को महाकवि और त्रिकालदर्शी ऋषि बना दे। वाल्मीकि का नाम कौन नहीं जानता? जंगल में राहगीरों को लूटना और उन्हें हताहत कर पीड़ित करना उनकी दिनचर्या थी। आखेट द्वारा क्रौंच पक्षी को आहत दशा में देखकर तथा क्रौंची के हृदय विदारक रुदन को सुनकर लुटेरे वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर उठा था। उसी करुणा ने उनके भीतर बैठे दैत्य को बाहर निकालकर उनके भीतर देवत्व की स्थापना कर दी। इसलिए लोक कहता है, जंगल में पथ लूट ता गयो जमारो बीत, पंछी की पीड़ा दिखी बेकल होयो जीत। धनस बाण फेंक्या परा मनचित आयो राम, कवि ऋषि की ख्याति मिली वाल्मीकि शुभ नाम। ये प्रभाव है करुणा का। एक बार अपने हृदय में करुणा का प्रादुर्भाव हो जाए, तब समस्त मानव मूल्य जागृत हो जाते हैं। करुणा को इसीलिए मानव मन की सर्वाधिक मूल्यवान मणि कहा गया है। इसीलिए परमात्मा को करुणा निधान कहा गया है। पहले करुणा का उदय होता है, फिर दया का प्रकट होता है। यदि करुणा जागृत नहीं हुई तो दया भी उदित नहीं होती। पहला करुणा उपजे फिर दया को भाव, कड़वी भेषज के समा सुथरो करे सुभाव। करुणा के कारण हृदय में जो व्याकुलता होती है, जो बेकली होती है, वो कड़वी औषधि के समान ही है। वो औषधि पहले व्याधियों का उपचार करती है, फिर तन मन को निर्मल और निरोग बना देती है। गौतम बुद्ध ने जब आहत हंस को पड़ा देखा, तब उनके हृदय में प्रथमतः दया नहीं उपजी, करुणा उपजी। उनका अंतर्मन व्याकुल हो उठा, पश्चात दया का प्रादुर्भाव हुआ। हम कह सकते हैं करुणा दया की माता है। करुण की प्रसव पीड़ा से दया का जन्म होता है। सम्राट अशोक ने जब एक लिंग के नरसंहार को देखा, तब उन्हें युद्ध की विभीषिका का भान हुआ। उनका हृदय रो उठा, करुणा से व्याकुल हो उठा। उनके हाथ की रक्त रंजित तलवार धरती पर गिर पड़ी। करुणा से दया का जन्म हुआ और दया से शांति का और फिर प्रेम का। ऐसा है करुणा का प्रभाव। करुणा यदि मन में रहे, दया रहे मन बीच, गंगा यमुना बह उठें बाहर कर दें कीच। करुणा और दया की गंगा यमुना भीतर के सारे कलुष को धोकर मन चित को निर्मल कर देंगी। मन शांत और तन पुलकित हो उठेगा।
0: श्रोताओ, ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। अब वक्त है खेती की बातें का। खेती की बातें में आज हम आपको पोषण, उद्यान और गृह वाटिका, इस विषय पर कृषि वैज्ञानिक द्वारा दी गई जानकारी सुनवा रहे हैं। जानकारी का वाचन कर रही हैं स्मिता दुबे।
2: खेती की बात कार्यक्रम में स्वीकार करो स्मिता की राम राम। भाई बहनों, और आज अपन बात करांगा पोषण उद्यान अन्न गृह वाटिका की। सबसे पहला तो जानीला यो होवे कहीं है। भाई बहनों, और घर का आसपास जब भी खाली जगह में कदी हम फल सब्जी औषधि पौधा ना कदी मसालो यो सब कदी उगावा तो इन सब के बोले है पोषण उद्यान या फिर गृह वाटिका। इको मुख्य उद्देश्य रेवे कि परिवार जो है उके ताजो ताजो पौष्टिक और रसायन मुक्त हम भोजन उपलब्ध कराई सका। ओ भाई बहन और देखो वैसे भी कभी ऐसो हमारे घर का घर में मिली जाए तो कितरो अच्छो लगे। आज का समय में जो है बाजार में कई सब्जी ना जो है उका में रासायनिक खाद कीटनाशक इन सब का अधिक उपयोग हो रही है और जीका से स्वास्थ्य पे भी बुरो प्रभाव पड़ सके है। ऐसा में हम अपना घर में टमाटर पालक मेथी धनिया मिर्ची लौकी बैंगन नींबू ये सब कदी उगेला तो हमारे शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिलते रहे। भाई बहनों पोषण उद्यान को सबसे बड़ो लाभ यो है कि इका में परिवार में कुपोषण कम होवे है। साथ ही बच्चा ना महिला ना और हमारा जो बुजुर्ग ना रहे उनके आवश्यक विटामिन खनिज अन्न प्रोटीन प्राकृतिक रूप से मिलते रहे। भाई बहनों और हरी सब्जी ना शरीर के स्वस्थ भी रखे है और साथ ही हमारा शरीर में रोग ना से लड़ने की क्षमता के भी बढ़ावे है। इका अलावा गृह वाटिका पर्यावरण के भी बहुत लाभ पहुंचावे। जैसे कि भाई पौधों जो है वो वातावरण के स्वच्छ बनावे है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े हमारा घर का आसपास, हरियाली बढ़े जिका से हमारे मानसिक शांति भी मिले है, ऑक्सीजन अच्छा सा मिले शुद्ध मिले तो हमारे बीमारी ना भी नहीं होवे। साथ ही हमारा खाली समय को हम सदुपयोग कर सका। जब भी खाली बैठे हाँ तो चलो भाई अपन उका में देख रेख कर ही ले वहाँ हमारो बच्चा ना को हमारा प्रकृति के प्रति प्रेम भी बढ़े बच्चा ना भी इको महत्व के समझे। साथ ही कभी आसपास अपन हरियाली और बढ़ावांगा तो भाई आँख ना के भी हमारे बहुत अच्छे नज़ारो देखने को मिले आसपास हरियाली अच्छी लगे हैं। साथ ही आँख ना की रोशनी में भी फायदा देवे हरियाली है नी। और गृह वाटिका बनाने का सारो ऐसो नहीं है कि घर नी सारी जगह लगे। भाई बहनों छोटी सी जगह जो है आजकल तो मैंने देखियो कि भाई छत ना पे और आगे जो वो गैलरी ना रहे उका में गमला में ऐसे भी हमारे यहाँ पे जो मनकना है वी ऐसी सब्जी ना उगाई रिया है और उका में कई उनके करना का सारू जैविक खाद और गोबर की खाद कंपोस्ट रसोई को अपनो जैविक कचरो ये सबसे भी हम इनकी खाद ना डाल के भी बहुत कम खर्चा में अच्छे से खेती करी सका। हाँ और साथ ही हमारे तो जानने के बड़ो अच्छो लगेगा कि सरकार भी जो है पोषण अभियान और अन्य और जो और भी नई योजना ना रहे उका माध्यम से लोग ना के पोषण उद्यान बनाना का सारू प्रोत्साहित भी करी रही है। यानी विद्यालय ना में आंगनवाड़ी ना में भी पोषण वाटिका बनाई रही है ताकि बच्चा ना जो है वो पौष्टिक आहार के महत्व के समझी सके है नी उनका बारे में उनके जानकारी मिले और प्रकृति से और उनका ही काम करने में उनको मन लगे उनके अच्छो लगे। तो हूँ तो योजकू कि हमारा कोई का भी घर में जो भी मारे सुनी रहा उनका घर में भी कभी कोई छोटी सी भी कोई वाटिका नहीं होए तो घर का छोटा सा जगह जो भी अपना घर का बाहर रहे वे उका में एक गृह वाटिका जरूर से बनाई लेनी चाहिए जिससे हमारो स्वस्थ जीवन रहेगो पर्यावरण भी अच्छो रहेगो हमारे आत्मनिर्भरता हमें घणो अच्छो लगे कि मने उगई हमारा घर में उगी या सब्जी है नी। इन सब बातना का साथ है अब मारी वाणी के दुआ विराम राम राम।
0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में पोषण उद्यान और गृह वाटिका इस विषय पर कृषि वैज्ञानिक द्वारा दी गई जानकारी आप सुन रहे थे। जानकारी का वाचन कर रही थी स्मिता दुबे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
3: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
4: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
0: लीजिए श्रोताओं अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा। कार्यक्रम का की प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की होगी। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल 7:35 से सुना जा सकता है। कवि गोष्ठी आप सुनेंगे सुबह 8:30 से, और लोक संगीत में शारदा पगारे के गाए लोकगीत सुबह 9 बजे और शाम 6:45 पर सुने जा सकते हैं।

0: आबिदा परवीन की गायी रचनाओं का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत में सुबह 9:15 और शाम 6:30 से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में पंडित भजन सोपोरी का संतूर पर बजाया राग नट भैरव आप सुबह 9:30 पर सुन सकते हैं और प्रकाश संगीत का गाया राग सरस्वती रात 10:30 सुनवाया जाएगा। 10:05 का समय होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन का। कार्यक्रम में आप 10:05 से 11:00 के मध्य फोन कर अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटी कोड 0731। और आइए अब आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी दे दें। दिन में 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है 12:00, 2:00 और 2:30 पर। 12:30 का समय होगा संग्रहालय से कार्यक्रम का। 1:00 महिला कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण है डिजिटल सुरक्षा पर आज के कार्यक्रम में बात होगी। डॉक्टर स्वाति तिवारी की वार्ता 90 वर्षों का हम सफर आकाशवाणी ये भी आप आज के महिला कार्यक्रम में सुनेंगे। मी टाइम में आर्टिफिशियल फूलों में बनाए करियर इस विषय में जानकारी होगी। ये जानना भी है जरूरी क्रम में बोतल बंद पानी की शुद्धता की पहचान अब FASSI मार्क ये जानेंगे और हेल्थ टिप्स में एक ही समय में उठने के फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 12:30 का समय लोक संगीत का होगा और 1:45 पर आप सुगम संगीत सुनेंगे। और आइए अब आपको आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी बता दें। आज शाम 5:00 आप युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस विषय पर आरंभिक चर्चा होगी। साथ ही साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां क्रम भी होगा। 5:45 का समय होगा फिल्म संगीत का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप शाम 6:00 से सुनेंगे। खेती गृहस्थी कार्यक्रम रोजाना की तरह शाम 7:20 पर होगा और आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर बात होगी। साथ ही भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। इस विषय पर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश शुक्ला से तुलसा दरगैया की चर्चा आप सुनेंगे। कार्यक्रम में लोक संगीत और मंडी के भाव भी होंगे। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा। 8:15 पर आप दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम सुनेंगे। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत होगा रात 9:15 पर और रात्रि 9:30 से 10:30 तक फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन सुना जा सकता है। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्री मोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम अभिज्ञानार्थम निर्वासनार्थम सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुम् सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे चत्वारिंशदधिक त्रिशत कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एक सप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षाबलाय षट्शत हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरातराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वारक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये

0: संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत प्रबंधने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य एकत्रिंशत् दिनांक पर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशत् वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिक रूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिक रूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभार ग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां षट्त्रिंशदधिकैकशताधिक विधायकानां समर्थनेन कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतिताप घटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्त्य चक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्ध सप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लैटिनम जुबली

0: समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले तीन दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
2: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
0: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजाति समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजाति समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के दा नांग में आयोजित 2026 अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्रीस्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते। उन्होंने बताया कि पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने 4 स्वर्ण पदकों सहित 9 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, जो कि चैंपियनशिप के इतिहास में देश के अब तक के सर्वाधिक पदक हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि महिला कुश्ती दल ने भी 6 स्वर्ण पदकों के सहित 10 पदक जीतकर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मास्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ हैं या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जल डबरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। मध्य प्रदेश ने देश भर में किसानों से सर्वाधिक गेहूं खरीदने का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 13,46,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 1,03,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके साथ ही राज्य ने जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान हासिल किया है। जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश में 2,00,000 से अधिक जल संरचनाओं पर काम किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गेहूं खरीदी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि
1: देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का कार्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। 13,46,000 से ज्यादा किसानों ने जिनका पंजीयन हुआ था उनके माध्यम से 1,03,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी हमारे द्वारा की गई। ये पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य द्वारा किसानों से सर्वाधिक खरीदी का हमारा अपना रिकॉर्ड है, जो पिछली बार के रिकॉर्ड को हमने तोड़कर बनाया।
0: भोपाल में त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरबाला सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई की मुख्य सूचना अधिकारी ने बताया कि भोपाल स्थित घर में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ और जांच के बाद सीबीआई ने गिरबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत बुधवार 27 मई को रद्द कर दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए उन्हें राहत देना उचित नहीं था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सादगी, मितव्ययिता और सुशासन के मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश में एक नई कार्य संस्कृति स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा प्रशासनिक खर्चों में संयम और संसाधनों के संतुलित उपयोग को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल अपने काफिले में वाहनों की संख्या को सीमित करते हुए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक ही बस में सवार होकर इंदौर से उज्जैन तक की यात्रा की। इस दौरान सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्था के लिए केवल 3 अन्य वाहन ही साथ रहे। विदिशा जिले की सशक्त वाहिनी युवनी शिवानी रघुवंशी की सूझबूझ और संवेदनशीलता के चलते एक सराहनीय पहल हुई है। बिहार में अपने घर से भटककर विदिशा पहुंचकर इधर उधर घूम रही एक मासूम बच्ची को देखकर शिवानी ने तत्काल जिला प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद मासूम को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया गया। गौरतलब है कि विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता के द्वारा सशक्त वाहिनी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर और सजग बनाया जा रहा है। अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 12वीं पास और न्यूनतम 18 वर्ष की युवतियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर पुलिस भर्ती के लिए तैयार किया जाता है, जिसके तहत बालिकाओं को प्रतिदिन 2 घंटे की निःशुल्क लिखित कोचिंग और पुलिस लाइन में 1 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के साथ पोषण आहार भी प्रदान किया जाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान जबलपुर में सबसे तेज 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान खजुराहो और नौगांव में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजगढ़, रीवा और दतिया सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। आज ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कलां, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया और भिंड जिलों में तीव्र लू के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की और वज्रपात का अलर्ट है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और गुना सहित अन्य जिलों में लू और गर्म रात का असर बना रह सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की

अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर जिले में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने एनएचएआई के निर्माणाधीन इंदौर राघवगढ़ सड़क का निरीक्षण किया। भोपाल में नगर निगम के द्वारा स्वच्छ जलापूर्ति के लिए 91 स्थानों से पानी के नमूने लेकर जांच करवाई जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो आज और कल मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। और पन्ना जिले के देवेंद्र नगर रेंज के अंतर्गत जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई मां और बेटी भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं मुकाम सिंह चौहान।
1: इंदौर परिक्रमा। जय जय जय जय जय जय जय जय इंदौर। इंदौर परिक्रमा।
2: क्या बात है, क्या बात है, इंदौर की क्या बात है।
1: इंदौर परिक्रमा।
3: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम के साथ आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में जाते ही नौतपा आरंभ हो गया है, जो 25 मई से 2 जून तक समूचे क्षेत्र को खूब तपाएगा। इस दौरान गर्मी और लू पूरे चरम पर रहती है, परंतु मौसम विभाग के अनुसार इस बार बूंदाबांदी की भी संभावना व्यक्त की गई है। इन दिनों सबके हाल बेहाल है गर्मी और उमस के कारण। विशेषज्ञों ने दोपहर में घर से कम बाहर निकलने के साथ शरीर को हाइड्रेट रखने की भी सलाह दी है। इन दिनों पेयजल की उपलब्धता भी प्रभावित हो जाती है, अतः पानी के अपव्यय से हमें बचना चाहिए। साथ ही जल संरक्षण के लिए जो प्रयास प्रशासन और स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें भी हमें भागीदार बनना चाहिए। 25 मई को गंगा दशहरे के पावन अवसर पर कई आयोजन हुए, जिसका उद्देश्य भी यही है कि हम पानी की हर बूंद को सहजने का प्रयास करें और उसके महत्व को समझें। श्रोताओं, कल ईद उल अदहा का त्योहार मुस्लिम समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईदगाहों में सामूहिक इबादत की गई। इंदौर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने समाज को सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर मानने की बात कही तथा नशे के विक्रय पर पाबंदी की और वर्षा के जल के संरक्षण पर भी जोर दिया। इन दिनों पुरुषोत्तम मास के कारण लोग भजन पूजन और तीर्थ दर्शनों में व्यस्त है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में तप और साधना से हमारे जीवन में आने वाले अनिष्ट दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। आइए इस संदर्भ में जाने भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी से ये जानकारी।
4: मैं प्रोफेसर सौमेंद्र मुदाली और मैं एक महापुर जगन्नाथ जी के एक परिवार हूँ। हमारे वंशज इनको पूजा करते थे, मैं भी कर रहा हूँ, मैं इनकी सेवा में लगता हूँ। ये जो अधिमास यानी कि मलमास होता है, हर 2 साल के बाद जब 3रा साल आते हैं, इसमें से इसी एक महीना ज्यादा होता है, तो इसी को मौलमास कहा जाता है। सौनिक ऋषि मानव कल्याण के लिए कितने तथ्य, मौलमास में क्या क्या करना चाहिए, इनका क्या जरूरत है,

क्या गुरुत्व है, इसी के बारे में थोड़ा सा इनका वक्तव्य रखा हुआ है। इंसान अल्पायु होते हैं, इनसे रोग व्याधि मानसिक क्लिष्ट संभोगत है, तो इसीलिए विष्णु को इसी मलमास में आराधना करना बिल्कुल मिथ्या है। विष्णु आपका सबका इतने सारे दुख कष्ट कैसे ये सब ले जाएंगे, आपको आश्वासना देंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताया था कि रहस्यमय पुरुषोत्तम मास सब सर्व मानव प्रजाति के लिए एक कल्याण करके, और कुछ कुछ भ्रांत धारणा है कि इससे महीने में कोई पूजा पाठ करना मना है और जब तक निष्फल होगा नहीं, ये ठीक नहीं है। यही मास रे इसी महीने में संक्रांति नहीं, एक संक्रांति होते है, संक्रांति नहीं है, सब शुभ कार्य बंद और एक विभ्रांतकारी पदक्षेप है। सब शुभ कार्य करना चाहिए, विष्णु को आश्रय लेना चाहिए, विष्णु को आराधना करना चाहिए, विष्णु को अच्छी तरह पूजा करना चाहिए। तो इसीलिए आपके मन में जितने वस्तु यानी कि जगन्नाथ जी का विष्णु को प्रतीक होता है ना, तो जगन्नाथ जी के पास ये सब कार्यक्रम हो रहा है, पूजन होता है, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो इसीलिए ये आपके लिए संचित होता है। आप जब उसी इसी दुनिया छोड़कर दूसरे दुनिया में जाएंगे, आपका जो संचित कर्म संचित धर्म ये आपको सहायता करेंगे, आपका जीवन सार्थक होगा और पुनर्जन्म जो होगा एक अच्छा जुनि में आपको जन्म प्राप्त होगा। विष्णु श्री जगन्नाथ सर्व दुख सर्व कष्ट से रक्षा करने वाले सिर्फ जगन्नाथ ही है, तो विष्णु का प्रतीक है। तो नारायण आराधना इसी मलमास में श्रेष्ठ कार्य होता है। एक बार आप इनके चरण कमल में आश्रित नहीं जाइए, इनको पूरा भरोसा कीजिए, भक्ति कीजिए, समर्पित हो जाइए, आप देखेंगे आपके जितने सारे दुख कष्ट क्लेश ये सब दूर हो जाएगा। सो इसीलिए मलमास में जगन्नाथ धाम में इतने भक्त लोग श्रद्धालु आकर यहाँ के एक मास तक पुत्र जीवन बिताते हैं, हम लोग भी इसे कर रहे हैं। तो इसीलिए विष्णु आराधना, विष्णु को चेतना, विष्णु को पूजा अर्चना करने से इतने पाप किसी जन्म का पाप दूर हो जाते हैं। और विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है जो कि सारा विश्व के कर्ता है, जो आपको एक अच्छा दिशा में ले जाएंगे, आपका जीवन सार्थक कर देंगे इसी मौला मास में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।

0: श्रोताओं, महान शासक राजा भोज की नगरी धार इन दिनों सुर्खियों में है। माननीय उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद यहाँ माँ वाग्देवी की आराधना हेतु श्रद्धालुओं का निरंतर आगमन हो रहा है। आइए इस संदर्भ में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं राजा भोज की सांस्कृतिक नगरी से इतिहासकार और राजा भोज शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा से।
1: साथियों, संस्कृति में साहित्य का स्थान सदैव सर्वोपरि रहा है, और क्यों न हो, हर विचार व्यक्ति को इंसान बनाता है। राजकाल परंपरा में हम देखते हैं कि राजा भोज का नाम साहित्य, संस्कृति, स्थापत्य, राज्य विस्तार, सुशासन के सुधार के रूप में सर्वोपरि माना जाता है। राजा भोज कौन है, हम क्यों वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद उनको याद करते हैं, आज उनकी भोजशाला चर्चा में है, आज उनका साहित्य चर्चा में है, आज वाणी आकाशवाणी के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। निसंदेह इन सब के पीछे उस व्यक्ति

का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों प्रमुखता से आता है। हम सब जानते हैं राजा भोज सुशासन के सूत्रधार थे। उन्होंने देशभर के विद्वानों को अपने राज्याश्रय में भोजशाला में स्थान दिया। ये स्थान केवल स्थान पर नहीं था, ये स्थान था उनके दिल में, उनके मानस में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी राजधानी में। इसलिए धारानगरी भोज की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मानी जाती है। राजा भोज का कार्यकाल 1010 से 1055 के मध्य में रहा, यानी लगभग आज से 1000 वर्ष पूर्व का। उन्होंने धार में ही नहीं अन्य चार स्थानों पर भोजशाला अर्थात संस्कृत के अध्ययन पठन पाठन के लिए विद्वानों के आश्रय के लिए केंद्रों की स्थापना की। उसमें सबसे चर्चित और सबसे प्रमुख है धार की भोजशाला, दूसरा है मांडव की साहित्यशाला, तीसरा है उज्जैन की बिनावनों की मस्जिद जो आजकल नाम से जानी जाती है वो स्थान, और चौथा अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा। यानी उन्होंने चार ऐसी शालाएं विकसित की थी जहाँ पर व्यक्ति आके संस्कृत का साहित्य का अर्चन मनन सृजन कर सकता है। काल बदला, परिस्थितियां बदली और आक्रांताओं के आक्रमण भी हुए। यही भोजशाला जिसके 1034 में जहाँ पर राजा भोज ने सरस्वती की वाचिक परंपरा की देवी वाग देवी सरस्वती की स्थापना की। ये काल ये क्रम निरंतर चलता रहा और 1305 में सल्तनत काल आया, भोजशाला का पराभव हुआ, कमाल मोला नाम के एक सूफी संत वहां पर स्थान बनने लगा और धीरे धीरे भोजशाला का जो वैभव था, जो भोजशाला का कार्य था, मंद पड़ने लगा। लेकिन महेश राजा जी ने बहुत सी दो पंक्तियां कही थी कि आज हमारी माँ वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के ब्रिटेन के म्यूजियम में कैद है। उन्होंने कहा था, एक तार छिड़ उठे अगर उर वीणा की झनकार से, वीणा पानी चले आएगी सात समुद्र पार से। ऐसा कहते हैं कि कवि त्रिकालदर्शी होता है, कवि को भूत भविष्य वर्तमान तीनों एक साथ दिखता है। जब वो निश्चल मन से पूर्वाग्रह से पूर्व होकर कुछ सृजन करता है, कविता रचता है, वाणी रचता है, तो ये जो वाणी का उद्घोष है ये सत्य बन जाता है। महेश राजा जी का यह कहावा आज सत्य होने को प्रतीत हो रहा है, क्यों ना हो, क्योंकि धार की भोजशाला मंदिर के रूप में न्यायिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त कर चुकी है। ये वो स्थान जहाँ पर साहित्य का सृजन होता था, जहाँ पर दूसरे धर्मावलंबी आकर अपनी पूजा अर्चना आराधना करते थे, अब केवल मंदिर के रूप में स्थापित होगा। उच्च न्यायालय का ये उच्च फैसला पूरे समाज के लिए, पूरे साहित्य जगत के लिए, पूरे सामाजिक संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि राजकाल में जब ये भोजशाला की मूर्ति का प्रभाव हुआ, जब भोजशाला का प्रभाव हुआ, तो मेजर किनकेट 1880 में ये प्रतिमा को लंदन ले गए। 1909 में संरक्षित इमारत घोषित हुई और 1934 में लोक निर्माण विभाग जो राजकीय व्यवस्था थी उसके अंदर भोजशाला की नाम पट्टी का लगी। ये सरस्वती कंठाभरणम जो भवन था ये भोजशाला के रूप में ख्याति प्राप्त हो गया। 1935 में यहाँ पर मुसलमानों ने नमाज के लिए आवेदन दिए और उन्हें कहा कि ये एक खाली स्थान पड़ा हुआ है जहाँ पे अभी कुछ भी गतिविधि नहीं होती है, तुमको एक दिन के लिए नमाज की अनुमति दे दी जाए। तत्कालीन जो दीवान थे नाटकर दीवान, उन्होंने एक दिन के लिए उनको नमाज की अनुमति दी और धीरे धीरे इसके स्वरूप परिवर्तन पर भी रोक लगाई। लेकिन धीरे धीरे स्वरूप परिवर्तन होता गया, वो एक दिन की अनुमति कालांतर में एक परंपरा बन गई। 1942 में यहाँ पे जो लाश दफनाते उस पर रोक लगी, दंगे भी हुए, पूजा भी हुई, नमाज भी हुई, अर्चना भी होती रही और यह स्थान 1952 में एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत घोषित हो गया। 1985 में यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, माँ वाग्देवी की प्रार्थना फिर से शुरू हुई और 2003 में आते आते यहाँ पर सप्ताह में एक दिन मंगलवार के दिन यह पूजा अर्चना की विधिवत अनुमति मिली। 2003 से मांग लगातार उठने रही कि ये भोजशाला जो है इसके हर प्रतीक यहाँ पर कुछ कहता है। यहाँ की खंडित मूर्तियां, यहाँ पर पारिजात मंजरी, अवनी पुरुषोत्तम नाटक के शिलालेख जो लगे हुए जिनपे ओमनेश्वर बात शुरू होती है, जिनमें सरस्वती नवें से बात शुरू होती है, यहाँ के पर गणपति कुबेर की प्रतिमाओं का मिलना, यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमाओं का मिलना, जो परंपरागत परमारकालीन स्थापत्य है, जो भूमध्य शैली है उसके कलशों का, उसके स्थानों पर स्थापत्य का मिलना, ये सब कह रहा था कि ये वाकई मंदिर ही है। और मेरी दो पंक्तियां मुझे फिर याद आती इस समय कि सुनने की मोहलत मिले तो आवाज इन पत्थरों में उजड़ी हुई बस्तियों में वीरानियां बोलती है। और ये वीरानी समाप्त हुई है, यहाँ उद्घोष शुरू हुआ है, यहाँ पे मंत्रोच्चार शुरू हुआ है, यहाँ विद्वानों की सभा होगी, यहाँ पर सरस्वती का लोक बनेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी धार आए थे और डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दो बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की है कि जैसे महांकाल लोक बना है, जैसे सलकरपुर लोक बना है, जैसे जानापाव को लोक बना है, ऐसे ही धार में सरस्वती लोक बनेगा। ये लोक एक आलोक बनेगा, एक प्रकाश देगा जो साहित्य को पुनः स्थापित करेगा, हमारे ज्ञान को पुनः स्थापित करेगा। माँ वाग्देवी की प्रतिमा भी लंदन के ब्रिटेन के म्यूजियम से धार आएगी, लेकिन उसके पहले आएगी साहित्य की वाणी जो आज आकाशवाणी के माध्यम से आपको कुछ अंश दिखाई दे रहा है। साथ ही
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा

की है कि धार में भोज शोध संस्थान की स्थापना होगी। भोजकालीन साहित्य समाज के सामने आए, वो ज्ञान समाज के सामने आए, क्योंकि हम सब विद्वान हैं, हम जानते हैं कि राजा भोज ने 84 मंदिरों की स्थापना की थी, 84 भवनों की स्थापना की थी और 84 ग्रंथ रचे थे। उसमें व्याकरण, अर्थशास्त्र, कोश, वैमानिकी, अश्वज्ञान, धर्म, राजनीति, स्वास्थ्य से संबंधित ग्रंथों की स्थापना की है। उन्होंने राजमार्तंड योग बनाया तो राजमार्तंड चिकित्सा भी बनाया, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें एक ही पुस्तक के अंदर स्त्रीरोग चिकित्सा, पुरुषोग चिकित्सा, नारी चिकित्सा और पशु चिकित्सा भी है। यानी एक राजा बच्चों का ध्यान रखता था, पुरुषों का ध्यान रखता था, महिलाओं का ध्यान रखता था तो पशुओं तक का भी ध्यान रखता था। ये जो सुशासन की व्यवस्था है जो राजा भोज के कार्यकाल से चली आ रही है, राजा भोज की बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि वो विद्वानों को इतना धन देते थे कि उनके राज में तांबे की कमी हो गई, क्योंकि दान पत्र समय तांबे भी लिखे जाते थे। उन्होंने कश्मीर से कल्लण, मदन कवि, विठ्ठल, माघ जैसे कई विद्वानों को यहाँ पे राजाश्री दिया था और उन्होंने अलग अलग विषयों के इन ग्रंथों की रचना राजाश्री में की और राजा को समर्पित भी किए। तो ये कितनी सुदीर्घ परंपरा भारत में है। हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की परंपरा यदि चलती है तो वो एक आदर्श राज की स्थापना करते हैं, तो भोज के आते तक वो परंपरा सुशासन के सूत्रधार के रूप में बदल गई। सुशासन मतलब जिसमें सब निर्भीक हो, जिसमें सब विद्वान हो, जिसमें सब आचारवान लोग हो, जिसमें हमारा आचार विहार हम सबके लिए जीने की शुरुआत करें, हम प्रकृति को भी ध्यान दें, हम मनुष्य के विकास को भी ध्यान दें, हम इस पूरे ब्रह्मांड के सफलता के लिए सोचे, सुयश के लिए सोचे, सभ्यता के लिए सोचे। तो शायद इस तरह की विचारधारा ही संपूर्ण देश में और दिशा को बदल सकती है। साहित्य एक अच्छा विचारधारा, एक अच्छा इंसान बनाने की हमेशा कोशिश करता है। तो आज की भोजशाला उसी उद्देश्य को लेकर सरस्वती का लोक बनाए। यहाँ पर आम जनमानस आज पूरे देश से एक साहित्यिक नगरी के रूप में, एक पर्यटन केंद्र के रूप में, एक दर्शनीय केंद्र के रूप में भोजशाला आना चाहता है, भोजशाला को जानना चाहता है। ये केवल पत्थर की इमारत नहीं है, ये स्थान है जहाँ पर आकर हम अपने अतीत को, अपने वर्तमान को भविष्य से जोड़ सकते हैं। तो हम उस इंसानी परंपरा को, उस साहित्य सृजन की परंपरा को इस भोजशाला के माध्यम से पुनः समाज में स्थापित कर पाएंगे, ऐसा मेरा उद्देश्य है। आज हमने भोज शोध संस्थान धार में जो 2010 से स्थापित है, यह भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल से पंजीकृत भी है, यह रजिस्टर फॉर्म सोसाइटी से पंजीकृत भी है, एक विधि मान्य संस्था है जो 2010 से लेकर आज तक निरंतर कार्यरत है। हमने भोज की पांडुलिपि एकत्रित करने की कोशिश की है, हमने भोज के ग्रंथों को एकत्रित किया है, हमने विद्वानों को एक मार्ग दिया था कि जब भोजशाला के द्वार बंद थे तब वह भोज शोध संस्था का द्वार खुला हुआ था, हमने विद्वानों को एकत्रित किया है। हमने तो आकाशवाणी के माध्यम से भी भोज के व्यक्तित्व प्रतित्व को समाज के सामने लाने की कोशिश की है। एक हमने चित्र प्रदर्शनी बनाई थी भोज शोध संस्थान के माध्यम से, जिसका लेखन डॉक्टर संदीप शर्मा ने किया है और प्रख्यात कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने चित्र को बनाया है। ये चित्र क्या है, ये शब्दविहीन साहित्य है। एक तरह हम साहित्य के माध्यम से विद्वानों को जोड़ते हैं तो चित्रविहीन शब्दविहीन साहित्य के चित्र के माध्यम से हम नई पीढ़ी के बच्चों को, नई पीढ़ी के युवाओं को जो बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद कम करते हो लेकिन देखना पसंद करते हैं, हमने जनमानस के भोज एक चित्र कथा भी बनाई है। 46 चित्रों के माध्यम से हमने भोज के व्यक्तित्व को, भोज के कार्य को, भोज की सामाजिक स्वीकारता को व्यक्त करने की कोशिश की है। ये सब समाज के सामने है, समाज को स्वीकार करेगा और समाज सुशासन की दिशा में भोज को भी स्वीकार करेगा। भोज यानी एक नाम नहीं है, भोज यानी एक नीति है, एक शैली है, एक परंपरा है, एक स्वभाव है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी प्रेरणा लेके हम भोज बनने की कोशिश करें। ये भोजशाला, ये सरस्वती कंठा भरणम के द्वार खुले हैं, आइए आप भोजशाला को देखिए, समझिए, जानिए और अपना सर्वश्रेष्ठ समाज को दीजिए ताकि भोजशाला में विद्वानों की परंपरा को हम निरंतर बना

0: श्रोताओं, 31 मई को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। इस उपलक्ष में कई बड़े आयोजन इंदौर और महेश्वर में हो रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं सुनील गणेश मटकर, देवीश्री अहिल्या जन्मोत्सव समिति इंदौर का सचिव। इस वर्ष मातुश्री देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्म जयंती है। मेरे पिताजी डॉक्टर गणेश शंकर मटकर ने अपने पीएचडी संशोधन के दौरान 1960 में यह समिति स्थापित की और तभी से यह उत्सव चल रहा है। इस उत्सव का यह 66वां वर्ष। इस वर्ष हमने 24 तारीख को मातुश्री अहिल्या देवी के जीवन काल का सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अवदान पर आधारित अष्टावधानी अहिल्या प्रस्तुत किया। साथ ही यह वर्ष स्त्री शक्ति वंदन वर्ष होने के वजह से हमने वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी, जो राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापक रही है, उनके अवदान पर आधारित एक नाट्य स्त्री शक्ति का साक्षात्कार यह प्रस्तुत किया। यह दोनों नाटक यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में 24 और 25 तारीख को हुए। उसी श्रृंखला में 28 तारीख को जाल सभागृह में हम चार मातृशक्तियों को सम्मानित करने, ये चारों मातृशक्तियां हैं श्रद्धेय भारती दीदी ठाकुर, श्रद्धेय भारती दीदी कुशवाहा, डॉक्टर माधुरी यादव और क्रांति जी जोशी। ये चारों शख्सियत अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक व दूरस्थ वन ग्रामों के अंदर मातुश्री अहिल्या देवी की प्रेरणा से निरंतर साइलेंट होकर सब अपने अपने कार्य कर रही हैं। हमारा जो परंपरागत कार्यक्रम है वो 31 मई 2026 को राजवाड़ा पर मातुश्री अहिल्या देवी की प्रतिमा पर आयोजित होगा। इसमें लगभग सैकड़ों भजन मंडल हम आमंत्रित करते हैं। वे राजवाड़ा के परिसर में एकत्रित होकर मातुश्री अहिल्या देवी की भजन गाते हुए उद्यान की 3 परिक्रमा करते हैं। साथ ही ढोल पथक भी होते हैं, बैंड वादक भी होते हैं और इंदौर शहर के गणमान्य नागरिक अहिल्या भक्त उस दिन बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित होकर मातुश्री को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, आदरांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बड़ा ही एक विहंगम दृश्य सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होता है, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित करते हैं कि हम चाहते हैं कि किसी भी उत्सव की वजह से शहर का ट्रैफिक कभी भी किसी प्रकार से बाधित ना हो, शहर में किसी भी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण ना फैले विशेष रूप से। इसलिए हम लोग भजन और टोकन स्वरूप 2 बैंड हमारे शुरुआत में और अंत में होते हैं। कला दल, नृत्य दल जो होते हैं वो बड़ी सुंदर सी आकृतियां बनाते हुए भजन मंडल के आगे आगे पद यात्रा करते हुए चलते हैं और 3 परिक्रमा जब ये लगाते हैं भगवत भजन करते हुए, तो ऐसा लगता है कि मानो राजवाड़े पर माँ अहिल्या के इस जन्म दिवस के अवसर पर सनातन धर्म कितना जागृत हो गया है, इसकी एक आभा हमें इंदौर में दिखती है। और यह उत्सव प्रारंभ करने के लिए हमारे साथ में हमारी मुख्य संरक्षक उषा जी ठाकुर हैं, हमारे संरक्षक श्री जयंत जी विषय हैं, हमारी समिति के अध्यक्ष श्री मानवेंद्र जी त्रिवेदी और उपाध्यक्ष डॉक्टर योगेन्द्र जी शुक्ला, डॉक्टर पंकज उपाध्याय, प्रदीप जी गावड़े जैसे बहुत सारे मेरे पिताजी डॉक्टर गणेश मटकर के कार्यकाल से जो लोग सतत कार्य कर रहे हैं उन्हीं के साथ में यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से और परंपरागत कार्यक्रमों के रूप में मनाया जाता है। उत्सव मनाए जाने का उद्देश्य अहिल्या जन्मोत्सव समिति का एकमात्र है कि देवी अहिल्या के अवदान का, सामाजिक और ऐतिहासिक कार्यों का, सनातन धर्म की जागृति जो उन्होंने की है, सनातन धर्म का चारों धाम सप्तपुरी और 12 ही ज्योतिर्लिंगों पर उन्होंने जो जीर्णोद्धार करके सनातन धर्म को जागृत करने की एक जो नींव रखी है, उस कार्य को जनमानस तक हम पहुंचा सके, यही एकमात्र हमारा उद्देश्य है।

0: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा, इंदौर परिक्रमा।
1: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे मुकाम सिंह चौहान। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

0: लता मंगेशकर, क्षमा कीजिए, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में एस एच बिहारी का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। संगीत ओपी नैयर का और फिल्म का नाम कश्मीर की कली।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारी ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारी ना।
1: और ये
3: मेरी गुड़िया की ना।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को आपने सुना। फिल्म का नाम था फिर वही दिल लाया हूँ। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत, संगीत ओपी नैयर का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं तीन देवियाँ फिल्म का गीत। इसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है। मजरू सुल्तानपुरी का ही लिखा हुआ गीत है, संगीत एसडी बर्मन का।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गैम्बलर फिल्म का गीत। गीत नीरज का लिखा हुआ है, संगीत एसटी बर्मन का।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सुनहरे पल कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए।
1: सुनहरे पल।
0: अभी आप सुनहरे पल कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं थोड़ी देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी। और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
4: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामीनाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
5: टेररिज्म कॉन्स्टिट्यूट्स एज वन ऑफ द मोस्ट
6: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब हरियाणा दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विषा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विषा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विषा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विषा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगिरी में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन

0: को अहमियत दी है। सिद्धारमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है। और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह सेज सेंटर्स हाई लेवल कमिटी ऑन आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंजेस टू ऑल्सो असेस रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ टू टैकल द इश्यू। National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
2: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it.

0: health creates uncertainty for business. Dailies have paid tributes to poet Bashir Badr, who died yesterday. Bashir Badr, master Urdu poet of love and melancholy, passes away, headlines the Times of India. In the next 5 years, the earth is likely to surge again and again past the international climate threshold set as safe, according to new United Nations climate projections, reports the Statesman. And finally, in a landmark development for wildlife conservation in Himachal Pradesh, forest officials in Chamba have captured the first ever video evidence of brown bear in Siabehi World Life Sanctuary, reports the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah says Centre's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirements of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कवि गोष्ठी। कार्यक्रम में प्रतिभागी कवि हैं कुलदीप रंगीला, सुरेंद्र सेंधव और पंकज जोशी। कार्यक्रम का संचालन किया है पंकज जोशी ने।
3: आइए मित्रों, आकाशवाणी की इस कवि गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तो हम आज की इस गोष्ठी की शुरुआत करें, उसके पहले मैं आपको हमारे साथी कविगण जो यहां पर उपस्थित हुए हैं उनसे परिचय कराना चाहूंगा। मेरे पास में बैठे हैं श्री कुलदीप रंगीला। कुलदीप रंगीला देवास से हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। टोक खुर्द से हमारे बीच आए हैं सुरेंद्र जी सेंधव। सुरेंद्र जी सेंधव का भी मैं यहाँ पर इस कवि गोष्ठी में स्वागत करता हूँ। और मैं स्वयं पंकज जोशी एक बार फिर हास्य कवि के रूप में देवास से आपके बीच रूबरू हो रहा हूँ। तो साथियों, इस गोष्ठी की शुरुआत इन चार पंक्तियों के साथ करते हैं कि शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं, शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं, नवरस सीमा में प्रवेश करते हैं। और दो अपना आशीर्वाद आज इन कवियों को, हम आज की इस कवि गोष्ठी का श्री गणेश करते हैं। तो साथियों, श्री गणेश करने के लिए मैं उस शख्स को यहां आवाज दे रहा हूं जिसका नाम होता है सुरेंद्र सेंधव। और सुरेंद्र जी सेंधव को इन चार पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच बुलाना चाहूंगा कि चीजें खराब होगी तो नालियों तक पहुंचेगी, जुबा खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। और सुरेंद्र सेंधव की कविताएं चिंतन का विषय है दोस्तों, दिल से निकली तो जरूर आपकी तालियों तक पहुंचेगी। सुरेंद्र जी सेंधव,
4: बहुत बढ़िया, वाह, धन्यवाद पंकज भाई। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ। आकाशवाणी के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा यानी कि सुरेंद्र सेंधव का प्यार भरा नमस्कार। इस काव्य गोष्ठी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी संस्कृति के अनुसार माँ के लिए सिर्फ एक दिन नहीं वरन हर दिन माँ का होता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीशी हमारा ध्येय वाक्य रहा है। माँ क्या होती है और क्या ताकत होती है माँ के आशीर्वाद में, चार पंक्तियों से आपके बीच रखता हूं, सभी काव्य अनुरागी सुने।

0: और पंकज भाई क्या होती है माँ, चार पंक्तियों में सुने कि रोते हुए चेहरों पे है मुस्कान जैसी माँ,
1: वाह
0: रोते हुए

है उसने इसलिए भगवान जैसी माँ। लेकिन विडंबना क्या है, देश में, समाज में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चेतावनी की चार पंक्तियां पढ़ता हूं।

0: कर्मों का फल आजकल यहीं पे मिलता है, क्योंकि गिव और टेक का जमाना है, कि किए कर्मों का फल आजकल यहीं पे मिलता है, तो किया जैसा हश्र उनका वही तेरा हशर होगा, किया जैसा हश्र उनका वही तेरा हशर होगा। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर ज्ञानी ज्ञानी और गुणवान बनाती है, नौकरी के लिए शहर भेजती है और फिर इंतजार करती रहती है उनके लौट आने का दिवाली होली रक्षाबंधन पर। तब उस पीड़ा की चार पंक्तियां सुने
1: जी,
0: कि दिलों में उत्सवों वाले अब वो

0: नहीं आते। कुलदीप भाई, किसी मित्र ने मुझसे
1: जी
0: मदर्स डे पर माँ की महिमा पर एक कविता लिखने को कहा, लेकिन मैं कैसे लिख पाता। माँ शब्द कितना विशालतम और कितना महान, और मेरी लेखनी कितनी तुच्छ। फिर भी मैंने एक प्रयास किया, छोटी सी कविता मैंने उसे प्रेषित की, वही आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं।
1: स्वागत है।
0: कि माँ का दर्जा सबसे ऊंचा,
1: वाह।
0: एक चिर परिचित धुन में माँ

0: नवाऊं, और अंत में भावुकता की चार पंक्तियां। एक न एक दिन वो जरूर हमारे जीवन में आता है जो कि बहुत बुरा दिन होता है। चार पंक्तियां सुने कि माँ के आंचल का ये साया सदा नहीं होगा, माँ के आंचल का ये साया सदा नहीं होगा, तेरा आशीष जो पाया जुदा नहीं होगा, दे के कांधा चिता को अग्नि दे आएंगे, दे के कांधा चिता को अग्नि दे आएंगे, पर तेरे दूध का कर्जा अदा नहीं होगा, पर तेरे दूध का कर्जा अदा नहीं होगा। अपने माता पिता का ख्याल रखे, उनको सम्मान दे, उनकी सेवा करे। धन्यवाद, जय हिंद।
1: सही बात सुरेंद्र जी, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माँ का ख्याल रखना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। मैं भी अपनी माँ का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं गो माता का भी बहुत सम्मान करता हूँ, मैं अपनी सासू माँ का भी बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं अपने बच्चों की माँ का भी बहुत सम्मान करता हूँ। और जहां तक माँ की बात है, मुझे बरबस कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि जीने की आस माँ है, अंधेरे में प्रकाश माँ है, रोटी पेट उपवास माँ है, और अमिताभ के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, शशि कपूर के पास क्या है? शशि कपूर के पास माँ है। मेरे घर की छत पे बिल्ली ने दिए 6 बच्चे, बड़े ही सुंदर, बड़े ही अच्छे बच्चे, तोड़कर आए अपना नीड़, उनको देखने के लिए लोगों की लग गई भीड़। एक बोला इन्हें भूख लगी है, दूसरा बोला नहीं नहीं इन्हें तो लगी प्यास है, तीसरा बोला इन्हें अपनी माँ की तलाश है, चौथा बोला माँ माँ तो शशि कपूर के पास,
2: वाह वाह वाह,
1: माँ माँ तो शशि कपूर के पास है, माँ माँ तो शशि कपूर के पास है। अब साहब जनगणना अधिकारी आए अमिताभ बच्चन के द्वार, अमिताभ बोले अंदर आइए फरमाइए, जनगणना अधिकारी बोले हमें आपके परिवार के सदस्यों का विवरण बताइए, अमिताभ बोले देखिए मेरा मेरी प्रतिभा ही मेरा धन है, मेरा नाम अमिताभ है और पत्नी का नाम जया बच्चन है, बेटा अभिषेक है और बहू ऐश्वर्या बच्चन है। तो जनगणना अधिकारी बोले वो सब तो ठीक है, पर एक बात बहुत खास है, हमें आपकी माँ की तलाश है, हमें आपकी माँ की तलाश है। तो अमिताभ बोले माँ माँ तो शशि कपूर के पास है,
2: वाह
1: माँ माँ तो शशि कपूर के पास है। और साहब शशि कपूर रो रहा था, आपे से बाहर हो रहा था, अमिताभ बोला यार क्यों रोता है, आजकल तो अपुन की माँ पे भी तेरा ही अधिकार होता है। शशि कपूर बोला तुम नहीं समझोगे, ये बात सही है कि तुम्हारी माँ मेरे पास है, लेकिन मेरी माँ तो भगवान के पास है, माँ की याद में मेरी आत्मा हर वक्त रोती है, और माँ का महत्व तो वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती है, माँ का महत्व तो वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी एक आस है, अंधेरे में प्रकाश है, माँ ज्योता वाली है, माँ शेरा वाली है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ की हर बात निराली है, और माँ से ही पूरे जग में प्रकाश है, पर माँ माँ तो हम सबके पास है, हम सबके पास है, हम सबके पास है। आइए मित्रों, माँ से जब हमने अनुमति ले ली है तो इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरे क्रम पर मैं मेरे साथी भाई कुलदीप रंगीला को आवाज दे रहा हूं।
3: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मित्रों, कुछ हास्य के छंद और मुक्तकों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं।
1: स्वागत।
3: जोशी जी को धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी हास्य की भूमिका के साथ मुझे आमंत्रित किया। चार पंक्ति देखिए। जीवन में जो कभी था वो रंग ढूंढ रहे हैं, जीवन में जो कभी था वो रंग ढूंढ रहे हैं, चक्री पकड़ने वाले के संग ढूंढ रहे हैं, और बचपन में जो कटकर

0: ढूंढ रहे हैं। और मित्रों, हास्य कवियों के साथ घटनाएं नहीं होती है, उनके साथ दुर्घटनाएं होती है। मैं कुछ दुर्घटनाएं कुछ छंदों के माध्यम से बताता हूं। आज से 10 वर्ष पहले की एक सत्य घटना, आनंद लीजिएगा एक छंद के माध्यम से।
1: स्वागत है।
0: कि एक लड़की वाले मुझे देख कर कहने लगे, आपके संग हम हमारा रिश्ता जोड़ डालेंगे। लड़की खूबसूरत है पर एक आंख से है काणी, जिसे हम आपके हवाले छोड़ डालेंगे। मैं बोला लड़की काणी तो लड़का भी काणा ही ढूंढो, यह रिश्ता हम तत्काल तोड़ डालेंगे। वो बोले शादी के लिए आप हाथों भरे श्रीमान, हम

आंख फोड़ डालेंगे। वो बोले शादी के लिए। और मित्रों क्या होता है, एक पाउ छोड़ देता हूं, एक छंद का और आनंद लीजिएगा कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम पूछा मैं बोला नबीन रख दीजिए। एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम पूछा मैं बोला नबीन रख दीजिए। एक वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया। नाम पूछा मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े के इसके नाम

0: रख दीजिए। और मित्रों हम हाथ से कमी होगा क्या, कई जगह कवि सम्मेलन होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग कवि सम्मेलन आजकल करवाते हैं। अभी जोशी जी हमारे साथ थे कवि सम्मेलन में, हम गए थे, उसके आयोजक का नाम था प्रेमनाथ तिवारी, और तिवारी जी ने कवि सम्मेलन सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन भावुक होकर मंच पर आए, आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पारिश्रमिक जब ही दिया जाएगा जब वो मेरे पुत्र पे चार चार पंक्ति सुनाएंगे। तो सारे कवि परेशान, अब सारे काम छोड़ो और तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। तो सारे कवि प्रारंभ हो गए, किसी ने कहा तिवारी जी का पुत्र डॉक्टर बनेगा, कोई कहने लगा इंजीनियर बनेगा। 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया, तो मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में आए, जो चार पंक्ति तिवारी जी को सौंपी उसका आनंद लीजिए।
1: स्वागत
0: के घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, नाम घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा, एक बोला डॉक्टर एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला न डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी।

पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी। और मित्रों आजकल क्या होता है, शादी का सीजन चल रहा है, कई जगह हम जाते हैं। पहले हमारे देश की संस्कृति रही कि हम बैठ के खाना खिलाया करते थे शादियों में, लेकिन आजकल परिवर्तन ऐसा हुआ कि बफेट पार्टी हर जगह होती है, जहां पर आदमी खड़े खड़े खाना खाता है। तो जिस समय बैठ के खाना खिलाया जाता था उस समय भी कई प्रकार की परेशानियां आती थी। एक परेशानी एक छंद के माध्यम से कि एक श्रीमान के घर बैठ गए पंगत में, खाना खा के बोले भोजन बड़ा ही सलोना है। एक श्रीमान के घर बैठ गए पंगत में, खाना खा के बोले भोजन बड़ा ही सलोना है। पड़ोस में बैठे श्रीमान मुझे टोकते थे, और कितनी पूड़ी इस पेट में डुबोना है। मैं बोला मेरी पूड़ी है पेट मेरा पत्तल मेरी, मेरे जल्दी खाने से क्या लाभ तुम्हें होना है। वो बोला मेरी थाली में पड़ोसी हाथ धो के गया, मुझे अब आपकी थाली में हाथ धोना है। और मित्रों हम हर जगह गीता का एक श्लोक लिखा हुआ देखते हैं, जिस पर लिखा होता है कि इस धरती पर आदमी अकेला आता है और अकेला जाता है। मैंने इस बात का थोड़ा सा विरोध किया, मैंने कहा यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि आदमी आता अकेला है, परंतु ये गलत है कि आदमी जाता अकेला है। आदमी अपने साथ क्या लेके जाता है, एक आध्यात्मिक हास्य कि बूढ़ा हो जवान हो गरीब धनवान हो, सबको एक दिन अपने संग काल लेके जाता है। वो गाड़ियों में घूमता था बंगलों में रहता था, पर संग में न कोई कुछ माल लेके जाता है। तो अकेले ही आए थे हम अकेले ही जाना हमें, विद्वानों का कहां ये ख्याल लेके जाता है। पर कहे कुलदीप ना अकेला कोई जाता वहां, 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है। कहे कुलदीप ना। और मित्रों एक छोटा सा गीत में और पढ़ देना चाहता हूं, क्या है, जब ऊपर वाले ने इस सृष्टि का निर्माण किया, ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, तो हास्य की बातें थी आपसे जुड़ने के लिए, लेकिन एक संदेश का गीत मैं आपके बीच में रखता हूं।

जब ऊपर वाले ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि पे कई प्रकार के जीव जंतु बनाए, सभी को कुछ न कुछ विशेष दिया। जैसे हाथी को दी ताकत, हाथी ने कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। सांप को दिया जहर, सांप ने कभी अपने जहर का दुरुपयोग नहीं किया। परंतु इंसान को दिया दिमाग, इंसान ने आज तक अपने दिमाग का कभी सदुपयोग नहीं करा। बस यहीं से मेरी कविता प्रारंभ होती है। हमारे देश में जो छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होते हैं, उन विवादों से हटके एक सांप्रदायिक एकता से संबंधित में कविता का उद्देश्य यह है कि हमारे शरीर का जो संरचना है, इसमें कौन सा अंग किस काम में आना चाहिए। चार पंक्तियां पहले भूमिका की, फिर गीत। के भगवान में अल्लाह में कोई भेद नहीं है, भगवान में अल्लाह में कोई भेद नहीं है, सच हम कहेंगे कहने में कोई खेद नहीं है। जाना था जिन वीरों को तो वतन के रास्ते, आंखें झुकाए जा रहे पतन के रास्ते, अंगों के दुरुपयोग पे न शोक कीजिए, इस काया के अंगों का सदुपयोग कीजिए। इस काया क्यों, यहां से एक एक अंग किस काम में आता है। के कांधा वो क्या जो अर्थी के न काम आ सके, वो पांव ही क्या जो न दर खुदा के जा सके, वे उंगलियां ही क्या कि जो मुट्ठी न बनाए, मुट्ठी ही क्या दुश्मन के जो न

0: और वो दिल ही क्या जिसमें किसी के प्यार नहीं हो, वह दिल ही क्या जिसमें किसी के प्यार नहीं है। और मित्रों अभी नवरात्रि का पर्व है, कई लोग नवरात्रि के उपवास रखते हैं, तभी रोजे, कई हमारे मुस्लिम भाई रोजे रखते हैं, तो रोजे रखने वालों को और उपवास करने वालों को ये छंद समर्पित। जो इंसान फूलों पे चला है उसे ऐसा वक्त भी आ सकता है कि कांटों पे चलना पड़े, उसे कांटों पे चलने के लिए भी सदैव तैयार होना चाहिए। कि वह एड़ी क्या जो कांटों की चुभन न सह सके, वे बाल क्या गृहस्थी की पवन न सह सके, वह रक्त ही क्या खुद में जो न आग उबाले, जुबान ही क्या मुख से जो दुआ न निकाले, अरे त्वचा ही क्या जो ताप का एहसास ना करे, त्वचा ही क्या जो ताप का एहसास ना करे, और वो पेट ही क्या जो कभी उपवास ना करे, वह पेट ही क्या जो कभी उपवास ना करे। और अंतिम पंक्तियां निवेदित है, एक शब्द होता कंदोरा जिसे मालवा में कहा जाता है, कड़धनी जिसे मालवा में कहा जाता है कंदोरा, वो शब्द इस छंद में आएगा। बात संघार से शुरू होती है और कहा जाती है कि कमर वह क्या कि जिस पे कंदोरा न कसा हो, वे गाल गोरे क्या कि जिस पे तिल न बसा हो, वे गाल गोरे क्या कि जिस पे तिल न बसा हो, इंसान वह क्या जिस पे जमाना न हंसा हो, अरे छाती वो क्या दुश्मन के आगे जो न डट सके, छाती वो क्या दुश्मन के आगे जो न डट सके, और गर्दन वो क्या जो देश के लिए न कट सके, गर्दन वो क्या जो देश के लिए न कट सके। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, जो इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे थे भाई पंकज जोशी जी, मैं चाहता हूं कि उनका संचालन का तेवर आपने देखा है, उनके काव्य पाठ का भी रंग आप देखें। मैं पंकज जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपनी काव्य यात्रा का शुभारंभ करें। स्वागत है
1: मित्रों। जिनकी शादी हो गई वो खुश खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कई कुंवारे हैं जिनका ये संयोग नहीं बैठ रहा, तो उन कुंवारे लोगों की तरफ से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। वो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, गोविंदा ओ गोपाला, गोविंदा ओ गोपाला, खोल दे किस्मत का ताला, मेरी भी बाहों में दे दे कोई सुंदर सी बाला, गोविंदा ओ गोपाला, खोल दे किस्मत का ताला, मेरी भी बाहों में दे दे कोई सुंदर सी बाला, ऐसी दे या वैसी दे,

पाला, खोल दे किस्मत का ताला। और साहब आगे के सपने एक कुंवारे व्यक्ति के क्या होते हैं देखिए, कि मेरा भी घर बार बसे, सपनों का संसार बसे, मेरा भी घर बार बसे, सपनों का संसार बसे, मेरे भी आंगन में खेले, मेरे भी आंगन में खेले, तेरे जैसा नंदलाला, गोविंदा ओ गोपाला, गोविंदा ओ गोपाला, खोल दे किस्मत का ताला। और साथियों, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और कुलदीप ने एक बात कही थी और एक छंद सुनाया था पंगत के ऊपर। आज हमारे यहाँ संस्कृति ये हो गई कि बफेट में हम जाते हैं और खड़े खड़े खाते हैं, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि बफेट हो या किसी भी प्रकार की शादी हो, लेकिन अगर वहां पर रोटी रख दी गई है तो सबसे ज्यादा भीड़ रोटी के स्टॉल पर ही मिलेगी। और जब ये परिस्थिति है तो रोटी के ऊपर कुछ पंक्तियां देखिए कि रोटी प्रेम तराना है, रोटी प्रेम तराना है, रोटी सबको खाना है, रोटी के कारण ही देखो भोजन आज सुहाना है। रोटी प्रेम तराना है, रोटी सबको खाना है, रोटी के कारण ही देखो भोजन आज सुहाना है। कि रोटी एक वरदान है, भोजन की ये शान है, खाने की थाली में रोटी, खाने की थाली में रोटी, सच पूछो तो भगवान है, मान है, सम्मान है, रोटी कोई वस्तु नहीं है, कुदरत का नजराना है, रोटी प्रेम तराना है, रोटी हमको खाना है। और साहब बफेट में हम जाते हैं लेकिन हम खड़े खड़े खाते हैं, वास्तविकता ये कि रोटी वो वरदान है जिसे बैठकर ग्रहण करना चाहिए। तब मैंने लिखा है कि बफेट में हम जाते हैं, बफेट में हम जाते हैं, पश्चिम को अपनाते हैं, खाना चाहिए बैठ के रोटी,

0: काल में भाजर भोजन के उस हाल में रस भरी ना दाल में सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी रोटी के स्टाल में। अच्छा। सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी रोटी के स्टाल में। रोटी भोजन सुहाना है बैठ के हमको खाना है रोटी के कारण ही देखो पागल आज जमाना है।
1: अच्छा।
0: और साहब रोटी की महिमा देखिए कि कोई बीन के खाता है रोटी।
1: वाह।
0: कोई बीन के खाता है रोटी कोई छीन के खाता है रोटी जिसको शुगर हो जाती वो गिन के खाता है रोटी। व्यक्ति के पूरे स्वास्थ्य का रोटी ही पैमाना है रोटी प्रेम तराना है रोटी सबको खाना है रोटी प्रेम तराना है। और साहब अंतिम चार पंक्तियां देखिए कि रोटी के कितने रूप हैं। कई रूप हैं रोटी के रोटी ब्रेड और पाव भाजी।
1: क्या बात है।
0: कई रूप हैं रोटी के रोटी ब्रेड और पाव भाजी पंडित इसको चैन से खाता प्रेम से खाता है काजी।
1: वाह।
0: पंडित इसको चैन से खाता प्रेम से खाता है काजी। सांप्रदायिक एकता का रोटी ताना बाना है रोटी भोजन सुहाना है रोटी प्रेम तराना है रोटी के कारण ही देखो पागल आज जमाना है। पागल आज जमाना है रोटी सबको खाना है। धन्यवाद साथियों। मेरे साथ आज इस कवि गोष्ठी में थे भाई सुरेंद्र सेंधव टोक खुर्द से, देवास से कुलदीप रंगीला और आपका मित्र पंकज जोशी हास्य कवि माँ चामुंडा की नगरी देवास से आपके बीच यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद जय भारत।

अभी आपने सुनी कवि गोष्ठी। कार्यक्रम में प्रतिभागी कवि थे कुलदीप रंगीला, सुरेंद्र सेधव और पंकज जोशी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। और श्रोताओं, अब वक्त है लोक संगीत का। आज हम आपको शारदा पगारी के गाए निमाड़ी लोकगीत सुनवा रहे हैं।

आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप लोक संगीत का आनंद ले रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं शारदा पगारी।

लोक संगीत में अभी आपने शारदा पगारे के गाए निमाड़ी लोकगीत सुने। शारदा पगारे के गाए निमाड़ी लोकगीत आप आज शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको आबिदा परवीन की गाई रचनाएं सुनवा रहे हैं।

0: सुगम संगीत में आज आपने आबिदा परवीन की गाई रचनाएं सुनी। आबिदा परवीन की गाई चंद रचनाएं आप आज शाम 6:30 बजे भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको पंडित भजन सोपुरी का संतूर वादन सुनवा रहे हैं। आज आप सुनेंगे संतूर पर बजाया राग नट भैरव। पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित दालचंद शर्मा। तो लीजिए सुनिए पंडित भजन सोपुरी का संतूर वादन।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आपने पंडित भजन सोपोरी का संतूर पर बजाया राग नट भैरव सुना। पखावज पर संगत कर रहे थे पंडित दालचंद शर्मा। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख है नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। ग्वालियर जिले के लिए ये महीना मिला जुला रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ग्वालियर में राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन का शुभारंभ करने भी पहुंचे। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद सभी को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़कर प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने में सहयोग देने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्वालियर में पशुओं के केयर एंड वेलनेस सेंटर खोलने, पशु स्वास्थ्य एवं उपचार केंद्र का उन्नयन करने और डबरा में नया पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के साथ अन्य अतिथिगणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ऋषि गालव विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार भूमि पूजन किया। गौरतलब है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण मध्य भारत शिक्षा समिति के द्वारा ग्वालियर जिले के बेला गांव के अंतर्गत लगभग 55 बीघा जमीन पर 110 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा से यहां शैक्षणिक सत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण विश्वविद्यालय 3 वर्ष में बनकर तैयार होगा। ग्वालियर जिले में भी जनगणना कार्य निदेशालय के द्वारा निर्धारित जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना का प्रथम चरण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान ने शहर में चल रहे जनगणना कार्य का बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने न्यू दर्पण कॉलोनी में प्रगणकों द्वारा की जा रही जनगणना की वस्तुस्थिति को जाना। गौरतलब है कि बीते 1 मई से शुरू हुई जनगणना का प्रथम चरण 30 मई तक चलेगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हाल ही में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया गया। इस श्रमदान कार्यक्रम के तहत लक्ष्मीगंज स्थित ऐतिहासिक मेहराब साहब की तलैया पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अगुवाई एवं कलेक्टर रुचिका चौहान की प्रेरणादायक मौजूदगी में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजनों ने एक साथ तलैया की सफाई में अपना योगदान दिया। ग्वालियर जिले में भी भूमि नामांतरण प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। इसके साथ ही इस व्यवस्था से नागरिक सुविधाओं को अधिक सहज और प्रभावी बनाया गया है। साइबर तहसील 2.0 वर्तमान में जिले की सभी तहसीलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। वहीं जिले के विकास खंड घाटी गांव की ग्राम पंचायत आरोन में जलगंगा संवर्धन अभियान एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 के तहत यहां बने कोलीझोरा तालाब ने यहां के 50 हेक्टेयर बंजर नुमा सूखे क्षेत्र के रकबे को उपजाऊ खेतों में बदल दिया है। अब इन खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें लहलहाने लगी हैं। ग्वालियर जिले में समर्थन मूल्य पर सुव्यवस्थित ढंग से गेहूं का उपार्जन जारी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 40 केंद्र संचालित हैं। 22 मई तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में 7,448 किसानों से 9,97,494 क्विंटल गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। बीते दिनों प्रदेश के जल संसाधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पेयजल प्रबंधन के साथ साथ जनहित के अनेक मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले दिनों न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह अहलूवालिया ने संत योगी हुजूर मालिक साहब के जीवन पर आधारित पुस्तक दिव्य चरितामृत का विमोचन किया। आध्यात्म निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के भी उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता संत कृपाल सिंह ने की। कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर हुए शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाओं को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की नौकरी दिलाई जा रही है। जिले में वर्तमान में शक्ति दीदी के तहत पहले से ही 112 महिलाएं ये भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही हैं। पिछले दिनों ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने जायजा लिया। गौरतलब है कि गाय के गोबर से सीएनजी बायोगैस उत्पादन के क्षेत्र में यह प्रदेश के सबसे बड़े प्लांट में से एक है। आदर्श गौशाला लाल टिपारा ने गौवंश के प्रबंधन के साथ साथ गाय के गोबर व कचरे से वायु गैस उत्पादन कर

0: इस प्रदेश के लिए अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ग्वालियर जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक फैसलों तथा सरकारी और जनहित से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी सीधे आपके मोबाइल फोन पर मिलेगी। कलेक्टर ने हाल ही में इससे संबंधित एक व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ किया है। ग्वालियर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख था नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले
2: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।
2: MH हॉटलाइन कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम में आप अब से लेकर 11 बजे तक हमें फोन कर अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो श्रोताओं, हम 11 बजे तक आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं और हमारे वो श्रोता जिनके फोन पिछले कार्यक्रमों में लगे हैं, कृपया कुछ दिनों का अंतराल रखें, उसके बाद ही हमें फोन करें। और चलिए लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो।
4: हेलो,
2: हाँ जी, MH हॉटलाइन।
4: हेलो दीदी, नमस्कार।
2: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं?
4: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी। और आपके कार्यक्रम में आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ इस कार्यक्रम में दीदी। और शनिवार के दिन 5 बजे वाले युववाणी के अंतर्गत जो कार्यक्रम आता है दीदी, उसमें तो मैं हमेशा जुड़ता हूँ।
2: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है कि आपने इस प्रोग्राम में भी शिरकत की। बताएं कौन सा गाना सुनेंगे
4: दीदी? फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुमसा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला गीत सुनना है दीदी।
2: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया। भगवान सिंह जी, अपने बारे में बताएं।
4: दीदी हम खेती किसानी करते हैं, किसान है दीदी।
2: अच्छा अच्छा, इस समय क्या लगा रखा है आपने?
4: दीदी अभी तो हमारे खेत खाली हैं, हमने हकाई जुताई कर ली है। और अच्छा। जैसे ही बरसात चालू होगी दीदी, तो हम सोयाबीन की और मक्का की फसल बोएंगे दीदी।
2: सोयाबीन और मक्का लगाते हैं
4: जी।
2: इन दिनों तो मक्का की काफी डिमांड है
4: दीदी। तो अभी हमारे अपने इधर नहीं बुआया है ना, जब बारिश बुआएगा जब अपने इधर होगा, अभी तो खाल मतलब बुआया ही नहीं है अपने मध्य प्रदेश में तो।
2: जी जी जी, गर्मियों में कोई फसल नहीं लेते हैं, बारिश आएगी तो आप मक्का और सोयाबीन लेंगे। जी
4: जी हाँ दीदी।
2: भगवान सिंह जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
4: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: दुबे के बगीचे से महेश राय का।
0: जी महेश जी, बताएं कौन सा गाना सुनेंगे?
1: शोर फिल्म का गाना सुना दीजिए मैडम।
0: गीत के बोल बताएं।
1: जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह।
0: जी जी, बहुत अच्छा गीत है। चलिए आपको ये गीत सुनवा देते हैं। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन
1: जी।
0: जी बहुत आवाज़ें आ रही हैं आपके पीछे।
1: नहीं, कोई आवाज़ नहीं है मैम।
0: कहाँ से बोल रहे हैं, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, श्रीनगर जिला महोबा से।
0: जी अरविंद जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी फिल्म का नाम है कर्मा।
0: जी और गीत के बोल?
1: मैंने रब से तुझे मांग लिया।
0: क्या बात है अरविंद जी, कहाँ हैं इस वक्त आप?
1: घर में ही है मैम।
0: घर में ही है? और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: सभी लोग हैं, माता जी हैं, हम दोनों हैं, बच्चे हैं।
0: जी जी
1: जी मेरे भाई बहन कोई है नहीं।
0: अच्छा,
1: पिताजी रहे नहीं।
0: अच्छा, तो आप अपने परिवार के साथ हैं इस वक्त। और अरविंद जी क्या करते हैं आप?
1: किराना की दुकान है मेरी, मैं यहीं बैठ के आपको सुनता हूँ।
0: अच्छा, तो इस समय ग्राहकों की भीड़ है आपकी दुकान पर?
1: नहीं कोई भी नहीं, खाली हूँ।
0: अच्छा, अभी सुबह की शुरुआत हुई है
1: जी।
0: चलिए अरविंद जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार
1: मैं कश्मीर तो नाम से लतीफ अहमद रहीन।
0: जी नाम आपका एक बार फिर से बताएं।
1: लतीफ अहमद रहीन।
0: अच्छा लतीफ अहमद जी कौन सा गाना सुनेंगे?
1: मुझे सुनना है लता मंगेशकर की आवाज़ में बाला दरी का गाना।
0: जी जी
1: लता मंगेशकर।

0: क्या और थी?
1: गाने के बोल बताए।
0: बुला नहीं देना सगा नहीं जमाना। अच्छा, अच्छा।
1: जी बहुत अच्छा लगा आपने इतनी दूर से हमें फोन किया है।
0: धन्यवाद। ये प्रोग्राम बहुत पसंद है, दिल के करीब है प्रोग्राम मुझे।
1: जी जी जी जी बहुत अच्छी बात।
0: आप दिल भरी तक आज वो भी सुनते हैं ये चैनल।
1: अच्छा
0: हाँ होटलों में सुनते हैं ना।
1: अच्छा अच्छा मोबाइल ऐप पर आप लोग ये प्रोग्राम सुनते हैं जी। और आप ही फोन करते हैं कि आपके साथी भी फोन करते हैं?
0: नहीं वो तो नहीं करते, उनको नहीं मिलता ना फोन, मेरे को मिलता है फोन तो फिर भी उठाते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: चलिए करते हैं कोशिश, मगर नहीं लगता उनका कॉल नहीं उठता है।
1: जी जी ऐसा कुछ नहीं है, उनसे कहिएगा कि वे लगातार कोशिश करें, रीडायल करते रहें।
0: नहीं मेरा वो कहता है खाली घंटे बैठा है वहाँ से नहीं कॉल उठता
1: है। हाँ हाँ हाँ ये बात तो सही। जी जी जी ये बात सही है कि समय काफ़ी ख़राब होता है इसमें, पर अपनी पसंद का गीत सुनने मिले तो खुशी भी होती है।
0: हाँ खुशी तो होती है, इसमें दो नंबर है ना, एक नंबर होता वो भी कॉल।
1: जी जी दो नंबर है 2710223 और 2710224, एक अंक का फर्क है।
0: जी जी वो कहता है एक नंबर इसमें अगर चलेगा तो भी लगेगा।
1: जी जी
0: हाँ ये कहा।
1: जी जी चलिए लतीफ़ अहमद जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, धन्यवाद फ़ोन करने के लिए।

0: दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
2: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब शालिनी जी आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
1: क्या बात, बताएं हसीना जी कौन सा गीत सुनेंगी?

0: जी मैं सीना भी मंसूरी बोल रही, फालदाना का इंदौर से।
1: जी जी
0: कैसे
1: जी
0: मैडम आप?
1: बस मैं अच्छी हूँ, आप बताएं।
0: बस अच्छे ही रहना चाहिए मैडम, हम भी अच्छे हैं और दुआ करते हैं आप सभी आना सर सभी सलामत रहे, अच्छे रहे, खुश रहे।
1: जी जी जी और बताएं गाना कौन सा सुनेंगी?
0: ये फिल्म का नाम है गीत और लता जी की आवाज में। आप जो मेरे मित ना होते, होठों पे मेरे गीत ना होते, आप जो मेरे, ये
1: जी
0: सुना दीजिए।
1: बहुत अच्छा गाना है। बताएं आपकी ईद कैसी रही?
0: बहुत अच्छी रही मैडम, आप लोगों को मिस किया हमने।
1: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है। अच्छी रही ईद, परिवार के संग आनंद किया आपने।
0: जी जी
1: जी चलिए
0: और
1: आप।
0: इससे ज्यादा खुशी तो उस दिन हुई थी मैडम, और 22 तारीख को।
1: 22 तारीख को, अच्छा। बिल्कुल अच्छी बात है।
0: जी जी
1: चलिए हसीना जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: शुक्रिया मैम।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: लातेहार भैरव से अनिल बामनिया बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी अनिल जी, बताएं कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म अंजाम का गीत है
0: जी।
1: बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, ये गीत सुनना चाहता हूँ।
0: जी जी जी, आपको जरूर सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। अपने बारे में बताएं अनिल जी।
1: मैं स्कूल में टीचर हूँ मैडम।
0: अच्छा, और इन दिनों छुट्टियाँ चल रही हैं आपकी?
1: जी छुट्टियाँ खत्म होने वाली है।
0: अच्छा, छुट्टियाँ खत्म होने वाली है,
1: कल से जाना है स्कूल।
0: अच्छा, कल से ही शुरू हो रहे हैं आपके स्कूल?
1: नहीं कल से नहीं है, सोमवार मंडे से हो जाएंगे।
0: मंडे से हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो काफी कम दिन की छुट्टियाँ रही।
1: हाँ इस बार 1 महीने की छुट्टी दी है गवर्नमेंट ने।
0: अच्छा,
1: और अभी फिलहाल में जैसे बच्चे उनको जो उनको परीक्षा भी सप्लीमेंट्री जो आई है एग्जाम भी लेना है।
0: अच्छा,
1: और जो बच्चे रुक गए हैं उनको पुनः परीक्षा देना है ताकि वो प्लेइंग फेल हो है तो भी वो पास हो जाए और अपना साल का ग्रोथ भी होगा।
0: अच्छा, और जनगणना का कार्य भी कर रहे हैं क्या आप?
1: नहीं मैं क्या ब्लाइंड पर्सन हूँ तो मेरा जनगणना की मेरी ड्यूटी नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी जी जी। अनिल जी आपसे बात करके अच्छा लगा, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार, मैं अनिल भंडारी सुजामा नगर से बोल रहा हूँ।
0: जी अनिल जी, बताएं कौन सा गाना सुनेंगे?
1: आज हम सावन की घटा फिल्म थी, आशा भोसले गाया हुआ मधुर गीत है।
0: जी जी।
1: हेलो चलो शादी ना, हम भी साथ ही तुम्हारे।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: ये गाना मनोज कुमार और शर्मा टैगोर के बीच गाया हुआ है।
0: जी जी जी, फिल्म देखी थी।
1: मनोज कुमार रिक्शा चला रहे, गाड़ी चला रहे, उसके पीछे बीच शर्मिला बैठ के कह रहे कि हम भी आपके साथ में, हमें ध्यान दे। वो
0: क्या बात है। फिल्म देखी थी आपने?
1: हाँ देखी थी, चार बार फिल्म देख गई थी। उसका संगीत भी लाल बाप का, ओपी जहर का संगीत था, लाल बाप संगीत सभी गीत अच्छे थे पिक्चर के।
0: अच्छा अच्छा,

0: और
1: मनोज कुमार की और एक्टिंग और सावत की शर्मिला की एक्टिंग बहुत जोरदार थी,
0: बहुत अच्छी थी जी जी। कब देखी थी, किसके साथ देखी थी फिल्म आपने?
1: सब अधिक तो हमने अकेले देखी मिली।
0: अच्छा, अकेले ही देखते थे आप?
1: साथ के बाद की फिक्र नहीं है।
0: अच्छा अच्छा, तो आपकी श्रीमती जी को शौक नहीं है फिल्में देखने का?
1: हाँ देखिए, आप तो नहीं है, बचपन सुबह एक एक दिन चार चार फिल्म देखते थे हम।
0: क्या बात है, क्या
1: बात है। अच्छी लगी फिल्म, जहाँ अच्छी लगी, जहाँ संगीत मीठा हुआ, हम पहुँच गए वहाँ पे।
0: क्या बात है,
1: पहुँच जाते थे हम तो, हमको पहुँच गए थे।
0: बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात।
1: गीत था बहुत प्यारा, आपको भी पसंद आएगा
0: जी जी। चलिए, आपको और सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद का सावन की घटा फिल्म का ये गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी,
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: अनोखे सिंह।
0: अनोखे सिंह जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: अपना घर है स्वर्ग से सुंदर।
0: जी जी जी, स्वर्ग से सुंदर फिल्म का ये गीत है।
1: हाँ सर जी,
0: चलिए
1: और
0: आपको
1: हमारा घर भी टूटा फूटा फुटपाथ पे बहुत बढ़िया है।
0: स्वर्ग से सुंदर जी, घर तो अच्छा ही होता है, घर में सब सुकून मिलता है इंसान को, इसलिए घर सबसे अच्छी जगह है जी।
1: और सर जी, हमारा फोन कई क्यों लग जाता है, इसकी क्या वजह है?
0: देखिए, अभी तो कार्यक्रम का समय हो रहा है और आपका गीत मुझे सुनवाना है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: इस गीत के साथ ही आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: अभी आप MH हॉटलाइन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियां औरों के नाम करना भी जिंदगी है। सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी जिंदगी है। अपनी खुदगर्जी पर गुरूर करके क्या साबित होगा, कभी औरों के दर्द को समझना भी जिंदगी है। इसी सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार के साथ आइए शुरू करते हैं आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। नमस्कार जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम संदलपुर
0: कार्यक्रम। अच्छा, आवाज कम आ रही है, चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं अब, ठीक है।
1: हाँ,
0: जी जी बताइए,
1: मेरे को गाना सुनना है।
0: हाँ जी, किस फिल्म का गाना सुनना है, कौन सा गीत की बोल बताइए।
1: पिक्चर गाना है लता की आवाज में, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: छोड़ दे सारी दुनिया, ठीक है।
1: हाँ, जी। पसंद है मेरे को।
0: जी आप क्या करते हैं?
1: मैं पुराने की खेती करता हूँ। देसी पान होता हूँ हमारे गाँव में, संदल पर माधरी पास गाँव मेरे ग्वाली के पास में।
0: जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते रहिए और अपनी पसंद का गीत।
1: आप मैडम कौन बोल रही हैं?
0: जी मैं प्रियंका बात कर रही हूँ,
1: दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ, गाना सुनना चाह रहे हैं मेरे साथ साथ लोग।
0: जी बिल्कुल, उनसे कहिए, फोन करेंगे तो हम बिल्कुल उनकी फरमाइश शामिल करेंगे।
1: नाम तो बोल देना, मैं नाम बता रहा हूँ।
0: जी दो नाम बता दीजिए जल्दी से।
1: बरार से गुड मिश्रा, संतर बरार से।
0: हाँ जी,
1: गाना सुनना चाह रहा।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार
1: नमस्कार बहन जी।
0: जी। कौन बात कर रहे हैं बताइए, अपना नाम और अपनी पसंद भी बताइए।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बहन जी आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा है।
0: जी, मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। बताइए कैसे हैं आप।
1: बस दीदी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ,
0: जी
1: और इस वर्ष से यही आशा करता हूँ कि हमारी दीदी भी ठीक है।
0: जी बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं तभी हम इतने स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं जी। बताइए, दुआएं तो हमेशा काम करती ही है मांगीलाल जी, बताइए, है ना
1: सही है, दवाई सबसे बड़ी बात है, दवा बहुत बड़ी
0: जी।
1: चीज है,
0: एक बार दवा काम करना चाहे भूल जाए, लेकिन
1: भूल
0: दुआएं
1: जाए
0: कभी
1: लेकिन
0: न
1: दुआ नहीं
0: कभी,
1: भूलेगी।
0: जी,
1: दुआ
0: दुआएं कभी न कभी जरूर काम
1: सही है,
0: करती हैं
1: सही है,
0: जी।
1: लेकिन इंसान को सच्चे दिल से देना चाहिए।
0: बिल्कुल, तभी तो वो, और वो जल्दी भी होती
1: हाँ
0: है, जो सच्चे दिल से दी जाती है वो बहुत
1: जी
0: जल्दी भी परिणाम देती है हमें
1: जी सही है बहन
0: जी।
1: जी।
0: मांगीलाल जी, बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए
1: बहन जी, फिल्म का नाम तो है तलाश,
0: जी।
1: आज क्या जुमिली आत्मा।
0: बहुत अच्छी पसंद है आपकी, बहुत
1: हाँ बहन जी, बढ़िया
0: पुरानी।
1: है पुराना गाना, और मैं भी आकाशवाणी भोपाल का बहुत पुराना और नियमित सोता हूँ।
0: जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: दमोह से कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम भी तो बताइए।
1: मल्थुराम केवलारी अहरवाल। सुना
0: अच्छा जी, अब अपनी पसंद का गीत भी बता दीजिए।
1: दीजिए। देख देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान।
0: अच्छा, क्यों आप इतने निराश क्यों हैं?
1: हाँ, मैं राष्ट्रीय गीत सुनता हूँ सर, श्रीमान जी अच्छे ही अच्छे। हाँ, तो सुनता हूँ आकाशवाणी से,
0: जी,
1: और आज से नहीं, मैं 85 से सुनता चला आ रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमें सुनकर बड़ी खुशी होती है कि आप 1985 से तो सुन ही रहे हैं, तो और रेडियो भी अपना जो सफ़र है वो 90 वर्षों का सफ़र अभी हाल ही में जून में पूरा करने वाला है, और आप हमारे इतने
1: हाँ,
0: पुराने पुराने
1: आज
0: श्रोता
1: श्रीमान
0: हैं।
1: जी, मेरा निवेदन है, मैंने बड़ी मुश्किल से नंबर पकड़ पाया है आज, और मैंने अभी 4-5 बार लगाया भी है, नंबर तो लगा लेकिन उठा नहीं है।
0: जी जी जी

0: क्योंकि समय
1: लेकिन
0: नहीं
1: मैं
0: हुआ
1: सोचता
0: होगा।
1: था कि आज नंबर कुछ नहीं रहा है। हाँ
0: जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा। और
1: जी
0: इसी तरह कोशिश करते रहिए और कार्यक्रम में अपनी पसंद हमें बताकर हमें भी
1: हाँ
0: खुशी दीजिए। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
0: नमस्कार। कि
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए।
0: कहते हैं नजरों से चाहत का इजहार करते हैं और हम प्रेमी आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल को बेहद प्यार करते हैं और बेसब्री से इंतजार करते हैं।
1: जी, तो आपका स्वागत है। हमारा भी बेसब्री से इंतजार था कि कब आपकी हम शायरी सुने हमको।
0: और कहते हैं खुदा करे किसी से फिदा ना करे, और फिदा करे तो फिर जुदा ना करे। मैं बता दूं, ग्राम कल्पा जिला सतना से आपका जाना पहचाना चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना हिंदुस्तानी कलाकार ईडन गार्डन अशोक वाटिका कल्पा से बोल रहा हूँ।
1: जी, आपका स्वागत है महमूद जी। अब अपनी फरमाइश भी बताइए, क्योंकि आपकी ऐसी रंगीन शायरी से हम और हमारे श्रोता तो गदगद हो गए, खुश हो गए। अब हम आपको खुश करना चाहते हैं आपकी पसंद का गीत सुनाकर।
0: समझ लो कि ईद तो है ही, आज ईद उल अजहा का त्योहार है, और समझ लो एक ईद और हो गई, आपसे बात हो गई तो।
1: जी, तो मुबारक हो आपको ईद की, और इस मुबारक मौके पर आपके लिए क्या पेश किया जाए बताइए।
0: हाँ, बस गाना सुनना है मैडम जी। थोड़ी सी बात हम कहें कर लें सभी श्रोता बंधुओं को, हिंदुस्तानी जितने हमारे देशवासी हैं सभी को दिल से जो है तो नमस्कार और मुबारकबाद, और आप पूरे स्टाफ को।
1: जी जी, शुक्रिया।

0: ऐसे दो तीन लोग मिलकर के इस फिल्म को बनाए, तीसरी आंख पुरानी।
1: जी जी तो एक और बता दीजिए, अगर ये मिल गया तो हम इसे पहले सुना देंगे, और कभी खुदा न खास्ता न मिल
0: हाँ
1: पाया
0: तो फिर गाना फिर एक और सुनवा दो, गेमलर फिल्म का है, पुरानी फिल्म का गेमलर।
1: अच्छा,
0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में है और गीत के बोल है, अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, तेरी सांसों में मेरी सांस घुल जाए। और गीत अवश्य शामिल करिएगा। और
1: जी,
0: मैं
1: जी।
0: बता दूं यहाँ शीत लहर का प्रकोप जारी है, क्योंकि सतना जिले के कल्पा में
1: शीत लहर चल रही है।
0: हाँ हाँ गर्मी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा, बिल्कुल मीडियम, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे चारों तरफ से घेरे हुए हैं बिल्कुल, और नदी नाले चारों तरफ से पानी का अंबार लगा हुआ है, इसीलिए जो है हल्की फुल्की ठंडी महसूस होती है।
1: बहुत खूब, आप खुश नसीब है कि इतनी गर्मी में आपको इतना ही शीतलता मिल रही है।
0: जी मैडम जी, गीत आप शामिल करिए, काफी दिनों में लगा, 15-16 दिन हो गए, एक हफ्ते के बाद ही लगा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद बिल्कुल आपके रेडियो सेट पर। धन्यवाद
0: जी, जी नमस्कार, दिल से
1: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्ते मैडम।
1: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
0: पिंडरी जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
1: मंडला से कौन बात कर रहे हैं?
0: सुमत कुमार जैन
1: जी शेमत
0: जी, रिटायर्ड शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ, पिंडरी जिला मंडला से।
1: जी, शेमत कुमार जी, आप रिटायर्ड हैं, आपने बताया, आप शिक्षक भी हैं। कौन सा विषय पढ़ाते थे आप?
0: मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था, सोशल साइंस
1: तो
0: जी,
1: आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते थे या हिंदी माध्यम में?
0: हिंदी माध्यम में पढ़ाया था मैडम, सरकारी
1: बहुत
0: स्कूल में।
1: जी। तो आप और क्या आपके शौक हैं? अब रिटायर्ड हो गए हैं तो अब आपकी कैसी है जीवन शैली?
0: बढ़िया जिंदगी कट रही मैडम, अभी तो हम गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
1: गर्मी का आनंद ले रहे हैं, ये भी अच्छी बात है कि कोई सर्दियों का आनंद लेता है, लेकिन गर्मी भी अपने आप में जो है एक ईश्वर का ही तत्व है, तो उसे भी हमें आनंदित होकर ही स्वीकार करना चाहिए ना, शिकायत क्यों करें। जी
0: मेरे
1: बताइए।
0: को सुना दीजिए मैडम, क्रोधी फिल्म का,
1: कौन सा गीत है?
0: क्रोधी फिल्म का गाना है, वो क्या कहती है, बहुत अच्छा गाना है मैडम। अभी कोई भी सुना दीजिए क्रोधी फिल्म
1: चलिए ठीक है, इसमें एक वो मसीहा आया है गीत भी है, और एक और
0: का।
1: है रेखा जी और धर्मेंद्र जी पर फिल्म आया हुआ, तो हम
0: हाँ,
1: आपको
0: उर्वशा रवि का सुना दीजिए
1: जी,
0: आप।
1: तो हम आपको सुनवाते हैं क्रोधी फिल्म का ये गीत। शुक्रिया।
0: जी, धन्यवाद मैडम आपका।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार मैडम, मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मस्जिद इलाहाबाद।
1: विवेक व्यास जी बोल रहे हैं।
0: हाँ जी।
1: कैसे हैं आप बताइए
0: जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैडम?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं और आपसे बात हो रही है।
0: और ठीक तो क्या है, बस आपके प्रोग्रामों की ठंडक पे ये दिन गुजार रहे हैं क्योंकि हालत बड़ी खराब है गर्मी के कारण अपन सब।
1: जी जी, तो गर्मी में जो है हम अपना ध्यान किसी और तरफ केंद्रित करके और आनंद ले रहे हैं कि गीतों के साथ में गर्मी हमें कम महसूस हो रही है।
0: हाँ ये तो आपकी बात सही है
1: जी।
0: जैसे हमारा ध्यान आपके प्रोग्राम में रहता है
1: तो गर्मी का एहसास नहीं होता है।
0: जी, और आपके मुझे आपका एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है।
1: बात आपकी गीत हमारे,
0: ऐसा कुछ है ना,
1: बात आपकी गीत हमारे। जी
0: जी, ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। फोन करके गीत सुनने तो खैर है ही अपनी जगह पर। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हूँ कि आज रिकॉर्डिंग कौन से प्रोग्राम की है?
1: आज फोन करे गीत सुनने की है।
0: अच्छा, तो मैं अपनी पसंद का गाना बताऊँ, आप सुनाएंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कब से पूछ रहे हैं आपसे।
0: जी जी
1: बताएं।
0: तो आज देखिए, आज महबूब खान की पुण्यतिथि है। तो मुझे मदर इंडिया फिल्म का गाना सुनवा दें जो मन्ना डे की आवाज में है। और इस गाने में एक बड़ा अच्छा संदेश है। वो गाना है कुछ इस तरह से है कि उमरिया घटती जाए रे,
1: जी
0: उमरिया घटती जाए।

0: इसमें मैडम एक लाइन आती है, काल पड़ा है रोटी का और दुनिया बढ़ती जाए, है ना। तो ये गीत मुझे सुनना है और आपका नाम भी मुझे जानना था, क्योंकि आकाशवाणी भोपाल के सभी अनाउंसरों की आवाज इतनी अच्छी है कि हमें सभी की आवाज एक जैसी ही लगती है।
1: जी, बहुत खुशी हुई जानकर कि आप सभी को बिल्कुल समान रूप से देखते हैं और सुनते हैं। और आज
0: और
1: आपकी
0: बात, एक बात और मैं बताऊं कि मैं जॉब है मेरा यहाँ पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, और मैं रहने वाला वैसे भोपाल का ही हूँ, कोटला सुल्तानाबाद का।
1: जी, तो आज आपकी बात हो रही है आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका से।
0: अच्छा प्रियंका जी,
1: जी जी, तो विवेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना अच्छा संदेशात्मक गीत चुना है सुनने के लिए, तो आपकी ये पसंद और ये संदेश आपके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं आपके साथ, आपके पास और अन्य श्रोताओं के पास।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आप अपना बहुत ध्यान रखें गर्मी में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, आपसे निवेदन है
1: जी।
0: थैंक यू, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते
1: जी। दीदी गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से दीदी मनोज नामदेव बोल रहे।
0: अरे मनोज जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद दीदी। मैं तो बढ़िया हूँ दीदी, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप भी एकदम सही और स्वस्थ होंगी।
0: बिल्कुल, आपकी उम्मीद जो है वो बिल्कुल खरी खरी है ना? क्या कर रहे हैं मनोज जी इन दिनों, आप बताइए।
1: बिल्कुल दीदी, कहें कि अपने शॉप पर काम कर रहे हैं, और इस समय गर्मी भी भीषण पड़ रही है, तो इससे भी
0: जी,
1: बचाव कर रहे हैं कहें कि।
0: नौतपा भी चल रहा है तो और भी गर्मी विशेष है अभी तो इन दिनों में।

0: बिल्कुल सही आवाज।
1: है ना जी। तो अब बताइए आप अपनी गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते, क्योंकि आपको तो लगभग 8 से 10 घंटा शॉप पर बैठना पड़ता होगा।
0: बिल्कुल दीदी सही है। क्या है दीदी कि जब मैं सुबह शॉप शॉप पे आ जाता हूँ तो दिन में जैसे कहीं जाना है तो बिल्कुल भी दिन में धूप में निकलने का कोई चांस बिल्कुल नहीं है। अगर इमरजेंसी जैसे कहीं जाना हुआ तो पूरी बहन के कपड़े हुए और एकदम कान को बांध कर एकदम पूरा पैक होके ही घर से निकलता हूँ मैं। और वैसे तो सुबह शाम जो काम है वो ही सुबह शाम कर लेता हूँ दीदी। और सभी से मैं यही कहता हूँ कि धूप से अगर बचना है तो दिन में बिल्कुल ना निकले। और
1: जी
0: अपने जो छोटे बच्चे हैं और जो अपने बूढ़े माता पिता हैं
1: बुजुर्ग
0: खास
1: हैं।
0: तौर पे उनका अगर अपन विशेष ध्यान रखें तो कुछ सही है दीदी।
1: जी बिल्कुल, गर्मी में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम सर्दियों में रखते हैं वैसा ही ध्यान हमें गर्मियों में भी रखना चाहिए। बस तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हर मौसम का अपना मिजाज होता है, उससे हम मना नहीं कर सकते हैं।
0: बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
1: जी तो मनोज जी बताइए, अपनी पसंद तो आपने अभी तक बताई नहीं है।
0: हाँ दीदी पसंद बता दूँ दीदी, पसंद है फिल्म का नाम है दीवाना, उसमें गाना है तेरे दर से दिल आबाद रहा कुछ भूल गया कुछ याद रहा, ये है गाने की बोल।
1: अच्छा, पुरानी वाली दीवाना सुनना चाह रहे हैं।
0: हाँ दीदी पुरानी में है ये गीत।
1: अच्छा, जी,
0: हाँ
1: बिल्कुल ठीक
0: कुछ
1: ठीक
0: भूल गया कुछ याद रहा, एक फिल्म और बता दूँ अगर ये नहीं मिले तो।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये तो क्योंकि मेरे पास सुना है, मैंने आपके केंद्र में कई बार है, और अगर
1: जी
0: आपको कुछ दिक्कत दिखे तो फिर मैं एक और बता दूं
1: जी विकल्प साथ में रहे तो अच्छी
0: जी।
1: बात है। बताइए।
0: दूसरी है फिल्म का नाम है आवारगी, और उसमें गजल है अल्ताफ राजा जी की आवाज में, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला किसने।
1: जी, चमकते चांद को। तो हमारी कोशिश रहेगी मनोज जी कि हम यही सुना दे, क्योंकि ईद भी है, ईद का मौका है, तो चमकते चांद को सितारा सुना दिया जाए,
0: हाँ शानदार मजा आ जाएगा
1: है
0: दीदी
1: ना। जी,
0: बिल्कुल।
1: ठीक
0: और मैं तो
1: है।
0: यही सोचता हूँ दीदी कि अगर मेरे हिसाब आप परेशान ना हो ज्यादा तो ठीक है, जो मिल जाएगा वो सर बात
1: अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
0: है।
1: आपकी हर पसंद हमारे पास है ना।
0: ये तो
1: लेकिन
0: बिल्कुल सही है।
1: मौके मौके को
0: अगर
1: देखते हुए हम ये चाहते हैं कि चमकते चांद को
0: जी
1: सितारा हम हमारे जो ईद मनाने वाले हमारे श्रोता
0: जी
1: हैं, तो उन्हें भी बड़ी खुशी होगी ये गीत
0: बहुत अच्छी
1: सुनकर,
0: बात
1: है
0: बहुत अच्छी बात।
1: ना जी।
0: ठीक
1: शुक्रिया मनोज जी, और ऐसे ही फोन करते रहिए, हमसे बात
0: जी
1: करते रहिए। नमस्कार
0: धन्यवाद दीदी आपको।
1: जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार। मैं
0: नमस्कार। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए।
1: मालेगांव से बात कर रहा हूँ, तुलसीराम
0: जी, मालेगांव से, महाराष्ट्र।
1: व्यास। तुलसीराम व्यास, तुलसीराम।
0: अच्छा जी। तो मालेगांव में कैसा सुनाई देता है हमारा प्रसारण आपको?
1: मालेगांव में, मैं महाराष्ट्र में मालेगांव में, यहाँ बहुत अच्छा सुनाई देता है।
0: जी
1: आकाशवाणी जिस तरह आकाश में अच्छी तरह विराजमान है, उसी तरह सबके दिलों में विराजमान है आकाशवाणी।
0: शुक्रिया
1: आकाशवाणी सबके दिलों में विराजमान है,
0: जी।
1: कहीं
0: इसीलिए
1: भी खड़े रहो आकाशवाणी के आप गीत आराम से सुन सकते हो। और हमारा एक भाई है, 1-2 साल का, वो नीमच में रहता है।
0: अच्छा,
1: वो आकाशवाणी से इतना लगाव है उसका
0: जी,
1: कि वो मोबाइल रखता नहीं उसका, लेकिन उन्होंने मेरे से कहा, एक पुराना गाना दिया उन्होंने मुझे
0: जी,
1: कि बोले आपका फोन लग जाए तो। उनका नाम है आरसी जैन
0: जी। जी
1: वो पोस्ट मार्टर है, रिटायर,
0: जी
1: 82 साल के।
0: जी तो कौन सा गीत
1: आकाश,
0: उन्होंने आपको बताया है सुनवा उन्होंने कौन सा गीत बताया आपको सुनवाने के
1: उन्होंने
0: लिए?
1: एक बहुत पुराना गीत बताया है, ये आकाशवाणी को बहुत दिलों से चाहते हैं। उनका गीत है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम ना देना,
0: खुशी
1: वाले।
0: देने वाले,
1: ये आकाशवाणी से कहा है उन्होंने।
0: अच्छा,
1: कि मुझे प्यार, उनको प्यार की जिंदगी आकाशवाणी ने दी है। और वो कहते हैं कि मुझे कभी गम न देना, मुझे खुशी देना आकाशवाणी।
0: बिल्कुल, हमारा भरपूर ये प्रयास रहेगा कि हम कभी अपने श्रोताओं को निराश न करें, हम उन्हें कोई दुख न पहुंचाए, कोई गम न पहुंचाए। कुल हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और इसको पूरी भी करते हैं, है ना। कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कुछ ऐसी बात कही है कि जो आपकी इस बात से थोड़ा तालमेल रखती है। जब आप कार्यक्रम सुनेंगे तो आप जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, प्रियंका बात कर रही हूँ मैं।
1: अच्छा प्रियंका जी,
0: जी जी
1: तो ये गीत उनका, उनको सुना देना, तो उनको बहुत खुशी होगी।
0: जी, शुक्रिया आपका।

0: श्रोताओं, कभी कभी सबसे मुश्किल सफर कहीं पहुंचने का नहीं होता, बल्कि उस जगह को छोड़ने का होता है जहां हम अभी हैं। पर शायद यही जिंदगी का इशारा होता है, हमें अनजान रास्तों पर भरोसा करना सिखाने का, उस चलती नाव में कदम रखने का जब किनारा अब भी अपना सा लगता है। क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम सुकून से ज्यादा हिम्मत को चुनते हैं और यकीन करते हैं कि आगे जो है वो हमारे लिए और भी खूबसूरत होगा। तो आज का ये सफर कार्यक्रम फोन करे गीत सुने का आपने तय किया था आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका के संग। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: फोन करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। देश भर में बारिश औसतन दीर्घकालिक पूर्वानुमान का 90% रहने की संभावना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। वर्ष 2026 से 2030 के बीच वैश्विक औसत तापमान 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। गेहूं उपार्जन के मामले में प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। देश में जल संरक्षण के कार्य में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 जिला प्रशिक्षण वर्ग में योगाभ्यास किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 में हिस्सा लिया। और 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म हरजाई से, लता मंगेशकर की आवाज, निदा फाजली के बोल, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोरी वर्मा, दीपक वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।

ये गीत है फिल्म गुलामी से, लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, पसंद आप सब श्रोताओं की। रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल ने बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ये गीत सुनना चाहा है।

अब आपको सुनवा रहे हैं रजनीगंधा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, योगेश के बोल हैं, संगीत सलिल चौधरी का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन इस गीत को सुनना चाहते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी है। तो आइए सुनते हैं रजनीगंधा फिल्म का ये गीत।

तेरे मेरे सपने। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। नीरज के लिखे गीत को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने। पसंद आप सब श्रोताओं की है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया ने इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। इसी गीत को पसंद किया है अनिल, नेहा फड़ से सीमा, सबीहा, फलक, पूजा, सुषमा, सविता, मनु और इनके पूरे परिवार ने, गुमाश्ता नगर इंदौर से। तो आइए सुनते हैं तेरे मेरे सपने फिल्म का ये गीत।

आशा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ है लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद आप सब श्रोताओं की। हुलास राम कटरे और नानेश्वरी कटरे ने ये गीत सुनना चाहा है बालाघाट से। इसी गीत को पसंद किया है धमनी किरवई के श्रोताओं ने। ये हैं समेलाल धीवर, युवांश, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर। तो आइए सुनते हैं आशा फिल्म का ये नगमा।

0: आशा फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: दादा कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक।

0: चंगुला क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: ओह थैंक्स पप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
2: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
3: इस समय आप है हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
5: तो सुनते रहिए मालवा किसान
7: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
8: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
9: क्या?
8: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
9: वो कैसे?
8: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
9: और सुनेंगे कैसे?
8: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
0: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या? तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
4: रोजाना रात 10 बजे सुनिए छाया की, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: मालवा की शान
7: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की तीसरी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सायरे के वालिद पैगाम भिजवाते हैं कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। ये खबर मिलते ही मुश्ताक सायरे को उसकी अम्मी के पास छोड़ आता है, लेकिन खुद वहां नहीं रुकता। अब आगे।

0: सारे
1: आ गए, बड़े दिनों बाद याद आई मेरी।
0: ऐसी बात नहीं है सारे, मैं तो पहले ही आना चाहता था पर काम ही ऐसा पड़ गया कि फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी।
1: अच्छा जी, तो अब आपको फुर्सत मिल गई।
0: अरे तुम तो मजाक करने लगी।
1: नहीं जी, मैं क्यों मजाक करूंगी।
0: सारे जिस काम से आया था वो तो मैंने तुमसे कहा ही नहीं।
1: क्या?
0: हाँ मैं अभी तुम्हें लेने आया हूँ।
1: अभी?
0: हाँ क्यों, तुम जाना नहीं चाहती?
1: ओ नहीं, ऐसा नहीं है, पर अभी कुछ दिन और रह लेती तो।
0: सारे अम्मी कह रही थी कि घर बड़ा उदास सा लगता है।
1: अच्छा और... तो तुम अम्मी के कहने पर आए हो, अपने मन से नहीं।
0: सारे काम का बोझ पड़ गया है और काम छोड़कर आना क्या अच्छा होता।
1: तो क्या अब काम नहीं है?
0: सारे तुम मुझे नाराज लगती हो। हाँ तुम्हारी नाराजगी भी जायज है, इन दिनों में मैं तुमसे मिलने जो नहीं आ सका।
1: तुम्हें मेरा ख्याल भी है।
0: सारे तुम मेरा प्यार हो।
1: अगर ऐसा होता तो तुम इतने दिनों में कम से कम मिलने तो आ सकते थे ना।
0: अब अपना काम तो है नहीं सारे कि जब चाहे बंद कर दो, मुझे ग्राहकों को देखना होता है और
1: मुझे काम काम काम, क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए?
0: तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सारे, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर मैं काम कर रहा हूँ, दो पैसे जोड़ रहा हूँ तो किसके लिए, तुम्हारे लिए ही ना।
1: ऐसा भी पैसा किस काम का जो हमारे बीच दूरियां बढ़ा दे, आपको मिलने का मौका भी ना दे।
0: अब ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम मेरे काम को ही धत्ता बताई जा रही हो।
1: ऐसा नहीं है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम दो पैसे जोड़ो, पर ये नहीं चाहती कि उन पैसों की होड़ में मुझे ही भूल जाओ।
0: सारे तुम्हें भूलने की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन क्या करूं, काम ही ऐसा है कि छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और तुम्हारे घर भी आना हो तो एक दिन की छुट्टी हो जाती है, आज बड़ी दिक्कत से आ पाया हूँ यहाँ।
1: अगर इतनी ही दिक्कत थी तो ना आते।
0: ओह तुम अभी भी नाराज हो।
1: नहीं मैं बस।
0: देखो सारे अभी काम का वक्त है, काम बढ़ गया है, ऐसे में काम छोड़कर आना ठीक नहीं लगता।
1: अब चलो छोड़ो इन बातों को, अब जल्दी से बताओ क्या खाओगे।
0: थोड़ी देर में चलेंगे सारे, सो खाने पीने का चक्कर छोड़कर तुम तैयार ही हो जाओ।
1: कौन जा रहा है अभी? अभी कोई नहीं जा रहा, मैं चाय लाती हूँ। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा रही, अभी अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं मुझे आए हुए, और अभी चली चलूं, इतने दिन तो अम्मी की तीमारदारी में गुजर गए, मायके का मजा तो अभी लिया ही नहीं। देखो कुछ दिन और रह लूं, फिर चलूंगी तुम्हारे साथ।
0: देखो सारे मायके में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं होता, और अम्मी कह रही थी कि तुम्हारे बिना उनका मन नहीं लगता, घर भी उदास उदास सा उजड़ा उजड़ा सा लगता है।
1: हाँ घर तो उदास लगेगा ही, आखिर घर लोगों से ही तो बनता है। वैसे मुझे भी फजी अम्मी की याद आती है, पर क्या करूं, यहाँ भी तो दो चार दिन रुकने का मन कर रहा है ना।
0: सारे तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, उसे तुम्हें निभाना चाहिए, और मेरी मानो तो अभी मेरे साथ चलो।
1: अम्मी से भी तो पूछ लूं वो क्या कहती हैं। लो अम्मी भी आ गई, आप लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ।
0: सलाम अम्मी।
2: सलाम बेटे, खुश रहो। करीम भाई कैसे हैं?
0: सब ठीक है अम्मी, आपकी तबीयत को पूछ रहे थे।
2: अब ठीक हूँ, सारे ना आई होती तो शायद ही बच पाती।
0: ऐसा क्यों सोचती हैं आप, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है।
2: एक बीमार को दवा से ज्यादा तीमारदारी की जरूरत होती है बेटा, आज सारे एक सहारा है।
0: आखिर बेटी है आपकी, अगर औलाद दुख में साथ ना देगी तो कब देगी।
2: अब तो तुम ही लोगों का सहारा है।
0: आप ऐसा क्यों सोचती हैं अम्मी?
2: किस्मत की मारी और सोच भी क्या सकती है।
0: आप ऐसा ना कहें।
2: क्यों ना कहूं, मेरी किस्मत ठीक होती तो सारे के अब्बा का काम ठीक ना चलता, किसी की आस तो ना देखनी पड़ती।
0: अम्मी, सुख दुख तो सारा जीवन चलता रहता है, पर इससे कोई बच भी तो नहीं सकता। पर दुख ज्यादा दिन नहीं रहते, खुशियों का सवेरा तो आता ही है।
2: हमारी छोड़ बेटे, अपनी बता, काम तो बेहतर चल रहा है?
0: जी अम्मी, बेहतर है।
2: आमदनी तो अच्छी होती होगी?
0: आमदनी ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, चार जनों का परिवार अच्छे से चल जाता है।
2: इतने से गुजारा तो चल जाता है, पर भविष्य के लिए दो पैसे भी तो जोड़ने चाहिए।
0: अम्मी, मेहनत से जो मिल जाता है मैं उसी में संतुष्ट हूँ।
2: अल्लाह ताला इसी में बरकत दे।
0: ये तो आप सब लोगों की दुआएं हैं।
1: अम्मी चाय।
2: सारे बेटे, मुश्ताक के लिए कुछ नमकीन भी तो ला, कितने दिनों बाद आया है ये।
1: जी अभी लाई अम्मी।
0: अरे रहने दो सारे, चाय काफी है।
2: काफी क्या है, हम गरीब लोग ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आज आए हो तो कुछ खातिरदारी तो करनी ही होगी ना।
0: आप परेशान ना हो अम्मी, मैं कोई दूर का मेहमान थोड़ी ना हूँ।
1: अम्मी ये मुझे ले जाने के लिए कह रहे थे।
2: अरे ऐसे कैसे ले जाओगे बेटा, आज आए हो, दो चार दिन तो रुको, फिर ले जाना।
0: अब नहीं नहीं अम्मी, मेरा तो रुकना मुमकिन ना होगा।
1: आज की रात तो रुक लो, कल सुबह चले जाना।
0: नहीं सारे, मैं नहीं रुक पाऊंगा, अगर तुम साथ चलो तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा।
2: अरे एक दिन रुकने से क्या फर्क पड़ता है बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है।
0: वो तो है अम्मी, पर काम बहुत है और काम छोड़कर रुकना मुनासिब भी नहीं।
2: एक रात रुक जाते।
0: नहीं अम्मी, यह मुमकिन नहीं।
2: बेटा अगर तुम एक दिन भी ना रुके तो आस पास के लोग हंसेंगे हम पर कि दामाद एक दिन भी नहीं रुकता।
0: अब ऐसा क्यों सोचती हैं आप, क्या दामाद घर बैठा रहे ये लोगों को अच्छा लगेगा? और यूं तो घूमता नहीं कि लोग बदनामी करें।
2: समाज और बिरादरी को तुम नहीं जानते कि वो क्या सोचते और क्या

0: बोलते हैं।
1: अम्मी, मैं इन दकिया नुसी बातों पर एतवार नहीं करता। जो हमारे लिए बेहतर हो हमें वही करना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर या दिखावे के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान करना, ये भला कहाँ की समझदारी होगी।
0: तुम्हारा भी कहना सही है बेटा, पर हमें तो रहना इसी समाज में है और जवाब भी इसी समाज को देना होगा।
1: मैं सारे को लेने आया था अम्मी, अब मेरे पास इतना समय नहीं है। इस बात को तो आप समझेंगी ना।
0: सारे तुम्हारी पत्नी है बेटा, मैं उसे क्यों कर रोकूंगी। तुम जब चाहो ले जाओ, पर सारे बेटी है इस घर की, कुछ दिन और रह लेती तो अच्छा रहता। मेरा मन करता है कि बेटी मेरे पास रहे।
1: तो सारे अभी मेरे साथ नहीं जा रही है।
0: क्या कहूँ, थोड़े दिन और रुक जाती तो।
1: ठीक है अम्मी, जैसा आप बेहतर समझे। सारे को जब आना हो खबर भेज दीजिएगा।
0: तो तुम आज नहीं रुकोगे?
1: नहीं अम्मी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा रुकना मुमकिन नहीं।
2: मुश्ताक।
1: सलाम अब्बू।
3: सलाम, खुश रहो बेटे। कब आए?
1: अभी।
3: घर में सब कुशल तो है?
1: हाँ, घर में सब ठीक है। अम्मी बार बार कह रही थी कि घर उदास सा लगता है, सो सारे को लेने आ गया था।
3: अच्छा अच्छा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है बेटा?
1: जी ठीक है अब्बू, अभी तो बाजार ठीक है, पर बाजार का कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी तेज होता है और कभी मंदा।
3: हाथों का काम है, अल्लाह इसी में बरकत दे। ईमानदारी से काम करो बेटा।
1: हाँ अब्बू, पैसे कम हो पर सब्र होना चाहिए, और आप लोगों की दुआएं साथ हैं तो सब ठीक ही होगा।
3: ठीक कहते हो बेटा, कम पैसा हो पर संतोष हो, रोजगार रहे, यही बहुत है आज के समय में।
1: अब्बू, बाजार में काम की कमी थोड़ी ही है।
3: हाँ बेटा, अब इस उम्र में जो भी कर रहा हूं वही ठीक है। कारीगर के हाथ पैर जितने चले उतने ही अच्छे हैं।
1: हाँ अब्बू, अब तो बाजार बदल रहा है, बाजार के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को क्यों नहीं बदलते अब्बू?
3: बेटा, मुझे अपने आप को बदलकर कौन सा विदेश में जाकर बस जाना है। अब रही सही जिंदगी भी यहीं पर कट जाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जन्नत यहीं से नसीब हो।
1: अब्बू जान, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? अब तो कश्मीर के हालात भी कितने अच्छे हो गए हैं कि किसी को रोजगार के लिए इस जन्नत को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है।
3: जो लोग चले गए हैं वो भी एक ना एक दिन अपने घरों को वापस लौट ही आएंगे। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं बेटा, जब मेरे बचपन का साथी शर्मा भी अपने पूरे परिवार के साथ लौट कर आ जाए।
1: अब्बू जान, वो जरूर लौट कर आएंगे, क्योंकि अब तो हुकूमत हमारी इस वादी में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे साधन जुटा रही है, और बाहर की कंपनियां भी नए उद्योग स्थापित कर रही है।
3: हाँ बेटा, नौजवानों में जो आक्रोश था वही भटकाव की जड़ था। अब जबकि लोगों को धीरे धीरे सुकून मिल रहा है तो भटकाव भी खत्म हो गया है। अब लोग अपनी वादी से जुड़ने लगे हैं।
1: हाँ अब्बू, आप सही कहते हैं। हमारी उम्र के लोग बाजार की चकाचौंध में डूब से गए थे, हमारी संस्कृति खत्म सी हो रही थी। अब्बू, उनके अंदर

0: इस जमीन से लगाव छूटता सा जा रहा था, और यही एक बड़ी वजह थी कि हम अपने यहाँ के बाजारों को नहीं बचा पा रहे थे।
1: सही कहते हो मुश्ताक, इन हाथों में रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, अब कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी।
0: हाँ,
1: वैसे हमारी हुकूमत ने इसकी पहल कर दी है।
0: हाँ अब्बू, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं। जिंदगी जैसी चलती है वैसी चलती रहे, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो बस दुआ कर सकते हैं अपनों की सलामती के लिए।
1: सही कहते हो बेटा, मैंने तो चौकीदारी करके ही जिंदगी गुजार दी, अब तुम लोगों के लिए ही दुआ करूंगा।
0: अच्छा अब्बू, तो मैं अब चलूंगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।
1: बेटा, सारे भी जा रही है?
0: नहीं अब्बू, वो कुछ दिन और रुकना चाहती है।
1: तुम नहीं रुकोगे?
0: नहीं अब्बू, मुझे जाना होगा।
1: अच्छा बेटा, करीम और फजी को मेरा सलाम कहना।
0: जी अब्बू, कह दूंगा। अच्छा अब्बू, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज बेटा।
2: सारे,

0: दिल की बात मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा?
1: अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
0: तू फिर मुकर रही है, मुश्ताक आज नहीं रुका। तू यही सोच

0: में कितना नुकसान हो जाता उसका।
1: अम्मी, अब उनका काम ही ऐसा है तो क्या करें।
0: मन को बहलाने की कोई जरूरत नहीं है सारे। मुश्ताक चाहता तो रुक सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों
1: अम्मी, वो
0: बस कर, सच तो ये है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता।
1: नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है, वो मुझे प्यार करते हैं अम्मी।
0: तू अब भी यही कह रही है। अगर मुश्ताक को तुझसे प्रेम है तो क्या वो एक दिन रुक नहीं सकता। और सिर्फ मुश्ताक ही तो काम नहीं करता, अब खजरी को ही लो।
1: कौन खजरी?
0: अरे वो रजिया की बेटी, उसकी तो चांदी हो गई।
1: क्यों?
0: खजरी की शादी एक दुकानदार से करवा दी है और वो खजरी के इशारों पर घूमता है, अच्छा पैसा कमाता है और रजिया को भी पैसे देता है। खजरी के साथ साथ रजिया भी खुश है, उसके अच्छे दिन आ गए। और एक मैं हूँ जो।
1: क्यों अपने को कोसती हो अम्मी?
0: कोसू ना तो क्या करूं?
1: अम्मी, सबका नसीब एक जैसा तो नहीं होता।
0: इसमें नसीब का क्या, खजरी अपने पति से प्रेम करती है और उसको अपने इशारों पर रखती है। वो दिन कहे तो दिन और रात कहे तो रात। और एक तेरा पति है जो बार बार कहने पर भी एक रात के लिए नहीं रुका। और तू कहती है कि वो तुझसे प्रेम करता है।
1: अम्मी, एक रात ना रुकने से प्यार कम तो नहीं होता। और मैं खजरी की तरह अपने पति को आगे पीछे घुमाऊं, ये मुझे पसंद नहीं।
0: मेरा नसीब ही खोटा है जो मेरी बेटी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती।
1: तुम ऐसा क्यों सोचती हो अम्मी?
0: बेटी है तू मेरी, और तेरी खुशी के लिए ही कहती हूँ। तुम्हें मुश्ताक को अपने वश में करना चाहिए, तू जो कहे उसे माने।
1: मगर अम्मी, ये मुमकिन नहीं है।
0: हाँ, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक करीम और फजी उस घर में हैं, और उनके रहते मुश्ताक तुम्हारा पति नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें मुश्ताक को उस घर से अलग रखना होगा।
1: मुश्ताक नहीं मानेगा अम्मी।
0: सारे अगर ऐसा नहीं हुआ तो करीम व फजी तुझको नौकरानी की तरह काम करवाते रहेंगे और खुद मुश्ताक के पैसों पर।

0: बुझने में दिक्कत हो तो यहाँ आ जाए।
1: ठीक है अम्मी, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगी, ताकि मेरा मुश्ताक हमेशा मेरे पास रहे।
0: ठीक है, अब खाना खा ले और सो जा, रात भी बहुत हो गई है।
1: हाँ अम्मी।

0: प्राता, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो।
1: क्या अच्छा नहीं कर रही?
0: अपनी ही बेटी के घर में क्यों आग लगा रही हो?
1: या अल्लाह, मैं उसके घर में आग नहीं लगा रही, उसका घर बना रही हूँ।
0: वादा घर जोड़ने से बनता है, तोड़ने से नहीं। और तुम जो कर रही हो या करवाना चाहती हो, उससे सारे का घर नहीं बनेगा, बल्कि उसकी जिंदगी तबाह करने का रास्ता दे रही हो।
1: तुम चुप रहा करो। अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सके और जो कर सकता है उसके रास्ते में बाधक बनते हो।
0: क्या कह रही हो फाता? सारे तेरी बेटी है, उसको सही सलाह दिया करो, ताकि वो घर को संभाले, ना कि घर को बर्बाद करे। क्यों तुम दोनों की जिंदगी तबाह करने पर तुली हो?
1: या अल्लाह, तुम अपने काम से काम रखो ना, मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं। और हाँ, मुश्ताक अगर अलग घर लेने को मान गया तो दोनों यहीं रहेंगे।
0: वादा बंद करो ये सब। तुम चाहती क्या हो?
1: मैं चाहती हूँ कि मुश्ताक इस घर में घर जमाई बनकर रहे।
0: वादा याद रखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। एक आबाद घर को उजाड़ रही हो, वो भी अपनी बेटी के घर को। वो मुश्ताक के साथ खुश है और तुम उन्हें एक घर से अलग करके दुख क्यों देना चाहती हो?
1: ओफो, तुम अपनी बुद्धि को अपने पास रखा करो। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। और सुन लो, तुमसे कुछ पूछूं तभी कुछ कहा करो।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकिया की तीसरी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीतकार मोहनलाल, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जीतेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सुप्रिया और हरीश। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां की तीसरी कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए कहा कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। सीबीआई ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके पहले कल भोपाल में सीबीआई ने करीब 7 घंटे तक उनके घर पर पूछताछ और तलाशी ली। गौरतलब है कि गिरिबाला ट्विशा के सास और सेवानिवृत्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, सतना, भिंड सहित 10 जिलों में तीव्र लू के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। देश भर में वर्षा और औसतन दीर्घकालिक पूर्वानुमान का 90% रहने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तीसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ब्रिस्टल में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में आज न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल मुकाबले में रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला सभा।

नमस्कार सखियों, नई उमंग नई सोच के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी सखी नीलम चौरे, आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर। सखियों कैसी हैं आप? आप सभी ठीक ही होंगी क्योंकि आपका अपना मोबाइल जो आपके साथ है। हो भी क्यों ना सखियों, आज के समय में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। लेकिन ज़रा संभल कर प्यारी सखियों, जहां काम आसान होता है ना, वहीं थोड़ी सी चूक काम तमाम भी कर देती है। इसलिए सखियों, जाने अनजाने किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना, OTP साझा करना या अपनी निजी जानकारी किसी के साथ बांटना, ये छोटी सी गलतियां डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार बना सकती हैं। याद रखिए सखियों, कोई भी बैंक या आधिकारिक संस्था कभी भी फ़ोन या मैसेज पर आपसे आपका OTP या पासवर्ड नहीं मांगती। अगर कोई ऐसा करता है तो फ्रॉड है। सखियों हमेशा मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें अक्षर अंक चिन्ह शामिल हों, समय समय पर बदलते रहें और अपनी निजी जानकारी, घर का पता, फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स साझा ना करें। कई बार सखियों जिसमें लॉटरी या इनाम मिलने की बात कही जाती है, ऐसे मैसेजों से सावधान रहें। डिजिटल दुनिया में बच्चों को समझाएं अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन बातें ना करें। यदि आपको लगे कि आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है तो घबराएं नहीं, तुरंत इसकी शिकायत करें हेल्पलाइन ऑनलाइन पोर्टल पर और समाधान पाएं। सखियों डिजिटल तकनीक हमारे जीवन को आसान तो बनाती है, लेकिन उसका सही और सुरक्षित उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। स्मार्ट बनिए लेकिन सुरक्षित भी रहिए।

0: सखियों अब बात करते हैं योजना की, वो प्रधानमंत्री योजना की। सखियों आसमान छूना अब सिर्फ सपना नहीं हकीकत बन रहा है, जिसने आम नागरिकों के सपनों को पंख देने का काम किया है। जी हाँ सखियों, हम बात कर रहे हैं उड़ान योजना की। उड़ान का पूरा नाम है सखियों उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का उद्देश्य है सखियों कि छोटे छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाना, ताकि लंबी दूरी की यात्रा को कम किया जा सके। इससे समय की भी बचत होती है, बल्कि व्यापार, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं सखियों। उड़ान योजना न केवल यात्रा को आसान बनाया, बल्कि देश के विकास को भी गति दी है। छोटे शहरों का जुड़ाव बड़े शहरों से होने लगा, आर्थिक सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है। पहले छोटे शहरों में हवाई अड्डे होते हुए भी उनका उपयोग नहीं हो पाता था, वहीं इस योजना ने उन हवाई अड्डों को फिर से सक्रिय किया। नई उड़ानें शुरू हो रही हैं और किराए को भी किफ़ायती बनाया गया, ताकि आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके। सखियों, यह योजना हमें सिखाती है कि जब अवसर मिलते हैं ना, तो सपनों को पंख देना आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं नई उड़ान नया भारत। और सखियों, जैसा कि गांव की मिट्टी की खुशबू हो या शहर की रफ्तार, हर रंग को अपनी आवाज में समेटा है, आवाज में अपनापन, यही है आकाशवाणी की पहचान। सखियों, 90 वर्षों का हम सफर आकाशवाणी इसी विषय पर लेकर आए हैं वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर स्वाति तिवारी। तो सखियों, आइए सुनते हैं वार्ता।
1: कहीं पढ़ा था मैंने, एक शाम कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनॉल्ड फ्रेंसडेन ने जब अपना वायलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने सेट पर सुना, वो दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत। एक सदी बीत गई इस किस्से की, शायद ये दुनिया के पहले प्रसारण की बात है। मैं इस कल्पना भर से रोमांचित हूँ, वो कितना अलग सा अनुभव रहा होगा एक दिन यह रेडियो हमारे घर हमारे देश में भी पहुंचा और हम सफर बन गया आकाशवाणी। देखते देखते 90 साल हो गए आकाशवाणी को। अपने शुरुआती दौर में यह आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो कहलाता था, जो भारत की धड़कन रहा। 8 जून को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। एक आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ इसने सूचना और मनोरंजन को जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प ले लिया। आकाशवाणी केवल मनोरंजन नहीं करती, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रसारण स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ा है। यह उन दिनों की बात है, 1947। जी हाँ, 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब आकाशवाणी ही वह माध्यम था जिसने विभाजन की त्रासदी के बीच लोगों को जोड़ा। आकाशवाणी यानी एक संस्कृत का शब्द जिसका अर्थ है आकाशीय आवाज। कहते तो यह भी हैं कि यह नाम रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता से प्रेरित रहा है, और यह वह समय भी था जब प्रसिद्ध साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत आकाशवाणी में बहुत सक्रिय थे। हम आकाशवाणी के सिग्नेचर ट्यून को नहीं भूल सकते, एक अलग पहचान बनाई थी इसे।

वॉल्टर कॉफमैन द्वारा तैयार की गई यह सिग्नेचर ट्यून आज भी भारतीयों के मन में एक खास सुकून पैदा कर देती है, एक दिली राहत, और लगता है हम फिर पीछे उस दुनिया में पहुंच गए जब हम रेडियो के साथ बैठते थे। विविधता और मनोरंजन की दृष्टि से यदि हम आकाशवाणी की बात करते हैं तो विविध भारती भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के रेडियो चैनल आकाशवाणी की सबसे प्रमुख प्रसारण सेवा। भारत में रेडियो के श्रोताओं के बीच

प्रारंभ में इसका प्रसारण सिर्फ दो केंद्रों पर था, बम्बई और मद्रास। बाद में धीरे धीरे लोकप्रियता के चलते आकाशवाणी के और भी केंद्रों ने इसका प्रसारण शुरू किया और देखते देखते विविध भारती जैसे हम सब के अंदर बस गया, जिसने फिल्मी संगीत और रेडियो नाटकों के जरिए आकाशवाणी को हर घर हर मन के अंदर लोकप्रिय बना दिया और अभी हमारे घरों का सदस्य बना। अखिल भारतीय मनोरंजन सेवा विविध भारती की पहली उद्घोषिका का नाम भी शायद मुझे याद है, शायद वो शीला कुमार ही थी। और फिर अमीन सयानी जी की बात ना करूं तो कैसे काम चलेगा। अमीन सयानी और बिना का गीतमाला जैसे इतिहास ही रच गए। भाइयों और बहनों, वो भारी भरकम आवाज जैसे कोई आपके दरवाजे पर खड़ा होकर बुला रहा हो, अमीन सयानी जी को घर घर में लोकप्रिय कर गया और एक इतिहास रच गया। इस कार्यक्रम ने रेडियो की लोकप्रियता को शिखर पर पहुंचा दिया और मेरा यह सौभाग्य रहा जब मैं लाडली मीडिया अवार्ड लेने मुंबई गई, 2015 की बात है, तो उस आयोजन में मेरी मुलाकात अमीन सयानी जी से हुई और मेरे लिए यह सबसे सुखद पल रहा। फिर हवा महल के बिना तो बात हो ही नहीं सकती। हवा महल जैसे नाटक विविध भारती के शुरुआती कार्यक्रमों में से एक है। इसके प्रत्येक प्रसारण में किसी लेखक की कहानी का नाटकीय रूपांतरण करके उसे प्रसारित किया जाता रहा है। यह नाटिकाओं और झलकियों का ऐसा कार्यक्रम था जो 50 सालों के बाद भी उतना ही लोकप्रिय रहा और उतना ही लोकप्रिय है। हजारों नाटक इस कार्यक्रम में प्रसारित हुए। रात 9 बजे उन दिनों की बात है, सिरहाने रेडियो रखकर शांत भाव से नाटक सुनते थे। नाटक तो देखने वाली विधा है, फिर सुनते थे। हाँ, हवा महल को लोग सुनते थे। क्यों? क्योंकि इसकी खास वजह थी, संकेत ध्वनि लोगों को अब भी नॉस्टैल्जिक बना देती है, जो हवा महल का खास आधार थी। इसमें सारे दृश्य संगीत और ध्वनि के माध्यम से हमारे सामने चलचित्र की तरह चलने लगते। फिर कृषि जगत की बात न करूं, कृषि प्रधान देश में आकाशवाणी की भूमिका अधूरी रह जाएगी। किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी जैसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों ने ग्रामीण भारत की जीवन रेखा ही बना दिया आकाशवाणी को। संस्कृति और साहित्य के रक्षण में भी आकाशवाणी ने 90 सालों के सफर में भारत के शास्त्रीय संगीत परंपरा और क्षेत्रीय लोक कलाओं को जीवित रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। साहित्य के योगदान की बात करूं तो देश के तमाम महान साहित्यकारों, लेखकों, कवियों और विचारकों को अगर किसी ने मंच प्रदान किया तो वो आकाशवाणी है। आज भी क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से स्थानीय साहित्यकारों और स्थानीय बोलियों को संरक्षित कर रहा है। ये लंबा सफर है आकाशवाणी का। यहाँ कुछ भी डिलीट नहीं होता था, बकायदा रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाती है और लाइब्रेरी में जमा हो जाती है। बता नहीं सकती जाने कितनी आवाजें यहाँ अब भी सुरक्षित हैं। समाचार की विश्वसनीयता की तो बात ही कुछ और है। सोशल मीडिया के दौर में भी यह आकाशवाणी है के साथ शुरू होने वाले समाचारों को आज भी सूचना का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। कोई ऐसे ही 90 साल का सफर पूरा नहीं कर लेता बिना विश्वास अर्जित किए हुए, और यह विश्वास अर्जित करने के लिए लोगों के दिलों में उतरना पड़ता है, जो इंदौर आकाशवाणी ने भी किया। जी हाँ, आकाशवाणी इंदौर केंद्र इस सफर में अगर इसका जिक्र ना करूं तो बात अधूरी रहेगी। यह केंद्र जहाँ 30-35 सालों में बहुत ज्यादा ना सही पर थोड़ा बहुत मेरा भी रचनात्मक योगदान रहा, आकाशवाणी के उस केंद्र का जिक्र करना मेरी स्मृतियों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, आकाशवाणी इंदौर का केंद्र मालवा हाउस। यह केंद्र मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य का एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ। इसकी स्थापना 22 मई 1955 को हुई थी और तब से यह मालवा क्षेत्र की आवाज बना हुआ है और सदियों तक बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य का एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है आकाशवाणी इंदौर। इसकी स्थापना 22 मई 1955 को तो हुई थी पर लगता है जैसे कल की ही तो बात है। मालवी संस्कृति लोक कलाओं के संरक्षण के लिए जो काम कर रहा है आकाशवाणी इंदौर की क्षेत्रीय बोली मालवी को इसने घर घर तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के कार्यक्रम

0: में मालवी लोकगीत, माच जैसे लोक नाट्य और स्थानीय मुहावरों का जो पुट मिलता है, उसने इस केंद्र को ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से लोकप्रिय बनाया। आकाशवाणी ने इंदौर में स्थानीय साहित्यकारों को भी बहुत बड़ा मंच दिया, विशेष रूप से महिला रचनाकारों को। यहाँ से प्रसारित होने वाले साहित्यिक कार्यक्रमों ने हिंदी, मालवी और इसके साथ स्थानीय साहित्य को समृद्ध करने में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं कह सकती हूँ कि इन सब की नींव में कहीं आकाशवाणी भी एक है। फिर हम अगर FM की बात ना करें तो बात फिर अधूरी रह जाएगी। रेडियो पंचम और FM का दौर समय के साथ बदलते हुए समय का दौर था। इंदौर केंद्र ने खुद को अपडेट किया। आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ और FM जैसे चैनलों के माध्यम से इसने युवाओं के बीच भी तो अपनी जगह बना ली। इंदौर के लोग आज भी सुबह की शुरुआत यहाँ के भक्ति संगीत और प्रादेशिक समाचारों के साथ करना पसंद करते हैं। फिर कृषि और सामाजिक सरोकारों में इंदौर केंद्र ने किसान वाणी जैसे कार्यक्रमों में मालवा के किसानों को उन्नत खेती की नई नई तकनीकियां बताई। ऐतिहासिक भूमिका निभाते हुए सोयाबीन की खेती में इंदौर के रेडियो केंद्र ने बहुत बड़ा योगदान दिया। रेडियो केवल एक उपकरण नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा था। सुबह की वंदना हो या दोपहर में महिलाओं के कार्यक्रम, सखी सहेली हो या ग्राम लक्ष्मी, शाम को बजने वाले फिल्मी गीतों को कई पीढ़ियों ने सुना और इसने कई पीढ़ियों को जोड़ा। यहाँ के उद्घोषकों की स्पष्ट आवाज मालवी लहजे ने केंद्र को विशेष पहचान दी। कई सारे यहाँ पर रूपक तैयार हुए। नर्मदा की पुकार जैसा रूपक कभी नहीं भुला जा सकता। कई सारे उद्घोषक जिनमें प्रभु जोशी से लेकर रंजीत सतीश, बहुत सारे नाम हैं जिन्हें मैं यहाँ याद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस पर अपना अमूल्य योगदान दिया। एक खास रूपक की बात ना करूँ तो इंदौर का सौंदर्य दबा रह जाएगा। अमलतास और मालवा की प्रकृति इंदौर के प्राकृतिक सौंदर्य को, मौसम और खास करके अमलतास के फूलों पर केंद्रित एक ऐसा रूपक यहाँ से प्रसारित हुआ जिसने लोक संस्कृति और प्रकृति के अंतर संबंधों को एक संगीत के साथ सजोकर हमारे सामने रख दिया। मालवा का नाट्य जो भूला जा रहा था, जो विस्तृत हो रहा था, जो विलुप्त हो रहा था, यदि उसे किसी ने बचाया है तो आकाशवाणी के इंदौर केंद्र ने। और ऐसे कितने साहित्यकार, कितने महापुरुष हैं जो इंदौर के आकाशवाणी में अब भी इस लाइब्रेरी में अपनी आवाज के साथ सुरक्षित हैं। कितनी विभूतियां हैं, कितने महान लोग जो इंदौर आकाशवाणी के साथ साथ हमारी यादों में अब भी रचे बसे हैं। यह आकाशवाणी नहीं है, यह ध्वनि का जादू है। 90 साल की इस यात्रा में वास्तविक ध्वनियों का उपयोग होता रहा है। बिल्कुल ऐसा लगे कि नदी आपके पास से बह रही है और बादल आपके सिर पर गरज रहे हैं। क्या इतना सुंदर संयोजन कोई और कर सकता है? मैंने भी कुछ बनाए, कुछ फीचर बनाए, जैसे बुढ़ापे पर आखिरी पड़ाव नर्मदा पर बनाया था, नर्मदा का आस्था के रजत धारा, और इंदौर और मालवा के मंदिरों पर भी बनाया था आस्था के रजत शिखर। कितनी सारी यादें हैं, कितनी वार्ताएं और कहानियां हैं जिनके नाट्य रूपांतर यहाँ हुए, सब कुछ मुझे याद है। उनके आदेश के कागज शायद मेरी फाइलों में पीले पड़ गए, लेकिन मेरी यादों में आकाशवाणी का यह सफर कभी पीला नहीं पड़ सकता। बिल्कुल ऐसा है, इतना ताजा जैसे अभी अभी तो मेरे पास से होकर गुजरा है। मंजिलें अभी और भी बाकी हैं, सफर अभी और भी बाकी है। हम रहे ना रहें, यह सफर जारी रहेगा, यह सफर जारी रहेगा। 90 ही क्यों, जाने कितने वर्ष यहाँ होते रहेंगे, सदियाँ बीतेंगी, पीढ़ियाँ जुड़ेंगी और आकाशवाणी अपने सफर पर चलता रहेगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी 90 वर्षों का हम सफर आकाशवाणी। इस विषय पर वार्ताकार थी

सखियों, अब बात करते हैं आपके अपने टाइम मी टाइम की, यानी आपका अपना समय जिसमें आप करती हैं अपने काम में फोकस। वो काम कोई भी हो सकता है सखियों, जो आपको पसंद है, जिसको करने से आपको सुकून मिलता है, जिसमें आप अपना करियर भी बना सकती हैं। सखियों, जैसा कि आर्टिफिशियल फूलों से बनाए करियर, तो इसमें कई स्कोप हैं सखियों। जैसे आजकल जन्मदिन, शादियों से लेकर कई समारोहों में फूलों की सजावट को प्राथमिकता दी जाती है। यदि आपका दिमाग रचनात्मकता वाला है और आप तरह तरह से फूलों को सजाने में रुचि रखती हैं, तो सखियों, फ्लावर डेकोरेशन की मांग और असली फूलों की कमी के चलते आर्टिफिशियल यानी मशीनों और हाथ से बने फूलों को बनाकर फ्लावर मेकिंग कर सकती हैं, जो एक हस्तकला है सखियों, जिसमें हाथों से तरह तरह के फूल बनाकर सप्लाई कर सकती हैं, जिसमें आप टिश्यू पेपर, रिबन, ऑर्गेंजा, कपड़ा और साटन के फूल बनाकर सजावट के लिए तैयार कर सकती हैं सखियों। इसके अलावा इन फूलों से गिफ्ट पैकिंग, एनवलप मेकिंग, बुके, गुलदस्ते बनाने में भी कर सकती हैं सखियों। इस काम को स्वरोजगार के तौर पर भी आप कर सकती हैं, पूरी टीम वर्क के साथ अपने करियर को एक नई दिशा दे सकती हैं आजीविका के तौर पर। तो निकालिए थोड़ा सा वक्त अपने लिए कुछ खास जगह बनाने के लिए और अपनी पहचान भी, और सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा।

सखियों, अब समय हो रहा है कि आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने और अब दे अनुमति नीलम चौरे को। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण मध्य प्रदेश से।
1: संगीत आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आज आप सुनेंगे भगवान सिंह ठाकुर को, रजनी भास्कर को और मथुरा प्रसाद सुमन को।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे दीपाली भोजक के गाए भजन। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: इसके साथ ही दीपाली भजक के गाय भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: इस समय आप है हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है कलंक फिल्म से, आवाज श्रेया घोषाल और वैशाली भाड़े की। अमिताभ भट्टाचार्य के गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

कल हो ना हो, लीजिए सुनिए सुन से सोनू निगम को, जावेद अख्तर का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर एक पर है।
1: मध्यप्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इतने आश्वस्त करना चाहूंगा, किसान कल्याण के सारे काम सरकार लगातार करती रहेगी।
0: ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सांस गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को आज कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी, जिसे जज ने मंजूर कर लिया। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर के एक मकान में छापा मारकर अवैध कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 10 लोगों को हिरासत में लिया। मौके से ऑफ कफ ब्रांड की करीब 1.5 करोड़ रुपए की नशीली सिरप, 700 से ज्यादा पेटियां और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गईं। मकान मालिक फरार है और एसटीएफ पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि देरी से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हो सकता है। जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाकर अपलोड करना जरूरी होगा। रीवा में आज जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने की। कार्यशाला का मकसद ग्राम पंचायतों को नल जल योजनाओं का संचालन सौंपना और सरपंचों तथा सचिवों के साथ अनुबंध प्रक्रिया पूरी करना था। भारत के लिए पेट्रोलियम लेकर आ रहा तेल टैंकर निसोस कैरोस हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और उसके 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। ये जहाज 21 मई को शारजाह से रवाना हुआ था और आज सुबह उत्तरी अरब सागर में देखा गया। ईरान ने इस महीने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क वसूलने की घोषणा की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अवैध बताया है। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अजब रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में 46.5 डिग्री तापमान के साथ भीषण गर्मी का कहर है तो दूसरी तरफ ग्वालियर और मुरैना में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर समेत 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से राहत मिलने के आसार है। वहीं 30 मई से 1 जून के बीच प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के आष्टा में आगामी जून माह में 2 से 8 जून तक राष्ट्रीय स्तर का संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बैतूल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति

0: पी जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि

0: वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम

0: वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
1: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश है जहर फिल्म के इस गीत की, जिसको आवाज दी है श्रेया घोषाल ने। गीत सईद कादरी का और संगीत रूप कुमार राठौर का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

सोनू के टीटू की स्वीटी लीजिए सुनिए इस फिल्म से अरिजीत सिंह और रोचक कोहली को कुमार का गीत और रोचक कोहली का संगीत।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश राजी फिल्म की, जिसे आवाज दी है हर्षदीप कौर, विभा सराफ और शंकर महादेवन ने, गुलजार का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, इकबाल अहमद, नुरेशा बेगम, कापसीदा नई दिल्ली से नशरीन आज़ाद, आमना आसमा और इमरान अहमद। साथ ही कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली।

अगली फरमाइश भेजी है विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ओम प्रकाश नेमा, श्रीमती किरण नेमा, आकाश, विकास, नंदिनी एवं समस्त नेमा परिवार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सबने सुनना चाहा है माई नेम इज खान फिल्म का ये नगमा शफकत अमानत अली की आवाज़ में, निरंजन एंगर का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कुछ कुछ होता है। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की आवाज़ों में, समीर का गीत और जतिन ललित का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, सिद्धांत प्रिंस और एकांश गवाणकर। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये नगमा।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एकजुट हैं। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104,22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रूपये का भुगतान भी किया जा चुका है। त्रिशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को आज कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी गई, जिसे जज ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर के एक मकान में छापा मारकर अवैध कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा है कि देरी से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हो सकता है। और रीवा में आज जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30, रात 8:15 और रात 9:45। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। सुर्खियों में ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:00। रात 9:30 खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद सोहेब की वार्ता, कौन बनेगा IPL 2026 का विजेता। 10:00 आनंद लीजिएगा आपकी फरमाइश का।

और 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन राग होगा भाव कौंस। ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी भोपाल है, मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत सुगम संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा का आगाज कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवा।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम की इस प्यारी सी मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त तनिष्का।
1: साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज। साथियों, आप सभी को पता है कि प्रत्येक शुक्रवार को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए खेल और विज्ञान से संबंधित खास सेगमेंट। तो आज सप्ताह जितने भी खेल पर चर्चाएं रही हैं या खेल रहे हैं और विज्ञान की खबरें रही हैं, उन पे हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं विस्तार से। उसी के साथ आप सभी को पता होगा कि रोजाना की तरह हम सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए दो प्रश्न आपके बीच लेकर आते हैं। तो आज के खास दो प्रश्न क्या है, आइए उनको भी जान लेते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड से कम समय निकालने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है। साथियों, मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं, हाल ही में 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड से कम समय निकालने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है।
0: और दूसरा प्रश्न है, रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। मैं पुनः दोहरा देती हूँ, रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में हाल ही में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो साथियों, आप इन प्रश्नों का उत्तर खोज कर रखिए और साथ ही में सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आज 29 मई है, एक ऐसा दिन जो दुनिया भर के उन बहादुर सैनिकों को समर्पित है जो अपने देश से दूर रहकर भी इंसानियत और शांति की रक्षा करते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, आज है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन उन सभी यूएन पीस कीपर्स के सम्मान में मनाया जाता है जो युद्ध और संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की सुरक्षा करते हैं और वहां सामान्य जीवन लौटाने की कोशिश करते हैं।
0: और दोस्तों, ये काम सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं। कई बार ये सैनिक ऐसे इलाकों में काम करते हैं जहाँ लगातार तनाव, हिंसा और खतरे का माहौल होता है, फिर भी वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते।
1: और भारत के लिए गर्व की बात यह है कि हमारे देश के हजारों सैनिक वर्षों से संयुक्त राष्ट्र मिशनों का हिस्सा रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने दुनिया के कई देशों में जाकर अपनी बहादुरी, अनुशासन और मानवता की मिसाल पेश की है।
0: वो सबसे खास बात ये दोस्तों कि ये सैनिक सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देते बल्कि वहाँ के लोगों का भरोसा भी बनते हैं। कहीं बच्चों के लिए स्कूल सुरक्षित कराना, कहीं लोगों तक मदद पहुँचाना, उनका काम सिर्फ हथियार संभालना बिल्कुल नहीं, उसी के साथ बल्कि हालात संभालना भी होता है।
1: बिल्कुल। और राज, मुझे लगता है कि हम अक्सर सैनिकों को सिर्फ बॉर्डर तक सीमित करके सोचते हैं, लेकिन शांति बनाए रखना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है हम सैनिकों की।
0: बिल्कुल ठीक, क्योंकि युद्ध जीतना ताकत की बात हो सकती है साथियों, लेकिन शांति बनाए रखना धैर्य, समझदारी और जिम्मेदारी की बात होती है।
1: और शायद यही वजह है कि आज का दिन सिर्फ सैनिकों को याद करने का नहीं बल्कि उनकी सोच और समर्पण से सीखने का भी है।
0: दोस्तों, एक युवा के तौर पर हम भी अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अपने आसपास सम्मान का माहौल बनाना, बिन वजह विवाद से बचना और लोगों की बात को समझना और उनको समझाते भी रहना।
1: बिल्कुल, आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पर लोग तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, सोशल मीडिया हो, दोस्ती हो या परिवार। कई बार हम सामने वाले को समझने से पहले ही उसे गलत मान बैठते हैं।
0: बिल्कुल ठीक दोस्तों, असली मैच्योरिटी सिर्फ बोलने में नहीं है बल्कि सही समय पर सही व्यवहार करने में दिखाई देती है।
1: तो आज इस दिन पर हम सब एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, हम जहाँ भी हैं वहाँ का माहौल बेहतर बनाए रख सकते हैं, शांति प्रिय बनाए रख सकते हैं। किसी की बात ध्यान से सुने, बिना वजह कटु शब्दों से बचे और अपने व्यवहार से लोगों को सहज महसूस कराने की कोशिश करें।
0: और उन सभी शांति सैनिकों को दिल से धन्यवाद कहें जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर उम्मीद और सुरक्षा का संदेश देते हैं।
1: चलिए इसी के साथ अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अब समय है आज के खास सेगमेंट यानी खेल और विज्ञान का। दोस्तों खेल सिर्फ जीत का और हार का नाम नहीं है बल्कि ये मेहनत, आत्मविश्वास और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बे का प्रतीक है।
1: बिल्कुल, तो आज हम बात करेंगे उन भारतीय खिलाड़ियों की जिन्होंने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर पूरे देश को गर्व महसूस कराया है।
0: साथियों सबसे पहले बात करते हैं भारत के स्टार शटलर, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु की। सिंधु ने महिला एकल मुकाबले में जापान की रिको गुंजी को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है।
1: उन्होंने ये मुकाबला सिर्फ 37 मिनट में 21-9 और 21-12 के स्कोर से अपने नाम किया। सिंधु का खेल बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा नजर आया।
0: अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला विश्व की शीर्ष वरीय खिलाड़ी कोरिया की अन सियंग से होगा। यह मुकाबला काफी रोमांचक माना जा रहा है साथियों, वो पूरे देश की निगाहें सिंधु पर टिकी हुई हैं।
1: अब बात करते हैं भारत की दमदार पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की। दोनों खिलाड़ियों ने चीनी ताइपे की जोड़ी के खिलाफ शानदार संघर्ष करते हुए मुकाबला जीता।
0: दोस्तों 3 गेम तक चले इस रोमांचक मैच में भारतीय जोड़ी ने 21-15, 11-21 और 21-18 से जीत दर्ज की है। दोस्तों ये जीत बताती है कि भारतीय बैडमिंटन अब विश्व स्तर पर लगातार मजबूत होता जा रहा है।
1: सही कहा राज तुमने, अब सात्विक और चिराग का अगला मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा।
0: बिल्कुल ठीक, वहीं मिश्रित युगल में भी भारत के लिए खुशखबरी आई है साथियों। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रॉस्टो की जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए जापान की जोड़ी को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई है।
1: पहला गेम हारने के बाद भारतीय जोड़ी ने जबरदस्त संघर्ष किया और मुकाबला 8-21, 21-17 और 21-16 से अपने नाम किया। ये जीत युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश देती है कि अगर आत्मविश्वास और मेहनत हो तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वापसी की जा सकती है।
0: बिल्कुल ठीक दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन देश के हर युवा को प्रेरणा देता है कि सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: आज भारत के खिलाड़ी दुनिया के हर बड़े मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं और तिरंगे का मान बढ़ा रहे हैं, है ना राज?
0: बिल्कुल ठीक, तो साथियों हम सभी की शुभकामनाएं भारतीय खिलाड़ियों के साथ हैं। उम्मीद है कि वे आगे भी शानदार प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे।

0: दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं उस खेल की जिसे दिमाग का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। आप सही समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ शतरंज के बारे में। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है भारत के युवा ग्रैंड मास्टर की, जिन्होंने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में अपने शानदार खेल से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है।
1: बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी खबर आई है भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा नंदा से। उन्होंने दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है।
0: बिल्कुल ठीक। साथियों, क्लासिकल मुकाबले में प्रज्ञानंदा ने बेहद धैर्य और रणनीति के साथ खेलते हुए कार्लसन को मात दी और पूरे 3 अंक हासिल किए। इस जीत के बाद 4.5 अंकों के साथ टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर वे पहुंच गए हैं।
1: ये पहली बार नहीं है जब प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को हराया हो। इससे पहले 2024 में भी उन्होंने नॉर्वे चेस में कार्लसन को हराकर सबको चौंका दिया था।
0: मैच के बाद प्रज्ञानंदा ने कहा कि मुकाबला बेहद करीबी था और टाइम स्कैम्बल में नतीजा किसी भी तरफ जा सकता था।
1: दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं है बल्कि भारतीय युवा प्रतिभा के आत्मविश्वास और मेहनत की भी जीत है।
0: वहीं दूसरी ओर मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश का प्रदर्शन इस दौर में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। फ्रांस के खिलाड़ी अली रेजा फिरोजा ने उन्हें आर्मगार्डन मुकाबले में हरा कर 1.5 अंक के साथ अपने नाम कर लिया।
1: करीब 5 घंटे तक चला क्लासिकल मैच ड्रॉ रहा, लेकिन आर्मगार्डन में फिरोजा ने बाजी मार ली।
0: दिलचस्प बात यह साथियों कि चोटिल होने के बाद उन्होंने फिरोजा उनका शानदार, बिल्कुल शानदार रहा। उसके बीच मैच के बाद वे व्हीलचेयर पर आए, उन मून बूट में भी नजर आए।
1: अब गुकेश का अगला मुकाबला मैग्नस कार्लसन से होगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।
0: दोस्तों, आज भारतीय खिलाड़ी युवा हर तरह से विश्व स्तर पर अपनी

0: पहचान बना रहे हैं, वो हर युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं।
1: प्रज्ञानंदा, गुकेश और दिव्या देशमुख जैसे खिलाड़ी ये साबित कर रहे हैं कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी जीता जा सकता है।
0: बिल्कुल ठीक।

0: दोस्तों आपको जानकर आपकी जानकारी के लिए बता दें, फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून से होने जा रही है। इस बार इन खेलों में टेक्निक्स का इस्तेमाल जोर शोर से किया जाएगा। यही वजह है कि विश्व कप में इस्तेमाल होने वाली गेंद भी खास तरह की होगी।
1: तो दोस्तों इस गेंद का नाम ट्रायोंडा है और मैच से पहले इसे चार्ज किया जाएगा और चार्ज होने के बाद ये गेंद करीब 6 घंटे तक काम करेगी।
0: साथियों अब फुटबॉल सिर्फ मैदान पर खिलाड़ियों के पैरों में खेली नहीं जाती बल्कि इसमें टेक्निक का दिमाग का भी इस्तेमाल किया जाता है।
1: दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रायोंडा फुटबॉल के अंदर एक बेहद छोटा सा लेकिन शक्तिशाली 500 हर्ट्ज मोशन सेंसर लगाया गया है। ये सेंसर गेंद की हर छोटी बड़ी हरकत को रिकॉर्ड करता है।
0: यानी साथियों गेंद जितनी तेज होगी मतलब किस दिशा में घूमती है, खिलाड़ियों ने कब और कैसे किक मारी, इन सब

0: का डेटा तुरंत रिकॉर्ड हो जाता है। और सबसे खास बात ये साथियों कि ये सेंसर चार्ज होने के बाद लगभग 6 घंटे तक लगातार काम करता है।
1: अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस तकनीक का फायदा क्या है। तो दोस्तों, फुटबॉल में अक्सर ऑफसाइड और फाउल को लेकर कई विवाद होते रहते हैं और कई बार रेफरी के लिए पल भर में सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है।
0: लेकिन साथियों, अब ट्रायंडा गेंद मैदान में लगे हुए हाई स्पीड कैमरों के साथ मिलकर रियल टाइम डेटा सीधे यानी VAR यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी सिस्टम तक भेजती है। इसमें रेफरी को यह समझने में मदद मिलती है कि गेंद कब पास हुई, खिलाड़ी किस पोजीशन में था और ऑफसाइड हुआ या नहीं। यानी तकनीक अब खेल से भी ज़्यादा निष्पक्ष और सटीक बनती जा रही है।
1: तो दोस्तों, ये सिर्फ एक फुटबॉल नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की झलक है। आज खेलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है।
0: बिल्कुल ठीक साथियों, क्रिकेट में स्कोर मीटर और हाइक आई, हॉक आई, टेनिस में इलेक्ट्रॉनिक लाइट कॉलिंग और अब फुटबॉल में स्मार्ट बॉल यानी टेक्नोलॉजी, ये सब हमें बताते हैं साथियों कि खेल अब केवल ताकत और प्रतिभा तक सीमित नहीं है बल्कि टेक्निक्स का भी दिन प्रतिदिन मैदानों में उपयोग बनता जा रहा है।
1: बिल्कुल, और युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि भविष्य उन्हीं का है जो तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।
0: साथियों, हो सकता है कि आने वाले समय में भारत के युवा भी कुछ ऐसी खेल तकनीक का निर्माण करें जो दुनिया को नई दिशा दे। तो आइए साथियों, सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों गर्मी काफी तेज हो चुकी है, नौतप्पा चल रहा है, लेकिन आज हम इस गर्मी से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प साइंटिफिक फैक्ट लेकर आए हैं जो आपको चौंकाएगा भी और सिखाएगा भी।
1: और इसी में हमारे साथ जुड़ेगा पेरिस का सबसे मशहूर मेहमान यानी एफिल टावर।
0: अब आप सोच रहे होंगे कि एफिल टावर और हमारी गर्मी का भला कैसे कनेक्शन हुआ।
1: बिल्कुल साथियों, तो आइए सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल जब पेरिस में तेज गर्मी पड़ती है तो एफिल टावर की ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है?
0: है ना, एकदम हैरान कर देने वाली बात, पर ये बिल्कुल सच है दोस्तों। गर्मियों में एफिल टावर करीब 15 से 17 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाता है।
1: अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, और इसका जवाब है थर्मल एक्सपेंशन यानी तापीय विस्तार।
0: जब तापमान बढ़ता है तो धातुएं फैलने लगती है और एफिल टावर पूरी तरह लोह धातु यानी कि लोहे से बना हुआ है, और गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण लोहा फैलता है और इसीलिए टावर थोड़ा ऊंचा हो जाता है।
1: बिल्कुल ठीक। और जैसे ही तापमान कम होता है यानी रात को या सर्दियों में, टावर फिर से सिकुड़ जाता है, यानी एफिल टावर अपने आप एक जीवित विज्ञान प्रयोग सा लगता है।
0: सोचिए एक इमारत जो मौसम के साथ अपना आकार बदलती है बिना किसी मशीन के, सिर्फ तापमान से।
1: और ये सिर्फ एक एफिल टावर की बात नहीं है साथियों, ये प्रिंसिपल हर जगह लागू हो सकता है। रेल की पटरी, बिजली की तारें, ब्रिज के ज्वाइंट्स, इन सब के थर्मल एक्सपेंशन का ध्यान में रखकर इन सबको डिजाइन भी किया जाता है।
0: रेल की पटरियों के बीच थोड़ी सी खाली जगह होती है, वो खाली जगह जानबूझकर छोड़ी जाती है ताकि गर्मियों में जब पटरियां फैले तो उनके पास जगह हो फैलने के लिए, नहीं तो पटरियां मुड़ सकती है या टूट सकती है।
1: गर्मियों में बिजली की तारें थोड़ी ढीली दिखती हैं और सर्दियों में कसी हुई, यही है तापीय विस्तार का कमाल।
0: और यही वजह है कि पूल्स और ब्रिजेस में एक्सपांशन जॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि गर्मी में फैलाव हो सके और कोई नुकसान ना हो।
1: बिल्कुल ठीक। तो अगली बार जब आप कोई कहे कि गर्मी में सब फैल जाता है तो आप मुस्कुराइए, कहिए विज्ञान भी तो यही कहता है।
0: विज्ञान को जानना सिर्फ किताबों का विषय नहीं है दोस्तों, ये हमारे आसपास हर दिन मौजूद है, बस नजर चाहिए समझने के लिए।
1: हाँ।

दोस्तों भारतीय ज्योतिष और मौसम विज्ञान के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब लगभग 9 दिनों तक अत्यधिक गर्मी पड़ती है और इस अवधि को कहा जाता है नवतपा। तो नवतपा में हमें स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी बातें उनको अपनाकर

0: हम हमारे शरीर का विशेष तौर पर ध्यान रख सकते हैं, जैसे खाली समय में तला भुना खाने से बचें, अत्यधिक पानी पिए, मतलब आप पेय पदार्थ का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, आप अपनों का ध्यान रखिए। और साथ ही अब हम कार्यक्रम में जो शुरुआत में हमने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर बता देते हैं।
0: दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न था, 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड से कम समय निकालने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? तो उसका सही उत्तर है साथियों, विशाल टीके।
1: और दूसरा प्रश्न था कि रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका उत्तर है समरदीप सिंह गिल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का एक कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत तनिष्का
0: और अपने साथी राज को।
1: नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम सानू और

0: कुमार सानू और साधना सरगम को अभी आपने सुना फिल्म दीवाना में। शब्द रचना समीर की थी और संगीत नदीम श्रवण का।
1: मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: श्रोताओं, फिल्म संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक ने। गीत रचना एक बार पुनः समीर की और संगीत नदीम श्रवण का। तो लीजिए सुनिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत।

0: अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी में, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
3: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
3: जी,
2: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
3: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
2: जी,
3: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
2: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
3: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
4: संध्या को हम खेलने जाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
4: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
4: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
4: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
4: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
4: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
4: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
4: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
4: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
4: या हंस हंस के बातें करना,
3: जब अंधेरा होने लगता,
4: जब अंधेरा होने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
4: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: तब हम घर को वापस आते,
4: तब हम घर को वापस आते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते,
4: कल खेलेंगे यह कह जाते।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निसंदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी, हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहें। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी। और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के

0: कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
1: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
2: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
0: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
2: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थी। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नू।
2: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
2: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
2: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
4: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आबिदा परवीन की गाई गजलें।

0: सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं
1: आबिदा परवीन को। लीजिए सुनिए इन्हीं की गाई अगली गजल।

0: श्रोताओ, सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे अबिदा परवीन की गाई गजलें। इस रचना के साथ ही अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा।
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी

0: और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या? तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: और सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
5: प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्रद्धा पगारे के आए लोकगीतों को।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शारदा पगारे के गाए लोकगीतों को।

श्रोता हो, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्रद्धा पगारे के गाए निमाड़ी लोकगीतों को। लीजिए, सुनिए इन्हीं के सर में अगली ये लोक रचना।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रद्धा पगारे के गाए लोकगीतों को। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने

0: में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और आरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण दे देवें। किसान श्रोता कार्यक्रम खेती गृहस्थी प्रसारित होगा संध्या 7:20 पर। आज की बात होगी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता, बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश शुक्ला से तुलसा दरगैया की बातचीत रहेगी। साथ ही होगा लोक संगीत। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात 8:00 और 8:15 पर। कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। श्रोताओं, सदाबहार गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 9:15 पर, और 9:30 पर होगा आपके मनपसंद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। शास्त्रीय संगीत में प्रकाश संगीत का गायन हम आपको सुनवाएंगे, राग होगा सरस्वती। ये था विवरण आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का। अब जानकारी दे दें कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। कल सुबह 7:20 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सुनहरे पल। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर। लोक संगीत में चंद्र प्रकाश सोनवे और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:00 और

सुगम संगीत में स्वाति नाटेकर की गाई रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत में रुद्र वीणा वादन होगा, कलाकार होंगे बहाउद्दीन डागर, राग होगा रागिनी तोड़ी। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगी 10:00 और फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का प्रसारण होगा 10:05 से लेकर 11:00 तक।

श्रोताओ, हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में बता दें, कल 12:30 पर कार्यक्रम होगा संग्रहालय से। महिला कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा दिन में 1 बजे। लोक संगीत होगा 1:30 पर और सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा 1:45 पर। सांध्यकालीन सभा का आरंभ होगा युवा श्रोताएं कार्यक्रम युवाणी से संध्या 5 बजे। आरंभिक चर्चा होगी गोवा राज्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर। साथ ही आज के क्रम में होगा हेलो फ्रेंड्स, श्रोताओं फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 5:45 पर। विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 6 बजे से। सुगम संगीत में स्वाति नाटेकर की गाई रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे 6:30 पर और लोक संगीत में चंद्र प्रकाश सोनवे और साथियों का ये लोकगीतों का आनंद लीजिएगा शाम 6:45 पर।

कल के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में संध्या 7:20 पर आज की बात होगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर। साथ ही अरुणा सराफ का काव्य पाठ हम आपको सुनवाएंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा 8:00 और दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:15 पर। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत होगा 9:15 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा 10:00। ये था विवरण कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। मीडियम वेव 462.96 यानी 648 kHz पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने पर 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण, सीबीआई करेगी जांच और दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। केंद्र सरकार ने कहा, देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं, रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चालू। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने जम्मू पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल पूरे होने पर 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग आज 182 देशों में मौजूद है और पूरी मानवता को जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा कि आज की दुनिया में ध्यान विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन गया है और जीवन में ज्ञान, ध्यान और संगीत हमेशा साथ रहने चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी योग्य छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं की वजह से बर्बाद हो। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। श्री प्रधान ने कहा,
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में कहा है कि इस चूक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें एनटीए को हटाकर उसकी जगह एक मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाने की मांग भी शामिल है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है और अब अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। केंद्र सरकार ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में अभी रोजाना 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक से गैस की कमी की कोई शिकायत नहीं आई है।
2: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी, सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

0: इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने महज 4 दिनों में पाकिस्तान को युद्ध विराम की अपील करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस अभियान को भारत के सैन्य इतिहास की अभूतपूर्व सफलता बताते हुए कहा कि यह तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट तालमेल और आधुनिक सैन्य क्षमता का जीवंत उदाहरण था। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक प्रकाशन का भी विमोचन किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माता वैष्णो देवी धाम में दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर और भूशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। पेशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सास गिरिवाला सिंह और पति समर सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। गिरिवाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा के संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर इलाके में एक मकान पर छापा मारकर अवैध कफ सिरप बनाने के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यहां ऑफ कफ नाम की नशीली सिरप बनाकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पूरे सेटअप की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रात 12 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई सुबह 3 बजे तक चली, जिसमें 700 से ज्यादा पेटियां, बोतलें और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गई हैं। 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104,22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 30,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर एक पर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 40 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लग चुके हैं, जिनमें प्रदेश के 1,21,000 से अधिक घर शामिल हैं। प्रदेश में इन संयंत्रों से 456 मेगावाट से ज्यादा स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये योजना भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जबलपुर शहर के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि एनएचएआई करीब 3,540 करोड़ रुपए की लागत से 114 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बना रहा है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज बताया कि ये 4-लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर खासतौर पर भारी और लंबी दूरी के वाहनों को शहर के बाहर से रास्ता देगा, जिससे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छिंदवाड़ा के खोखरा वाटरफॉल पर कल बुधवार को हुए हादसे में डूबे दोनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए। हादसे में एक शव गुरुवार को और दूसरा शव 36 घंटे बाद आज गहरे पानी से निकाला गया। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त वाटरफॉल के पास सेल्फी लेते वक्त संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में चले गए थे। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से खूब पानी पीने, बच्चों को हाइड्रेट रखने और घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शासकीय महाविद्यालय में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अशोकनगर में गर्मी में

पेयजल की समस्या से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया। दतिया में जल संरक्षण और मनरेगा में लापरवाही पर 11 सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। धार में वन विभाग ने छापा मारकर निजी कंपनी के गोदाम से विभिन्न प्रजातियों की छाल और बीजों का अवैध भंडारण जब्त किया। झाबुआ में आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक छात्र 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। देवास में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कुओं तालाबों और नदियों की सफाई और गहरीकरण का काम जारी है। नर्मदापुरम में पवारखेड़ा में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगर मालवा के नलखेड़ा में विधायक भैरव सिंह परिहार ने 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। गुना में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। निवाड़ी में भाजपा जिला कार्यालय में मोदी जी के 12 साल बेमिसाल विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। शिवपुरी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटिशियन प्रशिक्षण में 31 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के केंद्रीय चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन पर सेमिनार और मॉकड्रिल आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान श्रोताओं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

दूरदर्शी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन का बिंदु की राम राम। किसान भाई बहन, उन्हाड़ा की बखत चली रही ना, जे में देखो अभी नौ तपा भी चली रोज रोहन खूब अच्छी तपी रही आना अपन देखी राज की इतो घाम जमा पड़ी रोज। तो ऐसा मौसम अपना आप की सुरक्षा हमको जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि दोपहर की बखत अपन देखा आज कि 12 बजे से लेकर 4 बजे का बीच में तो घनी धूप रहे, इतो घाम पड़ज कि कहीं निकलने को मन नहीं करतो। और सही भी छे, जरूरी काम हुए तो ज बाहर निकला, कोई असो हल्को फुल्को अपनो काम हुए तो जहाँ तक बना घर का अंदर रही कर ना अपन ओका निपट ही सकाए। तो इन बात को ध्यान रखा, न कदी जानूच पड़ो तो अपना खूब छे तो मुड़ा का लपेटी लेवा कपड़ा सी, कपड़ा सूती पेरा पूरो अपनो जो बदन छे वो ढकेल रहे, है ना। चश्मो भी कभी ठंडो चश्मो लगी लो कालो तो वो भी अच्छो रहे। साथ ज खिस्सा में छे तो कांदो भी रखी लो जेका सी लू नहीं लगा आपको। और घर से कोई भी ठंडो पेय पदार्थ पी के ना फिर निको तो ज़्यादा अच्छो रहेगा। एम छे तो आप नींबू पानी पी सको, छाछ पी सको, पणो पी सको, ये सब जो चीज़ ना छे इना मौसम में अच्छी भी लगे और स्वास्थ्य का लेना लाभदायक भी रहे। तो इन्हीं बात को ध्यान रखो आना घर में जो नाना नाना बाळक छे बड़ा बूढ़ा छे उनको भी इन्हीं बात को अपन ध्यान रखी सकें, उनका भी ये सब चीज़ ने दे सकें। और कभी लू लगी गई तो छे तो अपना का पास का स्वास्थ्य केंद्र में तो बताऊँ, घर का भी अपना जो उपाय छे जैसो कांदा को रस अपन लगे ही लेवा हाथ पाए न ख चावनी न ख एकासी भी लू उतरी जाए तो ये भी करा। साथ अच्छे तो ठंडो गन्ना का रस होए अपनो अना पणो होए ऐसी चीज़ न पेवा। कांदो खाना खाने का साथ में कांदा को सलाद कांदा को उपयोग ज़्यादा करा जैका सी छो तो अपन लू सी बची सका। तो हमारा किसान भाई बहन इन्हीं बात को ध्यान रखेगा और आगे भी हम बातचीत करेंगे अपना काम काज की खेतीबाड़ी की। ओका पहले सुना यो लोकगीत बालकिशन साथी नो को गायल।

तो अभी हमारा किसान भाई बहन है ना, बाल किशन जी को गायल यो लोग गीत सुने और आनंद भी आयो। किसान भाइयों, हमारा प्रधानमंत्री ने जो कई तरह की योजना ने चलावे, जैसे कि ओमछे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, आपने नाम भी सुने होएगा और खुद से अपना किसान भाई बहन एक लाभ भी ले रहा है। भाई ये जो योजना छे नी, एक छे तो छोटा जो किसान छे जिनका पास में कम खेतीवाड़ी की जमीन छे, या मध्यम छे जिनका पास बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद नहीं है, उनका लेना ये योजना छे। इन योजना में अपना किसान भाई बहन जो कि 60 साल का भी जाए जितना छे तो इनको पेंशन मिले, ये 3000 रुपया पेंशन मिले। और एक ही सबसे बड़ी बात यह कि जीवन साथी जो रही जाए, एक जाए ना, अगर एक रही जाए तो ओख भी एक की आधी पेंशन जैसे 1500 रुपया मिले एक।

0: बीमारी है जिससे कि पशु हानि होने का संभावना रहती है, जैसे पीपीआर बोलते हैं इसको,
1: अच्छा
0: पेस्टिस दस पेस्टिस रूमिनेंट्स बोलते हैं, पीपीआर के नाम से इसकी वैक्सीन मार्केट में मिलती है।
1: अच्छा
0: और ये बीमारी होने पे बकरियों को जान का खतरा जोखिम रहता है। इसी तरह बकरियों की चेचक होती है जिसको हम लोग गोट पॉक्स बोलते हैं,
1: अच्छा
0: बकरियों की चेचक का भी टीकाकरण करवाना चाहिए। और एंटेरोटॉक्सीमिया एक बीमारी बोलते हैं, एंटेरोटॉक्सीमिया का भी टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। इसके अलावा खुरपका मुंहपका रोग FMD जो गाय भैंसों में बहुत कॉमन है, जो पर बकरियों में भी बीमारी होती है। इसलिए इन चार बीमारियों को पीपीआर, बकरी की चेचक, एंटेरोटॉक्सीमिया और खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण अवश्य करवाएं।
1: अच्छा तो डॉक्टर साहब, इतना आपने टीकाकरण का बारे में बताया, और कौन कौन सी बीमारी, तो इनकी सबकी जानकारी ने को रिकॉर्ड हम अपना पास किस प्रकार से रखी सका हमारा किसान भाई।
0: हाँ, जो भी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अगर आप एक बहुत अच्छी तरह से अगर एक बकरी का फार्म चालू करना चाहते हैं तो आपका रिकॉर्ड भी उतना ही दुरुस्त होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी बकरी का किसका उत्पादन अच्छा है, किसका उत्पादन खराब है, और किस बकरी को कब कितना समय हो गया बच्चा दिए हुए, तो उसको फिर से गर्भवती होना चाहिए। तो जो कुछ रिकॉर्ड है जैसे प्रजनन की तिथियां और संतान का विवरण एक रजिस्टर में जरूर ये नोट करें कि किस बकरी ने कब उसकी प्रजनन हुआ, कब उसकी संतान हुई, और अब उसके बाद उससे हम कब उम्मीद करते हैं कि अगले बार फिर से उसको गाभिन कब होना चाहिए। इसी तरह से टीकाकरण और जो कृमिनाशक दवाइयां देते हैं उनकी भी डेट का रिकॉर्ड लिखना चाहिए, क्योंकि इनको समय समय पे देते हैं। टीकाकरण हर वर्ष करते हैं, कृमिनाशक भी हर 3 महीने में दवाइयां देते हैं, तो अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे और उससे जानवरों को नुकसान होगा। इसी तरह से प्रति बकरी दूध की पैदावार कितनी है ये भी पता होना चाहिए, कितना जानवर, कितना बकरी फीड की खपत हो रही है और कितना खर्च एक बकरी पे हो रहा है इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। हर पशु का एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड होना चाहिए, कब बीमार हुई, क्या इलाज दिया, कितने दिन इलाज चला, तो आपको साल भर में पता लग जाएगा किसान भाइयों को कि ये बकरी हमारी ज्यादा बीमार पड़ रही है या ये बकरी स्वस्थ है, तो जो बीमार है उस पर अपने को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने नस्ल का चयन का बारे में बतायो, उनकी आवास की व्यवस्था कई होनी चाहिए, आहार न पोषण का बारे में बतायो, टीकाकरण का बारे में बतायो, उन किस प्रकार से उनको रिकॉर्ड रखा ये सब भी बतायो। अब आप हमारे किसान भाई का ये बताओ कि विपणन न मूल्य संवर्धन का बारे में आप हमारा किसान भाई ने से कई कहना चाहोगा।
0: हाँ, देखिए, नॉर्मल आज का समय ऐसा है कि आप बकरी पालन अगर कर रहे हैं और बकरी पालन से आप अच्छा व्यवसाय और अच्छा लाभ या पैसा कमाना चाहते हैं, तो केवल दूध बेचने से और उसका मीट के पर्पस के लिए उपयोग करने से उतनी कमाई नहीं कर सकते जितना कि आप अगर इसका विपणन और मूल्य संवर्धन को अच्छे तरीके से करेंगे। एक तो क्या है कि दूध और जो खाद है वो हमेशा स्थानीय बाजारों या उपभोक्ताओं को बेचना चाहिए अपने को, और अधिक कीमत पाने के लिए बकरी के दूध को पनीर, घी या दही में संसाधित करें। अगर आप इसमें करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। बकरी के दूध का पनीर या घी या दही, आजकल बहुत सारी बीमारियों में बकरी का दूध वैसे भी बोला जाता है, तो इसकी शहरों में बहुत डिमांड है। इसी तरह से बकरी की खाद को भी जैविक खाद के रूप में बेचा जा सकता है। जब आप जैविक खाद के रूप में बेचते हैं तो किसान भाइयों को इसके पैसे भी ठीक मिलते हैं। इसी तरह चमड़े और वस्त्रों के लिए बकरी की खाल और रेसे, इनका उपयोग किया जाता है। बाजार कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय सहकारी समितियां होती हैं, उनका उपयोग करें, उनसे संपर्क साधें या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी सहयोग कर सकते हैं, तो उसमें भी किसान भाइयों को ज्यादा फायदा हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, अब तो हम आपने हमका बकरी पालन के बारे में जानकारी दी, अब बकरी पालन में प्रजनन प्रबंधन किस प्रकार से हमारे किसान भाई ने करना चाहिए।
0: हाँ, इसके बारे में भी लोगों को, किसान भाइयों को जानकारी थोड़ी कम रहती है, और अगर हम प्रजनन प्रबंधन अच्छी तरह से करेंगे तो हमको बिल्कुल हमारा नुकसान नहीं होगा और हमको हमेशा दूध और इसकी मांस की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी। बकरियां वर्ष में 2 बार प्रजनन करती हैं, और संतान उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रजनन कार्यक्रम का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये 2 बार के ये चक्र को, प्रजनन चक्र को हमको मिस नहीं करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हर बकरी साल में 2 बार गाभिन हो और बच्चे को जन्म दे। और इसका पता लगाने के लिए भी बकरियों में बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, बेचैनी, चारे का सेवन कम करना, बार बार पेशाब के लिए जाना, तो ये इन चीजों से किसान भाइयों को पता लग जाएगा कि बकरी शायद मद में है, और इस दौरान अगर वो चाहते हैं कि सफल गर्भधारण हो तो नर बकरे को साथ में जरूर रखें। साथ ही गर्भवती जितनी भी बकरियां हैं इनको खिलाने पिलाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार दें, अतिरिक्त विटामिन दें, तो उससे जो बच्चे होंगे वो ज्यादा स्वस्थ होंगे।

0: इन चीजों का ध्यान रखें तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे।
1: डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे किसान भाइयों का क्या कहना चाहोगे?
0: देखिए, इतनी सारी चीजें डिस्कस करने के बाद मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बकरी पालन गांव में, ग्रामीण भारत में किसानों के लिए एक बहुत ही आकर्षक और टिकाऊ आजीविका का विकल्प है, और इसको अगर आप अच्छे तरीके से करें तो इसमें नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती है। अगर आपका नस्ल चयन अच्छा है, आवास अच्छा दे रहे हैं आप, पोषण जैसा बताया गया इस तरह से दें, स्वास्थ्य पे ध्यान रखें और विपणन की जो मैंने चीजें बताई इन पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको फायदा अधिकतम होगा। इसके अलावा जो सामुदायिक सहयोग होता है और सरकारी समर्थन का लाभ उठाएंगे तो बकरी पालन की संभावनाओं को और भी बढ़ाया जा सकता है। प्रभावी ढंग से अगर आप मैनेजमेंट करते हैं तो बकरी पालन न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करता है बल्कि भारत में खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में भी योगदान देता है। इस तरह यह व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि बकरी पालन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लचीला और फायदेमंद उद्योग बना रहेगा। अतः किसान भाइयों को मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि बकरी पालन में बहुत मतलब आसान करना है, सिर्फ थोड़ी सी चीजों का ध्यान देंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज्यादा उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती, और थोड़ी थोड़ी ही व्यवस्था करके आप बहुत ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारा स्टूडियो में आया, हमारा किसान भाई ने ग्रामीण भारत में बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय इना विषय पर जानकारी दी। हमारा जो किसान भाई कार्यक्रम सुनेगा तो एक माध्यम से इन्हीं चर्चा को लाभ जरूर लेगा। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। राम राम।
2: तो किसान भाइयों, अभी अपन सुनी रहा था कि बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय, डॉक्टर बीपी शुक्ल से तुलसाबेन की बातचीत। और देखो कितनी उपयोगी जानकारी थी। अगर अपन ढोर डंगर पाड़ा तो उनका सुरक्षित रखनू हमारो काम छे। भाई देखो, अभी उनाड़ा की बखत छे, खूब घाम भी पड़ी रोज, तो हमारा जितना ढोर डंगर छे उनका ऐसी जगह पर अपन रखा जहाँ छावड़ो होए, उनकी भी सुरक्षा देखा, उनको जो भोजन छे, आहार छे और उनको पानी छे, उनका रहना के सोना के ये सब व्यवस्था हमका देखनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीव छे और तमज ही अच्छा रह सका, इनका से अपन तमज कुछ न कुछ चीज़ को उत्पादन ले सका, जब कि अपन उनका खूब सुरक्षा देवा, उनका उनका हिसाब से रहना देवा। भाई जैसो जिस हिसाब से मौसम छे उस हिसाब से अगर उनकी व्यवस्था अपन लगाई कर न रखा तो वो स्वस्थ रहेगा और छे तो अपना का फायदों भी देता रहेगा, लाभ पहुंचाता रहेगा। तो इन्हीं बात को हमारा किसान भाई बहन ध्यान रखा। हम कई बार देखा आज कि हम खुद तो छाँव में रहें न, हमारा ढोर डंगर छे तो घाम में बंधेल रहे न, दिन भर घाम में बैठी रहे, तो उन पर भी अपना का दया को भाव रखना चाहिए, उनका भी अपना का सुरक्षा देनी चाहिए। तो इन्हीं बात को जरूर से ध्यान रखा और इस बात को ध्यान रखी करना कोई भी अपन छे तो पशुपालन करी सकान और उसी फायदो ले सकान। किसान भाई, अब हमारा हाथ में छे तो मंडी का भाव भी आ गया, तो मंडी का भाव भी हम आपको बता दें। ये आज इंदौर मंडी का भाव छे, जेमें छे तो सोयाबीन को भाव रहे हो 4000 से लेकर 7700 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं को भाव रहे हो 2101 से लेकर 2791 रुपया प्रति क्विंटल, चना देसी किस्म को 4960 से लेकर 8150 रुपया प्रति क्विंटल, डॉलर किस्म को चनो 6000 से लेकर 8880 रुपया प्रति क्विंटल, मटर बटला मतलब 2265 से लेकर 3915 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का 1600 से लेकर 2050 रुपये, राजमा 2000 से लेकर 5600 रुपया प्रति क्विंटल, तुअर 4900 से लेकर 6920 रुपया प्रति क्विंटल। ये तो था मंडी का भाव। और किसान भाइयों, फिर मन करी रोज कि एक और लोकगीत सुना, तो यो लोकगीत सुना अपन प्रेम सिंह मोहन सिंह देपालपुरिया को गाए, सुना यो लोकगीत।

तो अभी हमारा किसान भाई बहन है ना, ये लोकगीत सुने, मायावी लोकगीत हो, प्रेम सिंह मोहन सिंह दीपाल पुरिया को गायल, और देखो जेठ को महीनों चली रोज, और लोकगीत में आनंद भी आई गो, और अभी देखो कि जेठ को महीनों तो चली रोज, पर अपनी खेती बाड़ी का जो काम काज है वो अपना चलता रहे भाई। घाम अच्छो पड़ी रोज तो आप लोग ने ना अपना खेत की गहरी जुताई करी ली होएगा, आगक जो अपना फसल वावणी करूँ ओकी भी तैयारी आपने करी ली होएगा। इन्हीं वक्त में मिट्टी परीक्षण करने को खास महत्व है, क्योंकि मिट्टी परीक्षण अगर इन्हीं वक्त में कराई लेवा

तो अपना को मालूम हो जाए कि अपनी माटी में कहाँ कहाँ तत्व की कमी है, तो यह काम भी अपना को कर लेना चाहिए। साथ बीजा ने की सोई अभिसी कर लेवा जे कसी है, तो भर वक्त पर अपना को कथे जानू नहीं पड़े। खाद पानी एको भी इंतजाम कर लेवा, भाई अपन देखी राज की अभी अपना जो कुआ तालाव छे उनमें छे तो पानी को स्तर बहुत कम ही हुई, पण जहाँ कहीं सुखाई गया तो उनका अपन अच्छा साफ सुथरा कर लेवा, वहाँ कचरो बगदो हटे के ना वहाँ अच्छी पत्थर मट्टी की कुटाई करी का ना उखा अच्छो गहरो करी लेवा, जगह सी जो बरसात होएगा तो ओमा खूब अच्छो पानी भरे जाएगा ने ये तालाव जो लबा लब रहेगा तो अपनी पूरी साल भर की खेती अपन एकासी करी सकेंगा, क्योंकि जो कुआ तालाव नदी नाला छे ये अपना खेती बाड़ी में बहुत सहायक छे और अपना को बहुत मदद करे। जब पानी की कमी भी रहे तो भी अपन इनका से अपनों खेती बाड़ी में पानी पूरा ही लेवें, तो इन्हीं बात को ध्यान रखा। और किसान भाइयों फिर मन करी रोज की एकर लोकगीत सुना, तो एकर लोकगीत सुना योग गायोज प्रेम कुमार सेन साथी ने।

तो अभी हमारा किसान भाई बहन है ना प्रेम कुमार सेन साथीनों को गायल यो लोग की सुने और आनंद भी आयो और किसान भाइयों उन चलता चलता काल की भी तय करा। काल सौंदारा से खेती की बात में केचुआ खाद का बारे में बतावेगा अनुराधा शर्मा, संचायक होएगा कविता पाठ, अम अपन कविता न सुनांगा अरुणा सराफ से, न लोकगीत भी होएगा, आज की बात भी होएगा और पछा मिलांगा तब तक लेना सभी किसान भाई बहन का बिंदु की राम राम।

0: अभी किसान श्रोता सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा।
1: अभी ग्राम सभा कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
4: प्रगति यानी कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख मंच है, जो प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साझेदारी में परियोजनाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण की प्रत्यक्ष एवं वास्तविक समय में या रियल टाइम समीक्षा के माध्यम से उन्हें तेजी से आगे बढ़ाता है। प्रगति इस बात का सशक्त उदाहरण है कि डिजिटल शासन किस प्रकार नीतिगत मंशा को वास्तविक और दृष्टिगोचर प्रगति में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया प्रगति भारत में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर चुका है। यह केवल एक समीक्षा मंच भर नहीं है, बल्कि नौकरशाही की निष्क्रियता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने तथा ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, उनके क्रियान्वयन की अपेक्षा की जाए और परिणामों का आकलन किया जाए। दीपक जी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं और बताएं प्रगति किस तरह सरकार की अटकी हुई या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं को तेजी लाने में मदद कर रहा है और लागत में वृद्धि को भी चेक कर रहा है।
5: आपने जैसे कहा कि ये पूरा जो प्रगति है एक ऑनलाइन सिस्टम है, वेब बेस्ड सिस्टम है। चाहे उसका जो शुरुआत में जब पहले समस्याएं आती हैं, जो जिस प्रोजेक्ट को इस पे रिव्यू किया जाता है वो भी आपके देखेंगे तो वेबसाइट पर इनका डिटेल डाला जाता है। जैसे आपने कहा इसकी जो मीटिंग होती है जो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं वो भी ऑनलाइन ही होता है, तो देखा जाए तो एक तरह से एक पेपरलेस एक पूरा प्रोग्राम है। और दूसरी बात यहाँ तक की है कि प्रगति में हम देखेंगे तो आज तक की जब से शुरू हुआ है, आखिरी जो प्रगति हुई थी वो 51वां, तो इसपे ज्यादातर जो लिया जाता है वो है डिलेड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट प्रकल्प जो है देर हो गए हैं, तो उसपे ज्यादातर देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन्हीं का ही होता है, जैसे रोड, रेल, पावर, कोल, हाउसिंग, इस तरह के सब्जेक्ट ज्यादातर आते हैं।

0: उनके साथ साथ बहुत सारे सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम, जो बहुत बड़े स्कीम है, जैसे कि वन नेशन कार्ड, आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जो हमारे हॉकर भाई लोग हैं उनको जो 10-10 हजार, उसके बाद 20 और 50 हजार की लोन देने का जो व्यवस्था किया गया, स्वच्छ भारत मिशन, इनका भी रिव्यू होता है। इसके साथ साथ बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जिसपे लोगों की बहुत सारे शिकायतें होती हैं, तो उनका भी पूरा डिस्कशन होता है। उसमें मैं आपको जैसे एग्जांपल देख सकता हूँ, कोरोना को लेकर हुआ था, रेरा जो हमारे रियल एस्टेट रेगुलेशन जो है, जो उसके लिए जो पूरी व्यवस्था की गई है, उनकी ग्रेवियंसेस को, उनकी जो लोगों की जो शिकायतें हैं उनके ऊपर भी मीटिंग हुई है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर पे भी हुआ है, आपका जनधन योजना पे भी हुआ है। तो देखा जाए तो जो प्रगति है इस पे खाली आधारभूत या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नहीं है, बल्कि सरकार की बड़े बड़े स्कीम, लोगों की जो समस्याएं होती है उनका भी मीटिंग में बातचीत होती है। जैसे हम जानते हैं सब कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विलंब होता है या उसका लागत में बढ़ोतरी हो जाती है, तो देखिए ये देश के लिए तो नुकसान है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये होता है, जब आप देर होता है तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और जब आपका पैसे उसका जो लागत बढ़ जाता है तो हमारे एक्सचेकर पे, हमारे सरकार पे वो दबाव बढ़ता है। तो प्रगति ने ये दो चीजों को तो बहुत ही सही तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से एड्रेस किया है, क्योंकि उनको हर स्तर पे देखा गया कि किस प्रोजेक्ट के किस कारण से डिले हो रहा है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, चाहे वो आपको एनवायरमेंट और जंगल की जो एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो, कहीं पे आपका जैसे हम किसको यूटिलिटी शिफ्टिंग, जैसे बिजली के बड़े बड़े खंभे हटाना, कहीं पे आपको बड़े बड़े पानी की पाइप जो जमीन के नीचे होता उनको हटाना, तो ये सब चीजें बारीकी से देखा जाता है। और बारीकी से देखने के बाद ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री तक जाता है, बहुत प्रोजेक्ट है जो उससे काफी पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं, जो चीजें रिजर्व नहीं हो पाते हैं वो प्रधानमंत्री आखिरी में उसका रिव्यू करते हैं। तो प्रगति होने से एक तो व्यवस्था ये हुई है कि जो प्रोजेक्ट विलंब हो रहे थे, जिनका कॉस्ट बढ़ रहा था, अगर प्रगति नहीं होती उनके कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाते, तो इसके कारण क्या हुआ कि आपको कॉस्ट तो घटा नहीं, पर कॉस्ट की जो बढ़ने में जो आगे की संभावना था उसको घटा दी गई। तो एक तरह से आपका जो जिसको हम कहते फिस्कल बर्डन होता हमारे ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन होता, वो घटा, और समय भी इसके कारण बचा जो बहुत डिले लगता है। जैसे आप हम सब जानते हैं जो जम्मू से श्रीनगर का जो रेलवे लाइन है जो कई सालों से अटका हुआ था, वो प्रगति के कारण बहुत जल्दी संभव हुआ। जैसे हम जानते हैं नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है, अगर वो जिस गति से जा रहा था और कई साल लग जाए तो उसको कंप्लीट होने में, प्रगति होने से उस पे उसका त्वरित गति में उसका काम हुआ है। इसका होने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि जब हम जानते हैं कि कोई मीटिंग, कोई एक प्रोजेक्ट का जब हर ऑफिसर को, हर ब्यूरोक्रेट को पता चलता है कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो आप देखिए कि वहाँ पे तत्परता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जितना मेरी जानकारी है, मैं ये जानता हूँ, जैसे कि प्रगति मीटिंग की नोटिस आती है और जो जो प्रोजेक्ट का नाम आता है, आप कोई भी मंत्रालय में जाइए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में जाकर बात करिए, वो देखेंगे ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है, क्योंकि वहां पे ये कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता में ये कोई बोले कि आपने ये काम नहीं किया। और उसके कारण क्या होता है, अचानक से आप देखेंगे जो बैकग्राउंड कोऑर्डिनेशन है मीटिंग के पीछे की, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, स्टेट गवर्नमेंट, सोचिए कोई मिनिस्ट्री से बात कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसको रिजॉल्व करने के संपूर्ण तरह से प्रयास करते हैं। याद है वाक्य कि कोई एक मीटिंग होने वाली थी जिसपे ये आपका टेलीकॉम का जो फाइबर नेटवर्क डाला जाता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री का मीटिंग होने वाला था, काफी विलंब हो रहा था, मुझे क्योंकि मैं उसके बारे में लिखा था तो मुझे याद है, ठीक मीटिंग से एक दिन पहले जितने भी उसका स्टेक होल्डर है, जितने मंत्रालय है, सबने एक साथ कह दिया कि हमने सारी चीज रिजॉल्व कर ली है। तो देखिए इसका ब्यूटी है, क्योंकि आप देखेंगे तो कि जो है यही इसका जो है सुंदरता है कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं तो उससे पहले ही बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाता है, और जब कॉस्ट ओवररन नहीं होता है, लागत नहीं बढ़ने को हम रोक सकते हैं, समय की देरी को, विलंब जो होता है उसको रोक सकते हैं, तो इसके देखिए सबका फायदा होता है, सरकार का होता है, और जैसे मैंने कहा लोगों को सुविधाएं बहुत जल्दी मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया, सोचिए आपका जम्मू से श्रीनगर की जो रेलवे लाइन, सोचिए और 5 साल डिले हो जाता तो क्या होता, जो लोगों को इतना लंबा समय रोड से जाना पड़ता है या फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा देकर जाना पड़ता है, उससे तो बच गए ना।
1: प्रगति में जो परियोजनाएं लाई जाती हैं वो अक्सर ऐसा होता है जो रुकी हुई रहती हैं या डिलेड होती है, क्या कारण है कि ये परियोजनाएं रुक जाती हैं, इनके प्रमुख कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? प्रगति तो करती है लेकिन क्या मंत्रालय स्तर पे या राज्यों के स्तर पे इनके भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?
0: एकदम आपने सही कहा, और जैसे कि 4-5 जो सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, वो एक तो पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपका लैंड एक्विजिशन, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिना जमीन के आप शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि रोड आपको बनाने के लिए 100% आपको जमीन चाहिए, आप अगर पावर प्लांट बनाते हैं तो आपको जमीन चाहिए, अगर आप सोचिए कोई बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है तो सब में आपको जमीन चाहिए। अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत, खाली प्रगति की बात नहीं, अगर आप हर साल

0: कि अगर सवाल देखेंगे जो पार्लियामेंट में आता है, हमारे संसद में आता है, जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो, परिवहन मंत्रालय हो, या रेलवे मंत्रालय हो, या आपका सिविल एविएशन मंत्रालय हो, ये सब में देखेंगे तो जो भी सवाल पूछा जाता है कि मुख्य कारण क्या है डिले का, तो कहा जाता है लैंड एक्विजिशन, जमीन के अधिग्रहण में देरी। दूसरा जो सवाल आता है वह आपका क्लियरेंसेस, क्लियरेंसेस क्या क्या है, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, इस पे देरी बहुत, एक ये दो जो है सबसे प्रमुख कारण है। इसके साथ जैसे मैं आपको पहले बताया था कि तीसरा कारण है कि जिसको हम यूटिलिटी शिफ्टिंग देखेंगे, जहां पे एक नया सोचिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, वहां पे पहले कभी बिजली के बड़े बड़े हाई टेंशन वायर का जो खंबे लगे होंगे, और वो छोटे नहीं है कि अचानक रातों रात बदल सकते हैं, तो इनको सब शिफ्टिंग करने का भी बहुत टाइम लगता है। मेनली यही चार पांच चीजें हैं, तीन चार चीजें हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होता है। और जब प्रगति होती है तो उस पे क्योंकि सारी बातें क्लियरली आती है, जैसे मैंने आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये प्रगति मीटिंग होती है उसपे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में होते हैं, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में होते हैं, सब वर्चुअली जुड़े होते हैं ऑनलाइन माध्यम से, फिर सारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं। तो जैसे जमीन अधिग्रहण की बात अगर हम करें, हम तीनों चीजें, जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण की बात करें, और तीसरा जो यूटिलिटी शिफ्टिंग, ये तीनों का जो मुख्य जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार का है। तो जब मीटिंग होती है इसकी, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या ये आपको जैसे कहें निर्देश दिया जाता है कि आप इसको जमीन के अधिग्रहण को जल्दी से संपूर्ण करें। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्जांपल, अभी प्रगति हुई थी उस पर रेलवे का भी कोई प्रोजेक्ट था, जहाँ पे वहाँ पे भी कोई कंपनसेशन, जो आपका लोगों को जो पैसे देने की बात आई थी कुछ प्रोजेक्ट के कारण, तो उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही सख्त निर्देश दिया रेल मंत्रालय को कि जल्दी से लोगों को जो कंपनसेशन है दीजिए, ताकि काम कंप्लीट हो जाए। तो इस पे क्या होता है कि जो केंद्र का मंत्रालय हो या राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं, देखिए केंद्र सरकार में देखा जाए तो सारे काम कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का उनका अंडर सेक्रेटरीज हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार का तो मुखिया है ही, देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ब्यूरोक्रेटिक हेड है, वो तो चीफ सेक्रेटरी है। तो जब चीफ सेक्रेटरी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मुख्य सचिव को, तो उसका सीधा असर देखने को मिलता है। मैं आपको जैसे एग्जांपल बताऊं, दिल्ली के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये सब प्रोजेक्ट को पीएम ने एक एक करके प्रोजेक्ट का रिव्यू किया हुआ है, और इस रिव्यू का कारण प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हुए।
1: जी, प्रगति की अभी तक 51 बैठकें हो चुकी हैं, और इसमें 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा सका है, और कुछ तो कंप्लीट भी हो चुके होंगे। ये मंच प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में केंद्र और राज्यों के बीच वास्तविक समय में तालमेल सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही को और अधिक अच्छा करती है। जमीनी स्तर पर प्रगति और क्या बदलाव ला रही है, चाहे वो गवर्नेंस लेवल हो या लोगों के लिए आराम सुनिश्चित करना या ईज ऑफ लिविंग, जो कि सरकार का बहुत फोकस एरिया रहा है, वो सुनिश्चित करने में कैसे मदद कर रही है?
0: जैसे आपने कहा कि करीबन 85 लाख करोड़, और उसके साथ मिला दें तो पिछले हफ्ते 30,000 करोड़ का और प्रोजेक्ट हुए हैं, तो 85 लाख 30,000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट का रिव्यू हुआ है, और ये करीबन 3,300 प्रोजेक्ट से भी ज्यादा हैं। पहला वाला तो था इसकी कीमत कितना कॉस्ट था, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 3,300 से ऊपर है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं, ज्यादातर प्रोजेक्ट ही इस पे आपके एक्सपेडाइट हुए हैं। जितना भी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे प्रगति में आई है, उनमें बहुत जल्दी उनकी गति पकड़ी है, और ज्यादातर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इस पे जमीनी स्तर पे क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब मीटिंग होती है, जिसपे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, और हर स्टेट गवर्नमेंट के, हर राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, तो देखिए एक मैसेजिंग होता है कैसे सबको साथ मिलकर काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई भी अगर प्रोजेक्ट, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पावर का प्रोजेक्ट हो, कोई मंत्रालय का जब आता है, उनको ये जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। तो ये जो कल्चर धीरे धीरे, ये मेरा नहीं है, इस पे मुझे सोचना नहीं, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रेक द साइलोज, कि आप जो अपने अपने हिस्से में बंधे रहते हैं उससे थोड़ा बाहर जाइए। आप ये सोचिए कि खाली ये मेरा रोड का प्रोजेक्ट नहीं है, रेल का प्रोजेक्ट नहीं है, देश का प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है ये सोच, ये धीरे धीरे सबके जो अंडरस्टैंडिंग में और जहन में ये आने लगा है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट में कारण देर हो रहा है, तो आप सोचिए कि कोई सचिव जो है मुख्य सचिव को फोन करके बात करते हैं कि देखिए ये प्रगति में आ रहा है, ये प्रोजेक्ट को जल्दी किया जाए। जब आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी या कनेक्शन थोड़ा फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाएगा, तो उसका असर ये भी होगा बाकी जो प्रोजेक्ट हैं जो प्रगति में नहीं आ रहे, वहां भी अगर डिले हो रहा है तो आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर है, देखिए हर जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, अधिकारी हैं, जब उनको ये पता है कि प्रोजेक्ट अगर कोई मेरा बहुत ज्यादा विलम्ब हो गया या कॉस्ट बढ़ गया, तो प्रगति में चला जाएगा, प्रगति में गया तो फिर मुझे तो बहुत सारे सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो इसका असर क्या होगा, जो प्रोजेक्ट धीमे चल रहे हैं उनको वो लोग भी कोशिश करते हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक से होता है, ताकि वो प्रोजेक्ट प्रगति में ना जाए। तो मुझे लगता है पूरा जो है वार कल्चर को प्रगति ने काफी बदलाव लाया है।
1: जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि ब्रेकिंग द साइलोस, ये साइलोस को ब्रेक करने में मदद करता है। आपको लगता है कि ये जो बैठकें होती हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद को इंस्टीट्यूशनलाइज या संस्थागत रूप देने में भी मदद कर रहा है?
0: आपने ये बात तो एकदम सही कहा कि एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये स्ट्रेंथन करता है, इसको जब मजबूत करता है। इसका कारण मैं आपको इसलिए बताया कि जैसे जितना भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट को तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी कामयाब हो सकता है जब राज्य सरकार संपूर्ण तरह से उसके साथ काम करे। वो तभी हो पाएगा जब दोनों में सहयोगिता होगा या कोऑपरेशन होगा, तो फेडरल कोऑपरेशन के बिना ये तो काम हो नहीं सकता। दूसरा बात क्या है कि जब हर व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पे रहकर बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 50वां प्रगति हुई थी उसके बाद हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन साहब ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहाँ पे हम लोगों ने सवाल भी पूछा था कि जो है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कहा कि कोई भी राज्य सरकार या हर राज्य सरकार चाहता है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, और कोई सरकार नहीं चाहता उसका डिले हो, क्योंकि विलंब होगा, कॉस्ट ओवररन होगा तो सबको समस्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि हर सरकार चाहती है रोड बने, हाईवे बने, रेलवे लाइन डले, नया ट्रेन चले, अच्छे पावर प्रोजेक्ट आए ताकि वो उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके, और वो तभी कंप्लीट होगा जब केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर बात करेंगे। एक बात ये भी ध्यान देना पड़ेगा, एक कंप्लीटली एपोलिटिकल सिस्टम है, इस पे केंद्र में सरकार, राज्य में कौन सरकार है इसका कोई असर ही नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे हर राज्य के प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेडाइट किया गया है, कंप्लीट किया गया है।
1: जी दीपक जी, आपने बहुत विस्तार से प्रगति के बारे में हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: ये कार्यक्रम अभी आपने सुना।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

क्या कहें, कैसे कहें, कुछ भी तो तुमसे कह न सके। बहुत कोशिश की हाले दिल तुम्हें सुनाने की, पर जब जब भी तुम सामने आए, जुबा खामोश, होंठ सिल से गए। फिर सोचा हाले दिल तुम्हें लिखकर बताएं, पर जब लिखने बैठे तो बस यही ख्याल आया,

कहाँ जाना है ये दिल से पूछो, क्यों चल रहे हो ये राहों से पूछो। जिंदगी का फलसफा है कितना गहरा, अपने अंदर के मुसाफिर को फिर से ढूंढो।

धीरे धीरे कट ही जाता है सफर, बस साथ हो तेरे सच्चा हम सफर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
5: सफर लंबा है पर मंजिल सुहानी है, हर मोड़ पर यादों की कहानी है, तेरा साथ है तो हर मंजिल बड़ी प्यारी है।

0: हर सफर में कुछ अनकही बातें हैं, कभी खामोशी तो कभी मुलाकातें हैं। जो संग चला वही याद रह गया, बाकी तो बस वक्त की सौगातें हैं।
1: अभी अलविदा मत कहो।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे। दिल से नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या और उसके बाद News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहां उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित

मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग हई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9.

जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। शब्द रचना हसरत जयपुरी की। संगीत शंकर जयकिशन का।

0: हसरत जयपुरी की शब्द रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म जी हां संगम में।
1: मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। चित्रगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राज हट फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीत रचना एक बार पुनः हसरत जयपुरी की और संगीत भी शंकर जयकिशन का है।

0: लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना फिल्म, जी हाँ राजहट।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
2: और
3: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: चित्रगीत कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: प्रोफेसर प्यारेलाल। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओ, इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम मन।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से गीत से। जिसे हमने लिया है दो रास्ते फिल्म से। आनंद बख्शी की गीत रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म जी हाँ दो रास्ते, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सभी श्रोताओं की, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और राबिन की। सनावस से इस गीत को पसंद किया कालू सिंह बड़ोले, सीताराम बड़ोले, हीरालाल बड़ोले, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन और भावना ने। मोरटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना भी यही गीत सुनना चाहते थे। साथ ही इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर ने। लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला और गायत्री धंजे भी यही गीत सुनना चाहते थे। मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य ने भी इस गीत को पसंद किया था। साथ ही इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी खरगोन से मनीष निमाड़े, शीतल निमाड़े, शुभांगी, अंश, अनुराग, रियांश, राजेश पंवार, रिया पंवार, वंशिक, मुकुल और हर्ष पंवार ने। सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा और आदिबा थापा भी इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे। लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम और कुमारी डब्लू डोम ने भी इसी गीत को पसंद किया था। मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार ने भी इसी गीत के लिए हमें खत भेजा था। इंदौर से इस गीत को पसंद किया धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी जिम्मा, अस्मता दियाना और जियांश मटाई ने। करनाल से सुधीर नूतन और मीनाक्षी तिवारी भी यही गीत सुनना चाहते थे। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने सुनाया दो रास्ते फिल्म का गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: मन भवन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाए जा रहे हैं महल फिल्म का दो गाना, युगल स्वर आशा भोसले और किशोर कुमार के हैं।

महल। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूरा श्रीमाली की। सनावत से इस गीत को पसंद किया पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्नव और काव्यांशी कटारिया ने। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, कंडला बंदर, कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और जनीश, अहमदाबाद से कंचन सोनार और कुसुम सोनार भी यही गीत सुनना चाहते थे।

0: साथ ही इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रंगनी से दिनेश वर्मा और लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू ने, नेवासा खुपटी से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, श्रवण श्रावण और हरिभाव बिड़वे भी यही गीत सुनना चाहते थे। साथ ही इस गीत को पसंद किया इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिलिया बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यगणों ने। मलकापुर से इस गीत के लिए खत हमें भेजा संजय पाटिल, उषा, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, सतीश सराफ और जगदीश ने। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने सुनवाया महल फिल्म का ये दो गाना।
1: मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत,
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। अगले गीत को हमने लिया है गीत फिल्म से, युगल स्वर महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर के हैं। पसंद आप सभी श्रोताओं की। इंदौर से अनिल कौचले, सबीहा, सुषमा, सीमा, श्वेता, पूजा और राखी। शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रेत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्यगण। पुणे से पंकज वड़ोदे, आर्या आदि, बीटी वड़ोदे और चंद्रप्रभा वड़ोदे भी यही गीत सुनना चाहते हैं। कोटवा, नारायणपुर, बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने भी इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने भी इस गीत को पसंद किया। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय भी यही गीत सुनना चाहते हैं। पांडर कावड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे ने भी इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी। इंदौर से इस गीत को पसंद किया आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने। साथ ही कोल्हापुर से तुषार कुरणे, प्रसिक कामले, एकता कामले, मेघना उत्कर्षा, अरुण और इनके परिवार के सभी सदस्यगण भी यही गीत सुनना चाहते हैं। बीजलपुर से इस गीत को पसंद किया मोहनलाल चौहान, ललिता चौहान, प्रियंका, स्वर्णिका, पंकज, सोनू, निकिता, राहुल, गुंजन, मुस्कान, अदव्या, अंकित, सलोनी, लड्डू, कान्हा और ऋषि चौहान ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखड़े, गोकुल बोराखड़े और मंगेश बोराखड़े भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। गीत फिल्म के लिए फरमाइश आई है आलूट से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा की। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये प्यारा सा गाना।

हसरत जयपुरी की गीत रचना कल्याण जी आनंद जी का संगीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को अभी आपने सुना। जी हाँ, गीत फिल्म में।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: अरे तनिष्का कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा।
3: क्यों क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।

0: श्रोताओ, ये प्यारा सा गीत हमने लिया था शंकर हुसैन फिल्म से। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, गीत रचना कमाल अमरोही की और सुमधुर संगीत खय्याम का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। गंज बसोदा विदिशा से भागचंद साहू, राज साहू, अजय साहू, करिश्मा, भैयू दादा साहू, डोमन भाई साहू और शनि शर्मा की। साथ ही रिजवान और राजेश साहू भी यही गीत सुनना चाहते थे। बरेड़ी से इस गीत को पसंद किया राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज ने। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्यगण भी यही गीत सुनना चाहते थे। इंदौर से इस गीत को पसंद किया आराध्या अनग, अनन्या अमोग, संगीता प्रज्ञा और हेमेंद्र ने।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या?
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: और सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मन भावन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं निदा फाजली की रचना, जिसे संगीत से सजाया है उषा खन्ना ने। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम स्वीकार किया मैंने।

स्वीकार किया मैंने। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। गीत रचना निदा फाजली की थी और संगीत उषा खन्ना का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। शिवाजी चौक राजमी छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव की। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव की। चंद्रनगर सतारा से इस गीत को पसंद किया सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रमेश वाघमारे ने। वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत और माय चौहान भी यही गीत सुनना चाहते थे। समानावस से इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग और सुलोचना सांवले ने। ग्राम भड़भुंजी जिला आगर से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्याम, भावना, मिलन, मधु और ओम प्रकाश भी यही गीत सुनना चाहते थे। साथ ही उमरखेड़ से गंगाधर, पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़, प्रियंका और स्वरित पोपलवाड़ ने भी इसी गीत के लिए हमें खत लिखा था। साथ ही इस गीत को पसंद किया था उत्तम जमधाड़े ने। इंदौर से सुनीता सेन।

0: रवि सेन और कृष्णा सेन भी यही गीत सुनना चाहते थे। इसी गीत के लिए खत हमें मिला जिला जौनपुर पोस्ट लपरी ग्राम मुंडेला से चंदा चांदनी आकाश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्यगणों का। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने सुनाया, स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गीत।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
2: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।
0: श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं आपके मनपसंद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंबल की कसम फिल्म का गीत। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत खय्याम का। तो लीजिए सुनिए चंबल की कसम फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

चंबल की कसम। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। गीत रचना साहिर लुधियानवी की थी और संगीत खय्याम का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान पोतरा, मुश्ताबा खान, राहुल भाई, शाहिद भाई, अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, खंडवा से इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी थी विजय महोबिया, कविता महोबिया, सजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डाली, देवराज और भैयू दादा महोदिया ने, खंडवा से ही वीएस महोबिया और कमला महोबिया भी यही गीत सुनना चाहते थे, पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम ने भी इसी गीत को पसंद किया था, इंदौर से राजेंद्र शर्मा, भावना शर्मा, जयबीत, अर्पिता, हिमांशु, ओशिन, अद्विका, निशिता, हेमंत और इनके परिवार के सभी सदस्यगण भी यही गीत सुनना चाहते थे। साथ ही नांदेड़ से प्रभा

0: सागर जोंदले और आंध आरती जोंदले ने भी इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी। छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने भी इसी गीत को पसंद किया था। फरमाइश भेजी हमें हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिक्कू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और गौतम इंगोले ने। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने सुनवाया चंबल की कसम फिल्म का गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

लता मंगेशकर और तलत अजीज को अभी आपने सुना बाजार फिल्म में। पसंद आप सभी की सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार की। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग की। खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर की। मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका और गजानन घायल ने भी फरमाइश हमें भेजी थी। साथ ही फरमाइशी खत हमें मिला इंदौर से वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललित नारायण खड़चे का। पसंद शेगांव से बाबा साहेब कंगणकर, साखरबाई कंगणकर, परमेश्वर, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी और इनके परिवार के सभी सदस्यगणों की। आप सभी की पसंद पर हमने सुनवाई बाजार फिल्म की ये रचना। संगीत खय्याम का था और इसके साथ ही मन भवन कार्यक्रम समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भवन, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए प्रकाश संगीत का गायन, राग है सरस्वती।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे प्रकाश संगीत का गायन, राग था सरस्वती।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: और सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का इंदौर केंद्र समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।